तो इस भोर की बेला में मन में भक्ति, हृदय में प्रेम और कदमों में विश्वास लेकर चलिए। दिशा सही हो, मन में शक्ति हो और चेहरे पर मुस्कान हो, तो जीवन की हर गली हमें मंजिल की ओर ले जाती है। आपकी सुबह मंगलमय हो, मन प्रसन्न रहे और आज का हर पल किसी ना किसी के जीवन में खुशियों की वजह बने। इसी विचार के साथ मैं आपसे ले रही हूँ अनुमति। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ ही साथ सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: ఆకాశవాణి సమయం 6 గంటలు కావస్తుంది. మరి కొద్ది క్షణాల్లో హిందీలో ఆంగ్లంలో వార్తలు వింటారు.
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी. मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी. इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है. इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है. श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है.
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में. कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा. और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है. जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है. और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है. उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा. उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे. अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी. कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे. इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं. भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा. टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है. नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है. इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है. ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी. दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है. यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है. MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की. इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए. राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं. निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोकेगे को, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां बरामद की है. वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन मामलों में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल

अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियां खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवर और ब्रिजा बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेको बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।

दोस्तों, इस एनर्जेटिक सॉन्ग के साथ ही मुझे लगता है आप लोग सब लोग झूम उठे होंगे और एनर्जी भी आपके काम के लिए डबल हो गई होगी, क्योंकि ये सॉन्ग ही ऐसा है और ये सॉन्ग था मूवी हम दिल दे चुके सनम से। दोस्तों, एक्चुअली आज का दिन बहुत खास है। क्यों? क्योंकि हम आज उन चीज़ों पे बात कर रहे हैं जो हर इंसान के दिल में कहीं ना कहीं रहती है, सपने, उम्मीद, मेहनत और सफलता। लेकिन आज की शुरुआत किसी लेक्चर से नहीं करूँगी मैं, ना आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाली हूँ। एक छोटी सी शायरी आपके लिए लाई हूँ मैं। ख्वाब वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, ख्वाब वो नहीं जो नींद में आते हैं, ख्वाब वो हैं जो नींद ही उड़ा जाते हैं। रास्ता चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हौसले तो मंजिल के दरवाजे खुल जाते हैं। हौसले हों तो मंजिल के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, कभी आपने सोचा है हम सपने क्यों देखते हैं? सपने ऐसा नहीं है कि छोटे देखते हैं, बड़े देखते हैं। हर किसी के मतलब मन में जो भी आता है वो कहीं ना कहीं सपने से जुड़ भी जाता है। जैसा आप सोचते हैं वो आपका सपना बन जाता है। जैसे किसी को लगता है कि मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, और किसी को स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट रहता है तो वो स्पोर्ट्स भी खेलना चाहता है और उसी में ही बहुत आगे बनना चाहता है, चाहे वो MS धोनी की तरह बने या सचिन तेंदुलकर या सुनील छेत्री। मतलब सबके अपने एक सपने होते हैं और उसी के लिए वो आगे उन सपनों में ही मतलब रम जाता है। अगर कोई बस इतना चाहता है कि एक दिन अपने पेरेंट्स को गर्व से कह सके कि हाँ मैंने कर दिखाया, तो उसको अपना सपना तो बहुत बड़ा लगने लगता है, क्योंकि बचपन से जिसने हमें पाला पोसा बड़ा किया और जब उनके लिए हम प्राउड फील कराते हैं ना, तो वो सपना सचमुच बहुत बड़ा सपना हो जाता है। लेकिन एक बात है दोस्तों, कि सपने सिर्फ देखना ही काफ़ी नहीं होता है, उसे पूरे करने का सफ़र बहुत कठिन भी हो सकता है। और यदि आप उसको मतलब अपने अंदर बिलीव करते हैं और आपको है डिटर्मिनेशन कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो सपने सच में मतलब सच हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर ही बिलीव करना होगा, और आइए इस बिलीव के साथ ही सुनते हैं एक नया ट्रैक जो आपके बिलीव को और बढ़ा देगा।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सपनों की, सफलता की और अपनी कई उपलब्धियों को पाने के एक जुनून की। दोस्तों, इसी सफ़र के लिए जहां अपन सपने देखते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, उसके लिए मेरे पास आपके लिए है एक छोटी सी कहानी। तो एक छोटे से शहर में एक लड़की रहती थी और मान लेते हैं कि उसका नाम अनन्या था। अनन्या पढ़ाई में ठीक थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा सपना था कि वह एक दिन अपने दम पर कुछ बड़ा करे। हाँ जी दोस्तों, उसको लगता था कि मैं जो करूँ वो अपने दम पर करूँ और अपनी पहचान बनाऊँ। लोग उससे पूछते थे, बेटा आगे क्या करना है? तो वह मुस्कुराकर कहती, अभी तो मुझे ठीक से पता ही नहीं है कि मुझे क्या बनना है। अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ, लेकिन कुछ ऐसा करना है जिससे मुझे लगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ मीनिंगफुल जिया है। उसको लगता था कुछ भी करूं, दूसरों के लिए मैं कुछ अच्छा करूं, अपनी अलग पहचान बनाऊं। एक दिन अनन्या ने एक कंपटीशन में हिस्सा लिया। उसने उसमें बहुत मेहनत की, मतलब जितना उससे हो सकता था उससे भी ज़्यादा मेहनत उसने की उस कंपटीशन के लिए। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट में अनन्या हार गई। कितना, मतलब कितना खराब लगता है ना दोस्तों, जब बहुत मेहनत करने के बाद हम हार जाते हैं। लेकिन उस रात अनन्या को लगा, शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। उसको थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि शायद मुझे तैयारी नहीं करनी थी। अगले दिन

उसकी माँ ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, बेटा तुम हार गई? तो अनन्या ने कहा, हाँ माँ मैं हार गई। तो माँ बोली, तो अब क्या बेटा, अब अगली बार जीतने के लिए क्या बदलोगी? बस सवाल छोटा था। अनन्या ने जब माँ का ये सवाल सुना ना, तो उसकी सोच बदल गई। अनन्या ने समझा कि फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है। हाँ दोस्तों, फेलियर कोई फुल स्टॉप नहीं है, क्योंकि कभी कभी फेलियर सिर्फ यह बताता है कि यह रास्ता थोड़ा बदल कर चलो, क्योंकि मेहनत करते हैं हम, पूरा डेडिकेशन से भी करते हैं। कई बार जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, वो रास्ता हमें बदलना पड़ता है, तो सफलता बहुत जल्दी आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आप फेल हो गए हैं, असफल हो गए हैं, तो अपने सपनों को देखना ही छोड़ दें। सपने देखते रही है, सपनों के साथ ही ज़िंदगी बड़ी हसीन बन जाती है, क्योंकि सपने देखेंगे तो उनको पूरा करेंगे और अपने सपनों में खो जाएंगे। सपनों के साथ ही आपके लिए सपनों से भरा हुआ एक ये गाना आपके लिए।

हाँ जी दोस्तों, अभी मैं आप कर बात कर रही थी अपने सपनों की, मेहनत की, और उन सपनों को कैसे पूरा करना है अपनी मेहनत से। दोस्तों अभी मैंने आपको कहानी सुनाई अनन्या की। अनन्या ने मेहनत बहुत की, सपना देखा था कि मेहनत करना है और कुछ अलग ही मुझे अपने लिए करना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। लेकिन कभी-कभी मेहनत बहुत होती है लेकिन रास्ता सही ना मिल पाने पर वो मेहनत में उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन मेहनत करने के बाद सफलता नहीं मिले तो मतलब सपनों को देखना नहीं छोड़ना है, अपनी आशाएं नहीं छोड़नी है। क्योंकि दोस्तों सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखना कि ड्रीमर और अचीवर में सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि ड्रीमर कहता है मैं एक दिन करूँगा, मतलब वो करूँगा कब करूँगा शायद उसमें डाउट हो सकता है, लेकिन अचीवर कहता है आज मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। हाँ जी दोस्तों, यदि आप सपने देख रहे हैं तो उसके लिए करूँगा शब्द मुझे नहीं लगता कि उतना सही है। यदि सपना देख ही लिया है और उसको पूरा करना है तो आज से ही मेहनत करनी पड़ती है। यदि आपके पास भी कोई सपना है तो मैं अपने आपसे एक सवाल पूछिए, जरा आप अपने आप से पूछिए कि मैं उस सपने के लिए आज क्या कर रहा हूँ या आज क्या कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि बेड पे थे, सपना देखा, मुझे ये बनना है, मुझे आज ये करना है, और जैसे ही बेड छोड़ा या बेड पे ही अपनी स्क्रीन स्क्रॉल करने लगे और सपना कहीं खो गया। नहीं, सपना देखा है, शुरुआत आपको आज से ही करना है। तो सपने देखिए, आशाएं भी बना कर रखिए कि इन सपनों को मुझे पूरा कैसे करना है। सपने रहेंगे तो आशाएं रहेंगी, तो आशाओं के साथ, सपनों के साथ आइए सुनते हैं ये ब्यूटीफुल म्यूजिकल ट्रैक।

0: Hey, very hungry. What's special today?
1: Biryani, kebabs, haleem. But wait, there's more.
2: More than food, it's the stories behind the recipes. The history of the kitchens and the flavors that shaped our city.
0: And where do we taste all these?
1: On Jashne Hyderabad, every afternoon at 2 o'clock on FM Rainbow 101.9.
2: From Charminar's Irani Chai to the evolution of Hyderabadi Biryani. It's a feast for your ears.
3: Jashne Hyderabad. Savor the city's soul.
4: वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कॉमर्शियल ब्रेक और उसके पहले आपने सुना एक खूबसूरत सॉन्ग आसाएं। आसाएं ये सॉन्ग गाया है के और इरफान सिद्दीकी ने। क्या खूबसूरत एहसास है ना आशा का, मतलब आशाएं सपने यदि ये ना हो तो शायद जीवन अधूरा सा लगे। क्योंकि जब भी आप एक सुबह उठते हैं या कहीं दो मिनट के लिए शांत बैठते हैं तो मन में कोई ना कोई एक सपना और आशाएं चलती रहती हैं कि आज मुझे ये करना है, चाहे वो मेरे फैमिली

के लिए करना है, मुझे अपने करियर के लिए करना है, और जो भी आशाएं रहती हैं आपकी, जो भी सपने रहते हैं, सब दिमाग में तो चल रहा है, लेकिन उनको मतलब कैसे सक्सेस उनमें कैसे मिल सकती है, ये भी दिमाग में चलता रहता है। तो वही बात है दोस्तों की, अब हम बात करेंगे सफलता की, सक्सेस की, कि किसी भी सपने की सफलता या किसी भी आशा, मतलब सपने को कैसे पूरा करें। कोई आशा है आपके मन में कि हाँ करना है, तो सक्सेस मिलेगी कैसे? अनन्या तो एक बार हारी भी, लेकिन उसकी माँ के एक प्रश्न ने उसका मन बदल दिया और वापस वो अपने उसी मतलब सपने को पूरा करने में लग गई। तो बात यही है दोस्तों कि सपना ना मतलब करना ज़रूरी लगता है आपको, और आपको करना है और उसमें सक्सेस चाहिए है। तो मेरे हिसाब से ना सक्सेस एक मतलब मुझे एक रेसिपी लगती है कि कैसा सक्सेस में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, क्योंकि यदि एक भी इंग्रेडिएंट कम हो गया तो सक्सेस हो सकता है थोड़ी बाद में मिले। तो उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स के पहले अपन थोड़ा सा ठुमक लेते हैं, क्योंकि यदि इंग्रेडिएंट्स सही से मिक्स नहीं किए तो सक्सेस दूर हो जाएगी, और ठुमकते ही मन रिफ्रेश हो जाता है, और रिफ्रेश होते ही सारे इंग्रेडिएंट्स में हमारा फोकस भी लग जाएगा। सो आइए ठुमकते ठुमकते हम अपने सपनों को पूरा करेंगे और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे, दिस विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

वेलकम बैक दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे सक्सेस की और हमें सक्सेस कैसे मिलती है। वही मिर्च मसाला मैं बनाने वाली हूँ कि सक्सेस मिलना बहुत आसान नहीं है किसी भी फील्ड में, चाहे कोई सपना हो, चाहे आप करियर बना रहे हो अपना। अपनी रिलेशंस में भी सक्सेस होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको करियर पे ही फोकस करना है। तो सक्सेस के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए है, क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, उसमें से एक है डिटर्मिनेशन। हाँ जी दोस्तों, डिटर्मिनेशन यानी ठान लेना। जैसे कहते हैं ना कि जो भी ठान लेते हैं वो हम करके दिखा देते हैं। तो जब मन कहे कि हम छोड़ देते हैं, हाँ जी, जैसे अनन्या आदि चाहती, जैसे अनन्या को लगा कि अभी तो इतनी मेहनत के बाद मुझे सक्सेस नहीं मिली है, तो मन में एक बार तो उसको भी आ गया था ना कि मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन दोस्तों, छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता। यदि छोड़ दिया तो फिर सक्सेस भी आपसे बहुत दूर चली जाएगी। तो छोड़ देना वर्ड तो डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तो वही कह रही हूँ कि यदि सफलता चाहिए है तो एक ठान लेना। जैसे बच्चा जिद कर जाता है ना, इतनी जिद करता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, और जब वो ठान लेता है तो फिर तो पेरेंट्स भी मतलब वो चीज़ उसको दिला ही देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा है ना अभी। वैसे ही बच्चे की तरह हमें भी एक जिद पकड़ लेना है, वो भी कि नहीं मुझे इस फील्ड में सक्सेस चाहिए है, इस रिलेशन में सक्सेस चाहिए है, इसको कैसे मैं उसकी ओर आगे बढ़ूँ। तो अंदर से आवाज़ ही आनी चाहिए कि सक्सेस के लिए यदि एक बार हार भी जाते हैं तो बार बार कोशिश तो करना ही पड़ेगी, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स अभी एक ही नहीं है, बहुत से इंग्रेडिएंट्स हैं सक्सेस के। तो हमारे साथ जुड़े रहिए विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक और सक्सेस का मज़ा लेते रहिए।

वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफ एम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, सपनों की, आशाएं की। तो सफलता के लिए मैंने आपको बताया कि सफलता पाना कोई आसान नहीं होता है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और कुछ मिर्च मसाला वाला इंग्रेडिएंट्स भी बनाना होता है। जी हाँ, सफलता के एक इंग्रेडिएंट्स को मैं ऑलरेडी आपके लिए इंट्रोड्यूस कर चुकी हूँ, वो था डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मीन्स ठान लेना। अब यदि हम दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है डेडिकेशन। हाँ जी दोस्तों, डेडिकेशन मीन्स पूरी तरीके से उसमें लग जाना, आजू बाजू क्या हो रहा है, क्या मतलब जो मेरे काम का नहीं है उससे मुझे सुनना ही नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले सकते हैं आप कि आपको कुछ करना है और आप डेडिकेटेड हैं, आप अपने नोट्स हो सकता है मोबाइल से पढ़ रहे हैं, नहीं तो आपकी टेक्स्ट बुक भी होती हैं, लेकिन यदि उसी मोबाइल में बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो डेडिकेशन शो नहीं करता। डेडिकेशन मीन्स जहाँ आपको फोकस करना है, जहाँ आपको लगता है कि नहीं मुझे इस चीज़ पे ही फोकस करके, मेहनत करके आगे बढ़ना, और बाकी कुछ भी होता रहे, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कोई भी कुछ कह रहा हो, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा फोकस सिर्फ मेरे सपनों के लिए है। हाँ जी दोस्तों, डेडिकेशन से रिलेटेड मैं आपको एक कहानी भी सुनाती हूँ। एक संत महात्मा थे, तो संत महात्मा अपना कुछ श्लोक बना रहे थे, उनको एक शास्त्र लिखना था, उसमें अपनी भाषा में, अपनी संस्कृत भाषा में उन्हें श्लोक तैयार करके लिखना था, और उनके साथ एक भक्त भी रहता था। तो भक्त क्या था, उनकी सेवा में लगा रहता था, और संत महात्मा सिर्फ अपने उस राइटिंग में ही मतलब बिजी रहते थे। उनको लगता था कि यदि मैं थोड़ा सा भी अपना इधर उधर मन भटकाता हूँ तो ज़रूर मुझे मतलब अपना श्लोक लिखने में कोई गलती हो सकती है। तो वो ना कभी खाने पे ध्यान देते थे कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो भक्त रोज़ आता था, जब खाने का टाइम हुआ, उनके भोजन का टाइम हुआ, तो उनके पास थाली लेके आ जाता था। लेकिन भक्त क्या था, वो भी थोड़ा सा उतना मतलब छोटा था भक्त, कोई ज़्यादा उसको ज्ञान

चीज़ों का नहीं था, लेकिन हाँ उनकी सेवा करना ही मतलब अपना धर्म मानता था, और उनको देखता मतलब था कि ये मेरे गुरु कैसे काम कर रहे हैं, और वो सेवा में पूरे समय लगा रहता था। लेकिन बच्चा था, भक्त था लेकिन बच्चा भी था, तो थोड़ा सा ध्यान उसका भटकता भी था। तो जब वो खाना बनाता था संत महात्मा को, तो कई बार नमक भी भूल जाता था, और जब उसके भोजनशाला में नमक ख़त्म भी हो गया तो उसका ध्यान भी नहीं गया कि अब मुझे खाने में नमक डालना बहुत ज़रूरी है। तो बस खाना बनाने लगा और नमक डालना ही भूल गया। वो रोज़ बनाता, रोज़ भूल जाता, लेकिन जब वो संत महात्मा उस खाने को खाते ना, तो कभी उनका ध्यान ही नहीं जाता। खा लेते थे, रोज़ थाली वापस दे देते थे। उसके लिए भक्त जाता खाना लेके। कम से कम 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, जब उनका काम पूरा हुआ, उनका शास्त्र पूरा लिखा गया, फिर उसके बाद जब भक्त एक दिन थाली लेके आया, तो थाली लेके आया पूरा वैसे ही जैसे रोज़ लगाता था वैसे ही लेके आ गया, और सामग्री भी लगभग जैसी रोज़ देता था उसने दिया, कुछ नया भी उसमें नहीं चेंज किया था। फिर जैसे ही संत महात्मा ने उस दिन भोजन खाना शुरू किया, और पहले ही निवाले में उनको जब लगा, पहला मतलब उनने बाइट लिया और जैसे ही खाया तो बोले, अरे इसमें तो आज नमक कम है। तो 2 पल के लिए तो भक्त भी मतलब ये लगा कि मैं तो रोज़ एक सा खाना बना रहा हूँ, लेकिन कभी भी मुझे ना ये लगा ही नहीं कि मैं नमक नहीं डाल रहा हूँ। वो भी भूल गया था कि नमक डालना नहीं डालना है। तो जब संत महात्मा ने बोला कि आज तो नमक नहीं डाला है तुमने, तो भक्त बोला, गुरु जी मैं तो रोज़ बना रहा हूँ खाना और रोज़ ही नमक नहीं डाल रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि शायद आपको नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं आपके लिए नमक नहीं डालता था। फिर उनको लगा कि अरे, थोड़े 2 पल के लिए वो मतलब शांत हुए और सोचा कि अपनी किसी काम को करने में जब आप पूरी तरीके से डेडिकेट हो जाते हैं, तो आपके आजू बाजू क्या चल रहा है, आप क्या खा रहे पी रहे हैं। हाँ, खाना पीना ज़रूरी है, तो संत महात्मा ने उसको नहीं छोड़ा, नहीं तो आप सोचें कि मैं बोल रही हूँ डेडिकेशन है तो सिर्फ पढ़ना है, या अपने सपनों को जो भी आपको पूरा करना है उसमें लग जाए खाना पीना छोड़ के। नहीं, जो आपकी जो डेली रूटीन के काम है वो तो आप करते ही हैं, वैसे ही संत महात्मा भी अपना जो काम कर रहे थे वो करते रहे। लेकिन मार्क करने वाली बात ये थी दोस्तों, खाना था उनको पेट भरना था, लेकिन पूरा फोकस उनका कहाँ पर था, सिर्फ कि मुझे उसको लिखना है। तो उन्होंने उस स्वाद को भी नहीं देखा और लिखते गए। यदि ऐसा डेडिकेशन सच में किसी का है, तो मुझे लगता है कि सफलता उससे कहीं दूर नहीं है। तो सपने के लिए डेडिकेशन होना चाहिए। कभी कभी आपको बाकी चीज़ों से थोड़ा समय निकाल के अपने गोल को तो देना ही पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाकी और कोई चीज़ें ना करें, करें, लेकिन जिसके लिए सक्सेस चाहिए उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, खाने पीने का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हम देसी हैं और देसी लोगों को खाना पीना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है ना, तो अपना सपना भी पूरा कीजिए, सब कीजिए, लेकिन डेडिकेशन के साथ कीजिए। आइए सुनते हैं एक देसी तड़का वाला एक देसी गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विद योर आरजे सुरभि। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, सपनों की और सफलता की। हाँ जी दोस्तों, अभी हमने दो इंग्रेडिएंट्स का तड़का लगाया अपनी सफलता में। एक था डिटर्मिनेशन, दूसरा था डेडिकेशन। और इसी तीसरे इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो भी डी से ही स्टार्ट होता है दोस्तों, ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ये कोई मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पहली बार तो नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जब से हम बॉर्न हो जाते हैं और थोड़ी सी समझ रखते हैं तो डिसिप्लिन तो मतलब हमारे पेरेंट्स शुरू से ही हमको शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना बेटा वैसा ऐसा। डिसिप्लिन मतलब कुछ ना कुछ सीखना और उसको सीख के टाइम पे करना हर चीज़ के लिए। मतलब कहीं भी आलस नहीं होना चाहिए आपको कि आज रहने दीजिए, आज नहीं करते हैं वैसा वाला।

यदि डिसिप्लिन करें तो मान सकते हैं कि सफलता आपके बहुत पास है, लेकिन डिसिप्लिन आपको रोज उठाकर काम करवाएगा ऐसा नहीं। मतलब मन में आएगा, उठा ये सोच लिया है करना है, तो वो जो डिसिप्लिन कहते हैं ना अपन, कि नहीं कर लिया है और इतने बजे मुझे उठना है और इतने बजे मुझे करना है, ये पहले तो मन में ही आ जाना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो वो डिसिप्लिन अपने आप अपनी लाइफ में आने लगता है। क्योंकि डिसिप्लिन आपका अलार्म नहीं है, आपका मन ही आपका अलार्म है, और वो जो मन है उसी के ही थ्रू आपके पूरी सक्सेस के में डिसिप्लिन आ जाता है। तो पहले तो मन को बनाना पड़ता है, क्योंकि कभी मन करेगा पढ़ने का और कभी नहीं करेगा, तो नहीं ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, डिसिप्लिन कहेगा कि चलो सिर्फ 20 मिनट से शुरू करते हैं। कभी लगता है कि नहीं नहीं आज तो नहीं करना है, बहुत थके हुए हैं, नहीं करूँगी नहीं करूँगी, नहीं नॉट लाइक दैट। तो डिसिप्लिन जब आएगा तो आपको करना है, ये मन में आ ही जाएगा, और करना है कितने बजे करना है, कितने मिनट के लिए करना है, ये ज़रूर आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप आर्मी के डिसिप्लिन को आप जानते हैं कैसा होता है, रेडियो का आज आप जहाँ आकाशवाणी सुन रहे हैं वहाँ भी टाइम सेकंड से चलता है। तो जब ये चीज़ें टाइम के साथ आपका काम होता है ना, तो सक्सेस भी उतनी ही आगे चलती है। दिल को चैन देते हुए, हर काम को सुकून से करते हुए और पूरी प्लानिंग के साथ करते हुए, यदि कोई काम करते हैं, डिसिप्लिन भी है, दिल को सुकून भी है, दिल को चैन भी है, सब कुछ है, डिटर्मिनेशन भी है और डेडिकेशन भी है, तो समझ लीजिए सफलता आपके पास ही है। जब सफलता मिल जाएगी तो फिर दिल का चैन भी आपका आपके पास ही रहेगा, कहीं खोएगा नहीं कि मैं परेशान हो रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस दिल के चैन को बनाए रखिए, क्योंकि सफलता आपके पास आ ही गई है डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ।

वेलकम बैक माय डियर लिसनिंग. यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विथ मी योर आरजे सुरभि. हाँ जी दोस्तों, सफलता के बहुत करीब हम आ चुके हैं. हमारे तीन इंग्रेडिएंट्स डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिसिप्लिन, ये तीनों हमारे पास आ गए हैं तो मीन्स सफलता भी आपके पास आ चुकी है. लगभग लगभग तो आ ही चुकी है, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं आप तो कहाँ जाएगी सफलता. हाँ जी दोस्तों, अभी मैं बात करूँ, एक इंग्रेडिएंट्स रह गया है, मतलब इंग्रेडिएंट रह गया है, क्योंकि जैसे कि आप दाल खाते हैं और उसमें तड़का ना रहे, सब कुछ मिक्स किया है, धनिया डाला है सब, कर ऊपर से एक मिर्ची का तड़का होना बहुत ज़रूरी है. तो सब किया आपने, डेडिकेशन भी था आपका, डिटर्मिनेशन भी था, डिसिप्लिन भी था, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ा सा आलस था. हाँ जी दोस्तों, आपको लगा कि आज पढ़ लेते हैं, डेडिकेशन था तो आज तो पढ़ लिया मैंने, बहुत मन लगा के पढ़ा और डिसिप्लिन से उतने ही टाइम पढ़ लिया, लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट डे आपको थोड़ा सा आलस आ गया. मीन्स मैं बात कर रही हूँ जो फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो है कंसिस्टेंसी. जी हाँ दोस्तों, कंसिस्टेंसी. सब कुछ है आपके पास, ठान भी लिया है, बहुत मन लगा के कर रहे हैं और टाइम पे भी कर रहे हैं, लेकिन आज किया कल नहीं कर रहा हूँ मैं. आज कर लिया, आज दिन भर कर लिया मैंने, कोई भी काम है, कोई भी आप चाहे प्रिपरेशन हो या किसी रिश्ते को भी, एक दिन तो बड़े प्यार से निभा लिया और उसके बाद आप बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है ना, अभी तो पूछ लिया ना, अब देखेंगे, एक दो महीने बाद देख लेंगे. नहीं नहीं, चाहे कोई आपका करियर की बात हो, आपके रिश्ते की बात हो, चाहे आपका वर्क प्लेस हो, कहीं भी है, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंसी का होना भी उतना ही ज़रूरी है दोस्तों. एक दिन बहुत मेहनत करके फिर 10 दिन आराम, नहीं नहीं ये तो कंसिस्टेंसी है ही नहीं. और छोटी सी भी प्रोग्रेस जो रहेगी वो शायद थोड़ी सी दूर हो जाएगी आपसे, क्योंकि

कि एक दिन तो पढ़ा, ठीक है पढ़ लिया, लेकिन आप फिर 10 दिन के लिए गैप कर लेते हैं, कुछ भी है काम कर रहे हैं आप अपने वर्क प्लेस में, आज तो बहुत मन लगा के किया, और फिर उस काम को छोड़ दिया, काम तो कंप्लीट हुआ नहीं ना, तो छोटी सी प्रोग्रेस भी चलेगी, लेकिन थोड़ी सी प्रोग्रेस के साथ उसमें रेगुलरिटी होना ज़रूरी है। मीन्स आज आप 20 मिनट बैठे हैं, हो सकता है कल दूसरे दिन आप बहुत बिजी थे नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है ना 5 मिनट आप निकाल लीजिए, 20 मिनट्स नहीं हो पाए, कोई इमरजेंसी थी, लेकिन आपने जो वो 5 मिनट निकाले ना, वो 20 मिनट्स का काम भी पूरा कर सकते हैं। मतलब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपका कोई स्कूल वर्क है, आपकी कुछ प्रिपरेशन है, या कोई रिलेशन है, अपन मीन्स सक्सेस का मतलब हम सभी का सिर्फ ये नहीं है कि यदि हम ये कर रहे हैं कि हमको वर्क प्लेस में सक्सेस चाहिए, स्टडी में चाहिए, मेरा करियर बन गया, कई बार सक्सेस हमें रिलेशन में भी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इससे पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। तो वही कहना चाहती हूँ कि कंसिस्टेंसी, आज दोस्त यार से मिले, आप अपने रिलेटिव से मिले, अपने पेरेंट्स को फ़ोन लगाया फिर 1 महीने नहीं लगाया, नहीं दोस्तों कंसिस्टेंसी हर जगह होना ज़रूरी है। तो सक्सेस आपके साथ ही होगी जब आपके साथ डिटर्मिनेशन मिल गया, डेडिकेशन हो गया, और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है, तो फिर तो मौजा ही मौजा है जी, क्योंकि आपकी सक्सेस आपके साथ है, सक्सेस आपकी किसी भी फील्ड में है, तो हो जाए फिर मौजा ही मौजा इस ब्यूटीफुल सॉन्ग के साथ।

वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। अभी हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़ रहे हैं हमारे लिसनर्स सरवर अली जी को मेरी तरफ से भी सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सरवर अली जी। आपकी सुबह की शुभकामनाएं के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे और अपने विचारों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अभी सक्सेस का नशा चढ़ा हुआ है और मोजा ही मोजा हो गया है, थोड़ा सा डांस भी कर लेते हैं, क्योंकि जब सक्सेस मिलती है ना तो एक तो पूरे दिन मस्ती चलती ही रहती है। जी हाँ दोस्तों, इस सक्सेस के नशे में अभी आप डूबे रहिए, क्योंकि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आपको सक्सेस मिली है, फिर एक थोड़ा सा अलग तड़का आपके पास आने वाला है जो आपको थोड़े से मूड को थोड़ा सा चेंज कर देगा। जी दोस्तों, इसके लिए पहले डांस कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या चेंज आने वाला है आज की अपनी इस बात में।

0: हाँ जी दोस्तों, डांस तो कर लिया ना, मज़ा आया कि नहीं आया? ठीक है ना, सफलता है, मज़ा है, डांस है। अब आपके लिए मेरे पास है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उसको सुनिए जो आपके नॉलेज को और भी बढ़ाएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपके इस वीडियो के बाद अपनी मस्ती मजाक के साथ, अपनी बातों के साथ। तो हमारे साथ जुड़े रहिए FM रेनबो 101.9 में विथ मी और RJ सुरभि।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हैदराबाद। श्रोताओं, हम सब अपनी जिंदगी में क्वालिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अच्छी क्वालिटी का सामान, अच्छी क्वालिटी का काम, अच्छी सर्विस। लेकिन क्या क्वालिटी का मतलब सिर्फ किसी प्रोडक्ट की अच्छाई तक सीमित है, या फिर क्वालिटी एक ऐसी सोच है जो हमें अपने काम को हर दिन थोड़ा और बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है? इसी सोच, इसी फिलॉसफी और कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की इसी जर्नी को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DK श्रीवास्तवा जी, QCFI से जुड़े एक ऐसे विशेषज्ञ जिन्होंने अपने अनुभव और ट्रेनिंग के माध्यम से देश में क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्वालिटी सर्कल, 5S, काइजन, लीन क्वालिटी सर्कल से लेकर आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंडस्ट्री 4.0 के दौर तक क्वालिटी की दुनिया का सफर काफी रोचक रहा है। तो आइए आज बात करते हैं कि क्वालिटी असल में है क्या? एक सोच, एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? और हम अपनी रोजमर्रे की जिंदगी में क्वालिटी की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? श्रीवास्तवा जी, सबसे पहले आपका आकाशवाणी पर हार्दिक स्वागत।

0: है, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद, आपने इतना बढ़िया अवसर दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
0: श्रीवास्तवा जी, सबसे पहले श्रोताओं के लिए अगर आप सरल शब्दों में बताएं कि क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया यानी QCFI क्या है और इसका मूल उद्देश्य क्या है।
1: क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया, हम लोगों ने इसको स्थापित किया था 1982 में, 31 दिसंबर 1982 को तेलंगाना सोसाइटी एक्ट से हमको परमिशन मिली थी
0: जी।
1: और ये एक लाभ रहित संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मेन उद्देश्य था कि उस समय तक पूरे इंडिया में कोई ऐसा फोरम नहीं था जिसने कभी ग्रासरूट लेवल के लोगों को डेवलप करने की बात की हो।
0: जी,
1: ये हमारा पहला फोरम है जिसमें हम, चाहे इंडस्ट्री के लोग हो, किसी भी संस्था में काम कर रहे हैं, जो ग्रासरूट लेवल के लोग हैं
0: जी,
1: उनको कैसे डेवलप किया जाए। आज यदि हमको जितना डेवलप करते चले जाएंगे, निश्चित रूप से संस्थान उतना ही तेजी से डेवलप होगा, क्योंकि असली मूल रूप से जो काम करने वाले लोग हैं, जो प्रोडक्ट बनाने वाले लोग हैं, वो तो ये है। तो इसलिए इस उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने इसमें लगे, और वो लोग जिनके मन में था कि अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, मनुष्य के लिए जीवन मिला है,
0: जी,
1: कुछ
0: जी.
1: कर जाए, तो स्वेच्छा से जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहे हम उनको इसमें जोड़ते चले गए। और आज 35 चैप्टर्स हमारे ऑल ओवर इंडिया है, 14 कंट्रीज का हमारा एसोसिएशन है और 12,000 से ज्यादा हमारे मेंबर्स हैं। और आज इंडिया के अंदर जितने भी संस्थान हैं हमारे इससे जुड़े हुए हैं, चाहे आप पोर्ट लीजिए, एयरपोर्ट लीजिए, रेलवे लीजिए, जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जितने भी हैं, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि इनके ग्रासरूट लेवल के लोगों को निरंतर अपलिफ्ट किया जाए, उनकी कौशलता को बढ़ाया जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक मिशन भी है। तो हम लोग इसको लगातार 1982 से कर रहे हैं।
0: जी सर, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया है कि QCFI, और आपने जो आंकड़े बताए उसके हिसाब से तो लगता है कि वाकई में बहुत मेहनत है इसे बनाने में। तो जी सर, हमारा अगला सवाल, आम तौर पर क्वालिटी शब्द सुनते ही हमारे मन में किसी वस्तु या प्रोडक्ट की क्वालिटी का विचार आता है। आपके लंबे अनुभव के आधार पर क्वालिटी का व्यापक अर्थ आप किस तरह से समझाते हैं हमारे श्रोताओं को?
1: एक सरल भाषा में बताएं, किसी समय जब हम क्लास ले रहे थे तो सीनियर लोगों को हमने कहा ये क्वालिटी सर्किल क्वालिटी या प्रोडक्ट के लिए नहीं है। वो तुरंत बोला श्रीवास्तव जी, जब क्वालिटी के लिए नहीं है तो फायदा क्या
0: जी।
1: तो हमारा एक ही क्वेश्चन था, मैनेजिंग डायरेक्टर से लेकर के स्वीपर तक
0: जी,
1: मेरे को एक आदमी बता दो जब वो घर से चलता है तो ये सोच के चलता है कि आज हम जाएंगे और जानबूझ के खराब काम करेंगे। तो ऐसा तो कोई नहीं है। तो एक आदमी ऐसा बता दो जब वो काम कर रहा होता है, अपने बॉस को देखता है तो जानबूझ के गड़बड़ करता है जिससे उसको डांट पड़े और मजा आए, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? आदमी कभी क्वालिटी खराब नहीं करता
0: जी,
1: कहां पर गड़बड़ है वो बताने की बात भी करता है, जब नहीं सुनी जाती है तो सोचता है जल्दी। तो यहां क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को इम्प्रूव करने की बात है, क्वालिटी ऑफ वर्क प्लेस को इम्प्रूव करने की बात है। क्वालिटी तो अपने आप आएगी, वो बाई प्रोडक्ट के रूप में है। कोई भी बंदा जानबूझ के काम खराब नहीं करता, कोई भी मशीन जानबूझ के कोई चीज खराब नहीं करती
0: जी, जी।
1: हमने मशीन को सेट किया इसलिए गड़बड़ है क्वालिटी। तो क्वालिटी जो डॉक्टर जुरान ने बड़ा सिंपल से कहा है, फिटनेस फॉर यूज, जो बंदा उपयोग में ला रहा है उसके लिए ठीक है वही क्वालिटी है। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वही क्वालिटी है। और आज यदि अच्छे वातावरण में कोई भी काम करता है तो क्वालिटी तो अपने आप आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता
0: जी। तो इसका मतलब ये है कि क्वालिटी जो है वो मेजरमेंट में नहीं नापा जा सकता है,
1: उसकी कोई लिमिट नहीं है ना
0: जी।
1: आज जिसको हम क्वालिटी कह रहे हैं, कल के दिन हो सकता है उसके ऊपर कोई चीज आ जाए।
0: जी जी,
1: आज आप देख रहे हैं परिवर्तन, जब मोबाइल शुरू शुरू में आया था तो सोचते थे खाली फोन से बात होगी, और आज हर चीज मोबाइल में
0: जी
1: है।
0: हाँ।
1: और अभी भी आगे बढ़ती चली जा रही है
0: AI के माध्यम से, तो और भी बढ़ता चला जा रहा है।
1: राइट
0: जी सर, बहुत ही सही कहा है आपने, मतलब क्वालिटी को सिर्फ रिजल्ट से नहीं बल्कि प्रोसेस और अप्रोच से भी जोड़कर देखना चाहिए, और शायद इसी सोच से एक ऑर्गेनाइजेशन में लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट की शुरुआत होती है। सर, हमारा अगला सवाल ये है कि QCFI की यात्रा वर्ष 1982 से शुरू हुई है। पिछले कई दशक में टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री और वर्किंग मेथड्स में बहुत बदलाव आए हैं। आपके अनुसार क्वालिटी के मूल सिद्धांतों में बदलाव आए हैं या उन्हें लागू करने के लिए तरीके अलग है?
1: सी, यहां पर हम लोगों ने उनको क्वालिटी प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे उस पर भी, और उसको कैसे जांच करेंगे उस पर भी

0: विचार करने को बोलते हैं और ये भी सोच कहते हैं कि जो क्वालिटी आज बना रहे हो क्या इससे बेहतर कल बना सकते हैं
1: जी,
0: हम इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या। तो वो जो सोच आती है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाती है।
1: जी,
0: तो यहां पर जो है हम उनके अंदर ऐसे टूल्स टेक्निक जो बिना पढ़ा लिखा भी सीख सकता है
1: जी,
0: हम उसके माध्यम से उनको हर इवन सफाई करने वाला है वो उसको भी हम कहते हैं कि ये सोचो कि ये गंदा क्यों हो रहा है। यदि गंदा नहीं होगा तो तुमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो वो कुशलता आप कहीं और लगाएंगे, आपका ब्रेन अच्छा काम करेगा। तो हमें व्यक्ति के अंदर की क्वालिटी को बेहतर बनाना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है
1: जी,
0: लेकिन ये जो क्वालिटी है इसकी आप कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते व्यक्ति की
1: सीमा
0: और
1: नहीं
0: उसकी
1: है।
0: क्वालिटी कहां से कहां पहुंच सकती है। आज आप देखिए महाभारत और रामायण जब हम देखते हैं उन लोगों की जो क्वालिटी हुआ करती थी शायद अभी हम बहुत नीचे हैं। तो बहुत कुछ करने के लिए है इसमें
1: जी, यानी कि वर्जन जो होता है वो मैटर करता है क्वालिटी में ना कि क्वांटिटी में।
0: या
1: जी, और आपने टूल्स की बात भी कही है तो इसका मतलब महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि टेक्नोलॉजी बदल सकती है, टूल्स बदल सकते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की सोच शायद हमसे हमेशा रिलेवेंट होगी।
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप
1: जी,
0: क्योंकि हर समय अपने को सोचना है हम फर्दर कैसे इम्प्रूव करें। तो ये जो इम्प्रूवमेंट आ रहा है ये इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आदमी सोचेगा तभी तो कुछ होगा
1: जी,
0: और हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ना चाहिए। आज आप 50 साल पहले हम लोग कैसे काम करते थे, क्या कल्चर था, आज कैसे चेंजेज आए हैं
1: जी,
0: पहनावे से लेकर के हर चीज में, वो कारण इसलिए आए हैं कि हमारी सोच बराबर अग्रसर है अच्छी क्वालिटी के लिए
1: जी,
0: और हमें लोगों को उसी तरह बढ़ाना है बराबर।
1: जी सर, सर क्वालिटी सर्कल शब्द आम श्रोता के लिए थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, ये क्वालिटी सर्कल आप इसे किसी बहुत सरल एग्जाम्पल के माध्यम से समझा सकते हैं कि क्वालिटी सर्कल असल में होता क्या है?
0: ओके, ये जो शुरुआत हुई थी तो लोगों के जापान में जो बहुत बुरी हालत में हो गया था 1950s में, तो उन्होंने देखा कि लोगों को छोटी छोटी चीजें ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग कैसे दे, तो उन्होंने वहां के फोरमैन को ट्रेन किया और उनसे कहा कि हफ्ते में एक घंटे इनको पढ़ाओ। तो जब वो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की तकनीक बता रहे थे ग्रुप में
1: जी,
0: तो देखा गया कि वो प्रॉब्लम जो उनके यहां की आ रही वो भी सॉल्व करते जा रहे थे
1: जी,
0: तो उन्होंने क्या किया, एक क्वालिटी कंट्रोल के पढ़ा रहे थे क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, तो उसका नाम रख दिया क्वालिटी कंट्रोल सर्कल। ये 1962 में हुआ, लेकिन जब जापान बढ़ने लगा तो सब देखने लगे क्या क्या मालूम है क्वालिटी कंट्रोल सर्किल, कंट्रोल सबसे सबसे से लोगों को थोड़ी एलर्जी है तो क्वालिटी कंट्रोल सर्किल में इसको ड्रॉप कर दिया, ये हो गया क्वालिटी सर्किल। लेकिन बेसिक उद्देश्य ये है, ये जो सर्किल है यानी लोगों का जो छोटा सा ग्रुप है इसकी क्वालिटी यही है कि ये मिलजुल करके एक एक करके अपनी प्रॉब्लम को लेते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को लेते हैं, सॉल्व करते हैं
1: जी।
0: और ये केवल संस्थान के लिए नहीं है, इवन आप अपने घर में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बैठ जाइए हफ्ते में एक दिन एक घंटे के लिए और पूछिए देखिए क्या क्या दिक्कतें आपके घर में आ रही हैं। फ्रीली आप देखिए पॉइंट्स लिखकर के आते हैं और जब वो दिक्कतें निकल के आती हैं फिर एक प्रॉब्लम को लिया आपने और फिर हम उसको हल करना शुरू करते हैं। आज हमने खुद प्रैक्टिस किया घर में और हमने कॉलोनीज में प्रैक्टिस कराया है कि किस किस तरीके से कॉलोनी है वहां पर जानवर बहुत आते हैं, क्यों आते हैं जानवर, रूट कॉज क्या है, कूड़ा में खाने को मिल जाता है तो यदि हम कूड़े को कायदे से फेंके और समय से उड़ जाए तो जानवर नहीं आएंगे और बंद हुआ। तो इसी तरीके से हमने गांव में तमाम सारे इस तरह के जो प्रोजेक्ट लिए, कारखानों में लिए और हम देखा कि लोग जो है जब मिलजुल करके काम करते हैं ना तो कहते हैं कुछ नहीं मात्र एकता है। और हमारे यहाँ तो ग्राम पंचायत में ये सिखाया गया था पहले मिलजुल करके काम करने को, तो हमारी तो ब्लड में था, भूल गए थे, फिर से जगाने की बात आई।
1: जी जी, तो ये आपने तो ये कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसान बना दिया है, यानी कि क्वालिटी सर्कल जो है किसी प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर नहीं है, ये इंसान की मानसिक स्थिति और अपने सराउंडिंग्स के ऊपर निर्भर होती
0: बिल्कुल
1: है।
0: बिल्कुल, किसी तरह की प्रॉब्लम भी आती है, बच्चा पढ़ता नहीं है
1: जी,
0: बच्चा झगड़ा बहुत करता है, बीमार रहता है, घर में हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, आप जरा उसको एनालाइज कीजिए, उसमें छोटे छोटे टूल होते हैं और उनको टूल मीन्स बड़े सिंपल सा कारण निकालो फिर रूट कॉज ढूंढो और उसको हल करो। प्रैक्टिस करो, आप देखो प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाती है।
1: तो सर अब जब ये क्वालिटी सर्कल जो है अपने संस्था पे कैसे इस्तेमाल होती है किसी एक

0: एग्जाम्पल से बता सकते हैं?
1: सी, किसी भी संस्थान में पहले तो हम क्या करते हैं, वहां के जो मुखिया हैं, मान लीजिए हम आपके ऑल इंडिया रेडियो में चालू करना चाहें, तो हम सिंह साहब को पहले कन्विंस करेंगे
0: जी
1: कि साहब आपके यहाँ के जो लोग हैं, एक बार वो ग्रुप में बैठेंगे, अपनी प्रॉब्लम निकालेंगे, तो जो भी काम करते हैं वो और सरल होगा।
0: जी
1: यदि वो एग्री हुए तब फिर हम उस संस्थान के लोगों
0: जी
1: को एक अवेयरनेस देते हैं और कहते हैं घोड़े को घाट तक ले जाओगे जब उसने पानी नहीं पिला सकते। तो जो लोग स्वेच्छा से आना चाहते हैं
0: जी
1: पहले हम उनको लेते हैं, उनका छोटा ग्रुप बनाते हैं, उनको गाइड करते हैं और वो प्रॉब्लम लेके हल करना शुरू करते हैं। उनको देख के जो बाकी लोग हैं वो भी आ जाते हैं, क्योंकि हफ्ते में एक दिन 1 घंटे लगने वाला है और उससे अपनी ही प्रॉब्लम को सॉल्व होने वाली है, अपने मरे स्वर्ग मिलना है किसी और के
0: जी
1: मरे।
0: जी जी बहुत अच्छी बात कही आपने श्रीवास्तवा जी। क्वालिटी सर्कल में एम्प्लॉयज

0: बहुत अच्छी बात कही आपने श्रीवास्तवा जी। क्वालिटी सर्कल में एम्प्लॉयज की एक्टिविटी यानी कि उनका एक्टिविटी और उनका पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके एक्सपीरियंस में इसका प्रभाव सिर्फ काम की क्वालिटी तक सीमित रहता है या इससे एम्प्लॉयज का कॉन्फिडेंस, थिंकिंग और काम के प्रति एटीट्यूड में भी बदलाव आती है?
1: सबसे बड़ा परिवर्तन ही यही आता है, चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज।
0: जी
1: क्यों लोग अभी तक समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई सुनता नहीं है, जाने दो। अब वो निगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है, और जो हमारे यहाँ कहें ना विकार,
0: जी
1: वो
0: जी
1: जब विकार भरने लग जाते हैं तो समस्या शुरू होती है। यहां पर क्या होता है, आपकी प्रॉब्लम आई है, आपका जो बॉस है वो भी आपके साथ बैठता है,
0: जी
1: आपकी प्रॉब्लम को देखता है, सामान मुहैया करवाता है। रिजल्ट क्या होता है कि जब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है और उसका काम आसान हो जाता है तो सुपरवाइजर को भी आसानी हो जाती है, क्योंकि बार बार भागना नहीं पड़ता है, और यहां जो है उसका काम सरल हो जाता है। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो सबसे बड़ी बात क्या है, इंडस्ट्री में तो 8 घंटे काम करता है,
0: जी
1: एक तिहाई, बहुत सारी छुट्टियां होती है, रुपए में 4 and 25%, लेकिन जो 75% है उसका भी खुद बॉस है,
0: जी जी
1: और वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आई उससे वो अपने घर की प्रॉब्लम भी सॉल्व करने लगता है, और उसका अल्टीमेट इफेक्ट ये पड़ता है कि घर की प्रॉब्लम फैक्ट्री नहीं आती, यहाँ की घर नहीं जाती,
0: जी
1: और जीवन बेहतर होता जाता
0: बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने बताया है। लेकिन मुझे एक बात बताइए सर, क्वालिटी सर्कल है, क्या वो हायरार्की मेंटेन करना है कि इसी लेवल के लोगों को मेंटेन करना चाहिए या उनके हायर अथॉरिटी या उनके हायर लेवल वालों को भी मेंटेन करनी चाहिए? किन लेवल वालों को मेंटेन करनी
1: बहुत
0: चाहिए?
1: अच्छा क्वेश्चन है। सी शुरू शुरू में हफ्ते में जब बच्चे को स्कूल भेजते ना,
0: जी
1: तो शुरू शुरू में हफ्ते में एक दिन 1 घंटे ही लोग बैठते हैं, प्रॉब्लम को हल करना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं हम इनको नेक्स्ट स्टेप में ले जाते हैं, लीन क्वालिटी सर्किल। तो जो वर्कर लेवल पर है, जितनी प्रॉब्लम नीचे ग्रास रूट लेवल की आती है ये सॉल्व करते हैं, मिडिल लेवल के जो होते हैं वो भी यही टूल्स टेक्निक अप्लाई करते हैं, लेकिन वो जो प्रॉब्लम ये नहीं सॉल्व कर सकते उनको वो लेते हैं, ये भी जो नहीं सॉल्व कर सकते उनको टॉप मैनेजमेंट के लोग लेते हैं, और उनको क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम का नाम दिया गया है, क्वालिटी सर्कल का नहीं।
0: जी
1: तो जब हम कंपटीशन करते हैं, क्वालिटी सर्कल का अलग, लीन क्वालिटी सर्कल का अलग, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम का अलग करते हैं, तो उनका लेवल हो गया, पहले उनको सीखना है, फिर वो अपने लेवल पे उसको करना शुरू कर देते हैं, और कई बार तो देखा है कि टॉप मैनेजमेंट की प्रॉब्लम भी लोग कई बार सॉल्व कर देते
0: जी जी सही
1: हैं।
0: वाकई में सर, यानी कि जब किसी एम्प्लॉय को लगे कि उसकी बात सुनी जा रही है तब उसका कॉन्फिडेंस भी नेचुरली बढ़
1: बढ़
0: जाता है।
1: जाते हैं।
0: जी
1: अरे भाई, आदमी ज्यादातर ससुराल क्यों जाता है, क्योंकि वो उसकी हदें सुनी
0: जी सर सही कहा
1: जाती
0: आपने। सर आपने भारत में क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज को उनके शुरुआती दौर से देखा है, क्या आप अपने अनुभव से ऐसा कोई उदाहरण हमारे श्रोताओं के साथ बता सकते हैं जहां किसी एक सामान्य एम्प्लॉय के छोटे से सुझाव या विचार ने ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़ा और सकारात्मक बदलाव लाया हो? और ऐसे उदाहरण से हमें यह भी समझने को मिलता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रगति में हर एम्प्लॉय की भागीदारी और उसके विचार कितने महत्वपूर्ण होते हैं।
1: सी, हमने जब इसकी शुरुआत करी जूट इंडस्ट्री में, जहां पर लोग पढ़े लिखे नहीं है,
0: जी
1: 40% से ज्यादा लोग अंगूठा लगा के पेमेंट लेते हैं, अब उनका जो लूम है उसमें एक बोर्ड लगा होता है, निकल जाता है, वो टूट जाता है,
0: जी
1: निकल जाता है तो फिर से लगा देते हैं। ये पूरे दुनिया भर के सब जूट मिल में ऐसे चल रहा है,
0: जी
1: उसका नट निकल जाया करता है, बाहर निकल जाता है। एक दिन वो मीटिंग में आया और कूलर लगा हुआ था, बड़े ध्यान से कूलर को देख रहा है,
0: जी
1: का भैरव क्या देख रहे हो, सब ये इतनी तेजी से चल रहा है, इसका नट बाहर नहीं आता, हमारा लूम तो धीरे धीरे चलता है, फिर नट बाहर क्यों आ जाता है?
0: जी जी
1: और वो उसके दिमाग में आया, तो उसने ये हुआ कि इसमें हम ऐसा करें, इस तरह का नट लगाएं और इसमें एंटी चूड़ी जो होती है उसके हिसाब से करके लगाएं, और वो चीजें, पहले वो पिन लगती थी, एक्चुअली
0: जी
1: नट नहीं लगती थी, जो पिन जो कट जाया करती थी,
0: जी जी
1: तब उसने कहा हम नट लगाएं। जब नट लगाया तो उसमें एक लेफ्ट को मारता है, एक राइट को मारता
0: जी
1: है, तो जब हफ्ते भर के बाद देखा एक लेफ्ट वाला सबका खुल रहा है, राइट वाला नहीं, तो अब ये तो पढ़े लिखे नहीं है मैकेनिकल के, तो मैकेनिकल वाले बताया कि इसके चूड़ी रिवर्स और इसका ऐसे करना पड़ेगा, और आज पूरी जूट मिल में, इंडिया ही नहीं अब्रॉड भी ये इम्प्लीमेंट हो गया, अब वो बोर्ड कभी गिरता नहीं है।
0: अरे वाह सर, मतलब ये कौन से साल में हुआ था
1: ये
0: सर? ये
1: 83 की बात कर रहा हूं मैं,
0: 83 की बात है
1: और
0: सर,
1: मैं
0: वाकई
1: पहली
0: में
1: जब
0: बहुत
1: शुरुआत
0: अच्छा।
1: करी तब से।
0: जी, वाकई में सर आपने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया है और हमारे श्रोताओं को समझाया कि इनोवेशन हमेशा किसी बड़े डिजिग्नेशन से नहीं आता, कभी कभी ग्राउंड लेवल पर काम करने

0: वाले व्यक्ति से भी हमें ऑब्जर्वेशन में आ जाता है ये सब। तो श्रीवास्तवा जी, हमारा अगला सवाल ये है कि UCFI के कार्यों में 5S एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आम व्यक्ति को बहुत सरल भाषा में समझाया हो तो 5S क्या है और हमारे डेली लाइफ में, रोजमर्रे की जिंदगी में इसका कैसा महत्व हो सकता है?
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी कॉन्सेप्ट को लागू करने के पहले हम इंडस्ट्री को कहते हैं, पहले आप 5S लागू कीजिए। इंडस्ट्री क्या, इवन आप क्या भी करना है तो पहले कहेंगे 5S करो।
0: जी
1: हम जब घर में गृहिणी सुबह सबसे पहला काम क्या करती है, किचन में जाना है तो पहला काम क्या है, वहां की सफाई होनी
0: सफाई।
1: चाहिए,
0: जी
1: ठीक है ना। तो जो साफ सफाई, हिंदुस्तान पूरे विश्व में सफाई के लिए प्रसिद्ध था,
0: जी
1: याद करो अपने दादी बाबा के समय
0: जी
1: कसम। लेकिन जापानीज ने जब इसको देखा, अच्छा लगा, हमारे यहाँ आए, वो आकर के ग्राम पंचायत देखा, उन्होंने लिपे पुते मकान देखे, अंदर जाकर के देखा किस तरह मटके के ऊपर मटका कैसे रखते हैं,
0: जी
1: बहुत अच्छा लगा। लेकिन जापानीज का एक ही प्लस पॉइंट है, वो क्या करते हैं कि उनमें से कुछ डेवलप करने की बात करते हैं। तो
0: जी
1: जो 5S है उसमें जो पहला शब्द है सियरी, जैसे हम त्योहार के पहले क्या करते हैं, सफाई करते हैं,
0: सफाई।
1: अनावश्यक सामान बाहर निकाल देते हैं,
0: जी
1: आवश्यक सामान को कायदे से रखते हैं, जो दूसरा स्टेप है, रोजमर्रा में क्या करते हैं, सफाई करते हैं।
0: जी
1: जापानीज ने कहा, यार ये जो करते हो इसमें पैसा लगता है, मैन पावर लगती है, समय लगता है,
0: जी
1: इक्विपमेंट लगता है, मसल पावर लगता है। अब भगवान ने ब्रेन दिया, यार ब्रेन का इस्तेमाल करके हम ऐसा क्यों ना ऐसा करें कि जो सामान बर्बाद हुआ बर्बाद ना हो या उसकी लाइफ बढ़ जाए,
0: जी
1: हमें सामान ढूंढने में दिक्कत ना हो, और जो गंदा है गंदा हुआ क्यों।
0: जी
1: तो हम यदि उनके रूट कॉज को मालूम कर ले तो रिजल्ट क्या होगा कि आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी, कम पैसा लगेगा, कम मैन पावर लगेगी, कम इक्विपमेंट लगेगा, सफाई ज्यादा होगी।
0: जी
1: तो वो ये कहते नहीं है कि सफाई करो 5S में, हम कहते हैं कि सफाई न करनी पड़े उसके बारे
0: जी
1: में
0: जी
1: सोचो। तो ये इसकी खास बात है, और इसी से सेफ्टी जुड़ी हुई है,
0: जी सर,
1: क्योंकि जितना सुरक्षित साफ सुथरा उतनी सुरक्षित जगह।
0: जी सर, वाकई में बहुत बढ़िया आपने बताया है। यानी 5S का मतलब सिर्फ सफाई करना नहीं है, बल्कि अपने काम की जगह को पहले से ही इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित रखना चाहिए कि गंदगी और अव्यवस्था पैदा ही ना हो। कहने का मतलब है सिर्फ सफाई करते ना रहें, बल्कि ऐसे व्यवस्था बनाएं कि सफाई करने की जरूरत ही ना पड़े। सर, 5S जो है ये अपना इंडिया से आया हुआ है।
1: पहले जो 1S 2S 3S, ये हमारा अपना कल्चर रहा है,
0: जी
1: हमें त्योहारों के पहले सफाई करते हैं,
0: जी
1: अनावश्यक चीजों को बाहर निकालते हैं, चीजों को कायदे से रखते हैं,
0: जी
1: ये दो स्टेप हो गए। डे टू डे में सब सब पूरी सामान नहीं निकालते, जनरल सफाई करते हैं,
0: जी
1: जो
0: जी
1: सफाई करते हैं तो काम का सामान मिला तो रख देते हैं, यानी वो दोनों मिलजुल करके है।
0: जी
1: तो 1S 2S 3S तो हम लोग कर रहे थे, हिंदुस्तान उसमें बहुत आगे था।
0: जी
1: जापानीज ने केवल इतना किया कि जो 1S 2S 3S न करना पड़े, या कम समय कम पैसे कम मेहनत, मुझे वो रास्ता
0: जी
1: निकालो, वो हो गया चौथा एस।
0: जी
1: और जब निकाल लिया तो अब उसको बराबर इस्तेमाल करो।
0: जी
1: आपने कहा खाना खाने के बाद जब छोड़ दिया, आपने तय किया नहीं खाना खाने के बाद हम इसको आगे यहां रखेंगे,
0: जी
1: हम खाना खाते समय इसके ऊपर एक केले का पत्ता लगाएंगे जिससे कि प्लेट गंदी नहीं हो, तो अब वो एक नियम बन गया। तो वो जो नियम बन गया फिर उस नियम का पालन करें, ये 5वां S है।
0: जी
1: तो ये दो चीजें जो है जापान ने जोड़ी, और आज पूरे विश्व में जो 5S है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा
0: जी तो यानी कि हमारा हिंदुस्तान पहले हार्डवर्क कर रहा था, पर
1: है, अभी
0: आके
1: स्मार्ट वर्क कर रहा है,
0: स्मार्ट वर्क ने स्टार्ट
1: बिल्कुल
0: किया।
1: सही कह रहे
0: जी बहुत अच्छी बात कही आपने
1: हैं।
0: सर। श्रीवास्तवा जी, काइज़न का अर्थ है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी निरंतर सुधार। लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि जब कोई सिस्टम ठीक चल रहा हो तो उसमें बदलाव क्यों किया जाए? ऐसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा?
1: बिल्कुल सही, आपने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है। दो
0: जी
1: ही विचारधारा है, एक है इनोवेशन, आपने कुछ नया बना दिया, दूसरा है काइजन, जब नया बनाया उसमें कैसे लगातार इम्प्रूवमेंट लाए,
0: जी
1: राइट। तो ये क्वालिटी सर्किल वगैरह जितना भी है उसके काइजन के पार्ट है। अब रह गई बात, दो तरह की चीजें हैं, एक तो ये है कि काम खराब हो गया है लाओ इसको ठीक कर दे, तो ये इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा।
0: जी
1: इम्प्रूवमेंट करना है तो हम आज जहां हैं उससे थोड़ा आगे कैसे बढ़े, थोड़ा
0: जी
1: आगे कैसे बढ़े, थोड़े हमारी जो बर्बादी रोकनी है, थोड़ा कम, थोड़ा थोड़ा। तो
0: जी
1: ये जो काइजन है ये कहता है कि बराबर जहां पर आप हैं उससे ऊपर उठने के लिए बराबर कुछ ना कुछ सोचिए। जब आप सोचने लग जाते हैं तो ये ब्रेन जो है हमारा डेवलप होता है
0: जी
1: और नई नई चीजें सोचते चले जाते हैं। आज जितने भी इक्विपमेंट्स आप देख रहे हैं अपने ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन में 20 साल के अंदर परिवर्तन देखे होंगे, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट लेकर

0: क्या है। तो इनोवेशन कुछ नया एकदम आ जाता है,
1: जी
0: जो इनोवेशन है उसमें इंप्रूवमेंट लाते चले जाते हैं।
1: जी
0: और इसीलिए बहुत जरूरी है हर एक को कि जो भी कर रहा है कंटिन्यूअस सोचे इसको और बढ़िया कैसे करें, और
1: जी
0: कम समय में कैसे करें, और कम पैसे में कैसे करें, और यही उनको आगे बढ़ाने में मदद
1: जी
0: करेगा।
1: बहुत सही सर। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि जो चल रहा है वो वैसे ही चलने दे, हमेशा उसमें कोई ना कोई
0: इम्प्रूवमेंट थोड़ी
1: सोच।
0: हुआ,
1: जी जी इम्प्रूवमेंट मतलब उससे जो भी चल रहा है उससे एक कदम
0: थोड़ा
1: आगे।
0: आगे बढ़े।
1: जी बहुत ही अच्छा कहा है श्रीवास्तव जी। आपने वर्ष 2010 में लीन क्वालिटी सर्कल की कॉन्सेप्ट डेवलप की। ट्रेडिशनली क्वालिटी सर्कल और लीन क्वालिटी सर्कल में बेसिक डिफरेंस क्या है?
0: क्वालिटी सर्कल में हमने कहा कि ये सेल्फ और म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए है, ह्यूमन बींग्स के डेवलपमेंट के लिए कहा गया है कि डेवलपमेंट करना उसके ब्रेन को डेवलप करो।
1: जी
0: ब्रेन कैसे डेवलप होगा, वो अपने प्रॉब्लम को लेकर के उसको सोचे और सॉल्व करे। तो क्वालिटी सर्कल में हफ्ते में एक दिन एक घंटे बैठाल करके हम उनको डिफरेंट टूल से टेक्निक पढ़ा रहे, जैसे कि बच्चे को शुरू में स्कूल जाते हैं वो बताते हैं, लेकिन जब बच्चा पढ़ करके तैयार हो जाता है तो फिर थोड़ी कहते हैं नहीं फिर तो वही करो।
1: जी जी
0: तो जितना तैयार हो जाता है, बच्चा इस लेवल पे आ गया कि आप उसे सामान मंगवा सकते हो,
1: जी
0: बच्चा इस लेवल पे आप उसको मार्केट भेज सकते हो, और कभी कभी बच्चा इस लेवल पे आ जाता है कि आपके मोबाइल के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है।
1: जी हाँ जी
0: तो यहां पर हमने देखा जो लोग क्वालिटी सर्किल में है वही लोग जितना सीख गए हैं उसके लेवल पर यदि उनको प्रोजेक्ट दिया जाए
1: जी
0: तो वो उस पर काम करेंगे। यहां हफ्ते में एक दिन एक घंटे मिलते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, आज आपको प्रोजेक्ट दिया गया, हो सकता है 3 घंटे बाद आपका सोल्यूशन निकल के आ जाए,
1: जी
0: आप दूसरे के साथ मिल करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं, आपका जो बॉस है उनको भी इसमें इन्वॉल्व रखते हैं।
1: जी
0: तो यहां पर क्या हुआ कि बॉस आप और जो आपको मदद करेगा तीनों लोग मिल जाते हैं, और सोल्यूशन जो है अभी पहला वाला जो था क्वालिटी सर्किल वो उनको डेवलप करने के लिए था, जैसे स्कूल में बच्चे को भेजते हैं डेवलप करने के लिए, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अब हम उसको प्रोजेक्ट दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए।
1: जी
0: वरना फिर क्या होगा, हम जो डेवलप करते रहेंगे कंपनी का ही हमको क्या फायदा मिल रहा है।
1: जी हाँ
0: तो
1: जी
0: यहां पर डेवलप भी कर रहे हैं, और जिस लेवल पर वो डेवलप हो गए हम उनको प्रोजेक्ट देकर के उसको सॉल्व भी कर रहे हैं।
1: जी
0: तो लीन क्वालिटी सर्कल जो है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप हो गया ग्रासरूट लेवल पर, जबकि क्वालिटी सर्किल प्रॉब्लम सॉल्विंग ग्रुप नहीं है, वो डेवलपमेंट के लिए है।
1: जी
0: राइट
1: समझ गया सर। बहुत बढ़िया सर। सर समय की सीमा को हम ध्यान में रखते हुए हमारे श्रोताओं के लिए आप दो मैसेजेस दीजिए। एक है कि हिंदुस्तान में ये कॉन्सेप्ट QCFI का कॉन्सेप्ट कैसे चल रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, और अगर कहीं पर नहीं चल रहा है, क्योंकि थियोरिटिकली ये पॉसिबल है, अगर नहीं चल रहा है तो कहां पर ये लैग कर रहा है?
0: देखिए, हमारा जो अपना अनुभव है कि नीचे के लेवल से कहीं कभी दिक्कत नहीं आती है। एक तो क्या है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत रिटायरमेंट के बाद बहुत सारी फैकल्टी हो जाती है, अधूरी नॉलेज में पढ़ाती है, उसके कारण कई बार फेलियर होता है। टॉप मैनेजमेंट जब चेंज होता जाता है, चाहे गवर्नमेंट चेंज हो या टॉप मैनेजमेंट चेंज हो, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और यहां पर लोग इसमें लगातार उनको शामिल कर रहे हैं, लगे हुए हैं, वहां ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इनिशियल स्टेज में लोगों को ये सही ढंग से ये मालूम पड़ जाए कि क्वालिटी सर्किल, 5S, काइजन, TPM, TQM ये सब वो मूल मंत्र हैं जो संस्थान को कम एफर्ट से ज्यादा कुछ देने को कर रहे हैं। और इसीलिए आज हमने पूरी इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग, यूनिवर्सिटीज के लिए वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, सर्विस सेक्टर के वर्ल्ड क्लास सेक्टर करके ऐसा कॉन्सेप्ट किया है जो डिफरेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई करके उनको गाइड कर सके और उनको फायदा दे सके। तो सही लोग या लोगों को मिल जाएंगे तो इंडस्ट्री वाले पीछे नहीं हटेंगे, और वरना वो इतने परेशान हो जाते हैं कि इतने सारे कॉन्सेप्ट हो गए, वो कंफ्यूज हो जाते हैं करे तो क्या करें। और इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके हमने WCM वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग डेवलप किया है, जिसको कि जूस यूनियन ऑफ जापानीज साइंटिस्ट इंजीनियर जो डेमिंग अवार्ड देता है उसने रिकॉग्नाइज किया है उसको सर्टिफिकेट देने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंडस्ट्री इस चीज को अपनाएगी जिसमें कि डिफरेंट क्वालिटी कॉन्सेप्ट्स को इंटीग्रेट किया है और 98% प्रॉब्लम उनसे सॉल्व होने वाली है।
1: और हिंदुस्तानी इंडस्ट्री,
0: हिंदुस्तान की इंडस्ट्री बेशक जो अभी बढ़ रही है आगे और बढ़ेगी, इसमें कोई रोक नहीं सकता उनको, बस केवल क्या है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज MSMEs इनको भी हम, इसलिए हमने मिशन 1 लाख MSMEs दिया हुआ है, क्योंकि उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, उनको ये जो है तो बड़ी बड़ी फीस होती है, पढ़ा नहीं सकते, हम उनको गाइड करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर सुधार आएगा तो इंडस्ट्रीज में काफी बड़ा सुधार आएगा, क्योंकि 6.4 करोड़ MSMEs है और इनको भी हमें ऊपर उठाना है।
1: जी सर बहुत बहुत

0: शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, ये थे डी के श्रीवास्तवा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया। श्रीवास्तवा जी, आज की इस बातचीत के माध्यम से आपने हमें क्वालिटी सर्कल, 5S, काइज़न और निरंतर सुधार जैसे कई महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया। आपकी बातों से एक बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि क्वालिटी सिर्फ किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सोच है, एक ऐसी सोच जिसमें हम अपने काम को हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इस सुधार की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि एक छोटे से विचार और अपने काम के प्रति जिम्मेदारी से ही हो सकती है, चाहे बात किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की हो या हमारे रोजमर्रे की जिंदगी हो। अगर हम निरंतर सुधार की सोच को अपना ले तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। श्रीवास्तवा जी, हमारे श्रोताओं के साथ अपने अनुभव और इतनी उपयोगी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: और श्रोताओं, उम्मीद है कि आज इस बात से आपको भी अपने काम और अपनी जिम्मेदारी में छोटे छोटे सुधार करने की एक नई प्रेरणा मिली होगी। तब तक के लिए जयदीप को दीजिए अनुमति, सुनते रहिए आकाशवाणी हैदराबाद। नमस्कार।
2: वेलकम बैक दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्वालिटी प्रोडक्ट पर एक इंटरव्यू, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे जयदीप। दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 12 बजे की न्यूज का, तो आइए सुनते हैं 12 बजे की न्यूज।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
4: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
5: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
6: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
3: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।
2: वेलकम बैक माय डियर लिसनर्स। अभी आपने सुनी न्यूज, सारे देश विदेश की खबरों से आप रूबरू हुए। अब हम आते हैं अपनी ही पहले की कन्वर्सेशन पर। आज हमने जाना कि सपनों से सफलता का सफर कैसे पूरा किया जाता है, लेकिन कभी सफलता बहुत आसानी से नहीं मिलती।

ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि ड्रीम का रास्ता स्मूथ नहीं होता। जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं। हर ड्रीम के पीछे मेहनत बहुत होती है। यदि हम स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो स्टूडेंट लाइफ के अलग ड्रीम होते हैं और उनके ऊपर भी प्रेशर भी बहुत होता है। आज हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट प्रेशर की, क्योंकि सबकी लाइफ में प्रेशर है। लेकिन जब स्टूडेंट रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि जब आप बड़े हो गए हैं तभी आपको प्रेशर है। एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, उसके साथ स्कूल में क्या बीत रहा है, 6 घंटे वो आपसे दूर है। और यदि उनके प्रेशर की बात करें तो कई बार वो आपसे बोल भी नहीं पाते हैं। तो बस सपने उनको भी बहुत हैं, लेकिन उनके सपने में कभी एग्ज़ाम आ जाते हैं, कभी रिजल्ट, और ये रिजल्ट एग्ज़ाम, कभी एंट्रेंस टेस्ट, और करियर डिसीज़न भी बहुत बड़ा डिसीज़न है लाइफ का, क्योंकि वो पूरा आपका लाइफ ही चेंज कर देता है। तो कभी ऐसा लगता है कि चारों तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है। स्टूडेंट को लगने लगता है कि हाँ, मतलब पूरे समय वो प्रेशर को झेलते झेलते, और वो यही सोचता है कि तुम्हें इससे बेहतर करना चाहिए था, क्योंकि कभी कभी तो फेलियर का सामना भी करते हैं ना। तो ये प्रेशर में बस यही लगता है उनको कि अरे, मुझे तो और बेहतर करना था, बेहतर करना था। और उस बेहतर करने के उसमें कहीं वो समझ भी नहीं पाता है किससे बोलूँ मैं। ये प्रेशर झेलना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। स्टूडेंट लाइफ बाहर से बहुत कलरफुल दिखती है, लगता है कि बच्चे जाते हैं, उठते हैं, 8 घंटे मस्ती करके पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन हर स्टूडेंट की अपनी चैलेंज होती है, और उस चैलेंज को फेस करना उनके लेवल तक कई बार कठिन भी हो जाता है। यदि मैं आज बात करूं आपको, एक कहानी के माध्यम से एक छोटी सी स्टूडेंट की लाइफस्टाइल बताना चाहूंगी कि वो प्रेशर झेलता है क्या, मतलब साथ में परेशानियों को झेल रहा है। तो आज एक लड़का था, रोहन, उसके बारे में बात करते हैं। 10th क्लास का लड़का था, और 10th के बाद उसको, आप भी जानते हैं, 10th इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ आर लाइफ, बिकॉज 10th के बाद आप जब कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो कई बार वो स्ट्रीम के थ्रू आप अपना करियर चूज करते हैं। तो 10th उसने पूरा किया, जैसे तैसे उसने अपने मन का सब्जेक्ट भी लिया, फिर वो कॉलेज जाना शुरू किया। लेकिन स्कूल इज़ डिफरेंट एंड कॉलेज इज़ डिफरेंट दोस्तों। स्कूल में टीचर्स रहते हैं, पूरे समय केयर करते हैं। एक बच्चे के साथ जब एक टीचर रहता है तो वो पेरेंट्स वाला फील उनको कहीं ना कहीं आता है। तो जब वो कॉलेज शुरू हुआ और सब कैंपस देखा, और बड़ा खुश हुआ और कहता, वाह, व्हाट अ कैंपस, न्यू फ्रेंड्स, न्यू लाइफ। एक्साइटमेंट तो इतना ज़्यादा था कि हाँ, उसे लग रहा था कि मज़ा आ जाएगा कॉलेज, मतलब स्कूल से निकल के बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन लेकिन कुछ ही दिनों बाद रियलिटी सामने आ जाती है दोस्तों। न्यू सब्जेक्ट्स, न्यू असाइनमेंट्स, न्यू टेक्स्ट, न्यू पीपल एंड न्यू एक्सपेक्टेशन। और फिर उसने सोशल मीडिया पर अपने पुराने क्लासमेट को भी देखा, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई कंपटीशन कर रहा है, मतलब पूरे समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। तो इसी उस चक्कर में वो परेशान हो रहा था कि मतलब कहीं ना कहीं सब सेटल हो गए हैं और अभी मैं कॉलेज में हूँ, कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी में जा रहा है और मैं यहाँ पर हूँ। तो एक प्रेशर उसके माइंड में था कि मैं मतलब सही कर रहा हूँ कि नहीं, जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है, जो स्ट्रीम लिया है, वो सही है कि नहीं। साथ में फिर किसी ने अपना इंस्टाग्राम मैसेज डाल लिया कि अरे, माय लाइफ इज़ सॉर्टेड। मतलब जो बच्चे रियली कई बार अपना थोड़ा सा भी कुछ अच्छा हो जाता है ना, तो शो ऑफ करके कभी कभी दूसरे बच्चों को डिमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो रोहन सोचने लगा कि क्या मैं पीछे तो नहीं रह गया। हाँ जी दोस्तों, कई बार ये कंडीशन बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रेशर क्रिएट करती है माइंड में। यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है, और कंपैरिजन अक्सर हमारी ओन प्रोग्रेस दिखाई देना बंद कर देती है इस कंपैरिजन में। तो दोस्तों, यही कहना चाहूँगी, लाइफ स्टूडेंट की तो बात थी ये कि अभी उसको बहुत पढ़ना है, कॉलेज है, फिर उसके बाद अपना कॉलेज के साथ अपना करियर में कहाँ वो मतलब सेटल होने वाला, यही लाइफ का है। लाइफ के साथ भी यही है कि हम बहुत चीज़ें फेस करते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अपना मन मन हमें लगाना है सिर्फ एक ही जगह, और मन को स्थिर भी रख के करना है कोई काम, कभी भटकना नहीं है। यदि भटक गए तो पता नहीं किस हवा में किस ओर चले जाओगे।
तो कई बार दोस्तों का कहना भी रहता है कि पता नहीं कहाँ से आया था।

लड़का और कहाँ चला गया। कई बार वो दुखी होके कहीं गलत रास्ता पकड़ लेता है और कहीं और चला जाता है, तो वो बहती हवा में अपने साथ मुड़ जाता है। और इस बहती हवा में आपके साथ, एक हवा के साथ ही एक गाना लेके आई हूँ, जो उस बहती हवा का आप भी आनंद लीजिए। और उस बच्चे को भी बोलिए कि बहती हवा में जाना है लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में, डिप्रेस होके कहीं और नहीं जाना है। बहुत से लोग मिलेंगे आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, नो वरीज, उस सक्सेस में आपको अपनी सक्सेस भी बना के रखना है और अपनी खुशी की बहती हुई हवा में आगे चलना है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं इस बहती सी हवा में बढ़ते हुए आगे बहता सा सॉन्ग।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना एक मधुर गीत, और आइए अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। मैं फिर मिलूंगी आपसे आपके ही इस कार्यक्रम में, आपके इस शो में। नमस्ते, हेलो, आदाब। में
1: ईरानी चाय,
2: बन मस्का,
1: हैदराबादी बिरयानी,
2: टंग दी कबाब,
1: कुर्बानी का मीठा,
2: शहदूद मलाई,
1: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
2: and every dish has a story waiting to be told.
1: Exactly. That's why Jashne Hyderabad is your afternoon treat.
2: From 2 to 3 p.m. every day on FM Rainbow 101.9.
1: It's not just food.
2: It's culture, history and flavor rolled into one.
1: Jashne Hyderabad.

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे रोहन की कहानी, और कहानी में आपके उसके कहानी में आपने उसके प्रेशर को, उसकी कंडीशन को समझा। इस कंडीशन पे और भी बात होगी, क्योंकि आज का दिन जो कि है 10 सितंबर कुछ इस प्रेशर से ही रिलेटेड है, और इस प्रेशर के क्या रिजल्ट हो सकते हैं वो सब आज हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत आपके लिए।
1: ईरानी चाय।

0: वेलकम बैक माई डियर लिसनर्स. हम बात कर रहे थे अभी रोहन की स्ट्रेस की, उसके प्रेशर की. इसी बात को मैं आपको बढ़ाना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि कभी कभी सच में हमारा मन भी ऐसा ही होता है ना. ये तो स्टूडेंट की बात हुई. यदि हम हर किसी की बात करें अपनी लाइफ में, कभी हम खुश हैं, कभी कन्फ्यूज़ हैं, कभी एक्साइटेड हैं, तो कभी बिना किसी क्लियर रीज़न के परेशान हैं. और स्टूडेंट लाइफ में तो इमोशंस भी बदलते रहते हैं. हाँ, क्योंकि जब ये एडल्ट वाली कंडीशन आती है, बच्चा जब 15 से 18 या 15 से 19 की स्टेज में होता है, तो उसके इमोशंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आते हैं. कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छा लगता है, और कभी अच्छी बात भी बिना मतलब के बुरी लगने लगती है. वो खुद नहीं समझ पाता है मैं क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा हूँ. जी हाँ दोस्तों, स्टूडेंट लाइफ में प्रेशर को संभालना थोड़ा सा कठिन होता है जनरल लाइफ के अलावा. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट लाइफ ये स्टार्टिंग होती है प्रेशर की, और जब ये स्टूडेंट लाइफ निकल के हम आगे बढ़ जाते हैं तो उस प्रेशर को झेलने की समझ आ जाती है. इसलिए एक बात याद रखिए कि हर बुरे दिन का मतलब बुरी लाइफ नहीं होती, और एक खराब टेस्ट और एक डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एक रिजेक्शन, एक आर्ग्यूमेंट, इनमें से कोई भी आपकी पूरी आइडेंटिटी को मतलब मिटा नहीं सकता है. आप यदि खुद बहुत दृढ़ हैं अपनी चीज़ों पर और हर नेगेटिव कंडीशन को बड़े पोलाइटली हैंडल कर लेते हैं, स्ट्रांगली हैंडल कर लेते हैं. कभी कभी पोलाइटनेस और कभी कभी स्ट्रांग होना दोनों ज़रूरी है. आप सोचें हर जगह हम रिजिड हो जाएं, ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि प्रेशर झेलना बहुत बड़ी बात होती है. और प्रेशर हर प्रकार का होता है स्टूडेंट लाइफ में. स्टूडेंट लाइफ का प्रेशर होता है, अपनी जो लाइफ आगे बढ़ चुकी है उसमें भी बहुत प्रेशर आते हैं. तो ये प्रेशर की बात तो हम आगे चलती रहेगी, लेकिन उस प्रेशर को झेलने की हमेशा अपने में ताकत बनाए रहना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि प्रेशर झेलना बहुत आसान नहीं है. प्रेशर झेलना यदि आपको आ गया तो आपकी लाइफ सनशाइन मतलब बिल्कुल चमक उठेगी, क्योंकि आप समझ चुके हैं ना कि प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, इजीली हैंडल करना है. क्योंकि प्रेशर आना तो बंद नहीं होगा, चाहे आप बूढ़े हो जाएं और लास्ट स्टेज पे भी पड़े हैं, तो कहीं बीमारियों का तो कहीं कुछ और प्रेशर रहेगा. तो लाइफ को यदि सनशाइन बनाना है तो प्रेशर तो झेलना पड़ेगा, और इन सनशाइन के साथ गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेज. तो ये सनशाइन के साथ ही आज हम आगे बढ़ते हैं अपने इस थ्री इडियट मूवी के सॉन्ग के साथ.
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो.

नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नमस्ते, हेलो, आदाब, आपके अपने शो में FM रेनबो 101.9 पर। हाँ जी दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें की। आज हमने बातें की सक्सेस की, सपनों की, सपनों के साथ स्टूडेंट लाइफ के प्रेशर की। अभी प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि प्रेशर तो आता ही रहेगा, सिर्फ स्टूडेंट लाइफ में नहीं, आगे भी आएगा। और इस प्रेशर का आगे क्या कारण, मतलब क्या कारण होगा और इसके आगे क्या रिजल्ट होंगे, ये तो प्रेशर झेलने वाला ही समझ सकता है। क्योंकि आज का जो हमारा दिन है, आज है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। हाँ जी दोस्तों, जिस प्रेशर को हम बात कर रहे हैं, इसका इस दिन से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। सुसाइड वर्ड, तो सुसाइड वर्ड इट्स नॉट लाइक कि अचानक कुछ आया और अपने आप हो गया। जी नहीं दोस्तों, सुसाइड प्रिवेंशन डे को भी याद कर रहे हैं, तो इस दिन का संदेश किसी डर की कहानी सुनाना नहीं है। इसका संदेश है लाइफ मैटर, पीपल मैटर, कन्वर्सेशन मैटर एंड आस्किंग फॉर हेल्प मैटर्स। तो मैं यही बात कर रही हूँ आपसे कि प्रेशर, लाइफ, पीपल, कन्वर्सेशन एंड दूसरों का कुछ बोलना अपने लिए, वो सब आपको डील करना आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी एक व्यक्ति बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है। इसलिए पूछिए, सुनिए, जज मत कीजिए। ज़रूरत हो तो हेल्प तक पहुंचने में साथ दीजिए। क्योंकि प्रेशर कई बार दिमाग में होता है और कुछ लोग उस प्रेशर को सिर्फ दिमाग में रख लेते हैं और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखते हैं। जब ये प्रेशर दिमाग में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको हैंडल करना बहुत कठिन हो जाता है दोस्तों, तब ये ऐसे स्टेप हो जाते हैं लाइफ में जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। हाँ जी दोस्तों, मैं वही रोहन की बात, जो रोहन की कहानी सुनाई। कॉलेज अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके फ्रेंड्स उससे आगे निकल गए, उससे ज़्यादा बहुत कुछ उन्होंने अपनी लाइफ में अचीव किया। लेकिन लेकिन आगे क्या हुआ, क्या उसने झेला अपनी लाइफ में, यदि जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। और उसके मन की बातों को यदि जानना चाहते हैं, उसने क्या क्या प्रेशर झेला है, तो थोड़ा सा तो आपको रुकना पड़ेगा। क्योंकि रुक सब कुछ एक साथ सब कुछ नहीं मिलता, नथिंग एवरीथिंग एट वंस, ओके, बट समटाइम्स इट हैपन। सो जुड़े रहिए आपकी अपनी आरजे सुरभि के साथ। लेकिन लेकिन लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अभी मुझे अशोक जी ने एक शायरी भेजी है, पढ़ते हैं उनकी एक शायरी। आंखें खराब हो गईं औलाद पालकर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। जीते जी अपने बाप का चश्मा ना लगा सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति अपने साथ होता है तो हम उसको याद नहीं उतना करते हैं, ना उसको उतना इम्पोर्टेंस देते हैं। आप बिल्कुल सही अशोक जी, आपने शायरी के माध्यम से बहुत गहरी बात बोल दी। तो ये सब शायरी का और हमारे श्रोताओं का सिलसिला, उनके मैसेज पढ़ने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पहले आइए सुनते हैं एक सॉन्ग जो आपको थोड़ा सा चेंज फील कराएगा। आइए सुनते हैं लिंका का एवरीथिंग एट वंस।

0: కళలు, సాహిత్యం, శాస్త్ర విజ్ఞానం, ప్రజాసేవ, క్రీడలు, ఇలా ఏ రంగంలోనైనా అపూర్వ అసాధారణమైన సేవలందించిన ప్రతిభామూర్తులకు భరతమాత అందించే అత్యున్నత పురస్కారం భారతరత్న. ఈ అద్వితీయ గౌరవం అందుకున్న మహనీయుల జీవన రేఖలని, ఆయా రంగాలలో వారు అందించిన విశిష్ట సేవలని వివరిస్తూ ఆకాశవాణి వివిధ భారతి ఎఫ్ఎం 102.8 మెగాహెడ్స్పై ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 10 గంటలకు శ్రోతల కోసం సమర్పిస్తున్న ప్రత్యేక ధారావాహిక భారతరత్న.
1: Welcome back, my dear listener. You are listening FM Rainbow 101.9 with your RJ Surbhi. हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोहन की, और रोहन के बारे में मैंने बताया कि कॉलेज था, बहुत अच्छा कॉलेज मिल गया था, लेकिन स्टूडेंट भी उतने ही इंटेलिजेंट थे, और उनके साथ कोऑपरेट करना, साथ में वो जो कॉम्पिटिशन चल रहा था उसके दोस्तों का, उसके आगे से निकलना, कहीं ना कहीं कुछ डिप्रेशन उसके मन में आने लगा दोस्तों, पढ़ाई में मन लगना ही छूट गया, कुछ और सोचना, अपने आप को डीमोटिवेट करना सीख गया वो, कि अरे सभी आगे निकल गए और मैं आगे नहीं निकल पाया. ये मतलब उसके लिए इतना उसको असर किया कि शायद उसकी पूरी लाइफ ने उसको पूरा डिस्ट्रॉय ही कर दिया हो, ऐसा लग रहा था उसके लिए. लेकिन दोस्तों, ये तो स्टार्टिंग थी. अभी वो कहने के लिए तो ठीक है, कॉलेज में है, लेकिन अभी उसका मन तो बच्चा ही था. स्कूल से निकल के कॉलेज में आने से कोई बड़ा नहीं हो जाता. साथ में उसको मार्क्स का प्रेशर, पेरेंट्स ने जो फीस भरी थी कॉलेज के लिए उसका प्रेशर, और साथ में पूरा मतलब इन्वायरमेंट उसके लिए ऐसा हो गया था कि उसको डील करना बहुत कठिन हो गया था. जी दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी का रास्ता पूरी तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन आपको पूरा हाईवे देखने की ज़रूरत नहीं है. कभी कभी सिर्फ अगला स्टेप दिखाई देना काफ़ी है. आज का काम आज, आज की पढ़ाई आज, और आज की बातचीत आज, और अगर आज मुश्किल है तो आज हेल्प मांगना भी बिल्कुल ओके है. हम क्यों झिझकते हैं किसी से हेल्प मांगने के लिए? हम क्यों सोचते हैं कि अरे उससे यदि हेल्प मांग लिया, उसी से कुछ डाउट पूछ लिया, या टीचर से सभी बच्चों के सामने मतलब मैंने डाउट पूछ लिया, दैट मीन्स अरे मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरी इंसल्ट हो जाएगी. साथ में ही कॉलेज में है, या फिर आप अपने वर्क प्लेस में हैं, ठीक है आपके कलीग आपके साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपको डाउट है, आप बात कीजिए, आपको परेशानी है, अपने बॉस से बात कीजिए. लेकिन इस तरीके का प्रेशर हैंडल करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसके कुछ भी परिणाम हो सकते हैं. हाँ जी दोस्तों, मैं रोहन की बात कर रही थी. रोहन के पेरेंट्स भी थोड़ा सा उससे पूछते रहते थे, बेटा कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे मार्क्स आ रहे हैं. और एक बार जब पेरेंट्स से

कभी कभी मार्क्स के अलावा उनको, मतलब ये बच्चों का एक्सपेक्टेशन होती है कि वो मार्क्स के अलावा भी कुछ बातचीत करें। ऐसा नहीं है, सारे पेरेंट्स एक से नहीं होते हैं। तो ये पेरेंट्स का क्या ओपिनियन रहता है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इफ़ेक्ट करता है। तो बच्चों को सिर्फ मेरे, मतलब पेरेंट्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को सिर्फ मार्क्स का प्रेशर मत दीजिए, उससे पूछिए आज का दिन कैसा था, कुछ परेशान कर रहा है क्या, या किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों से भी पेरेंट्स को सिर्फ पढ़ाई नहीं पूछना है, मार्क्स नहीं पूछना है। बेटा आज कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रेशर तो नहीं है, सब आगे बढ़ रहा, कोई बात नहीं बेटा, हम है ना, आगे बढ़ाने वाले भी हम हैं, और नहीं भी बढ़ा पाए तो हम साथ में साथ चल के आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से बच्चों का मन कहीं ना कहीं एंगेज रखना चाहिए, उनसे बात करते रहना, तभी उनका मन लगेगा। यदि उनका मन नहीं लगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मनवा लगता रहना चाहिए बच्चों का, किसके साथ, कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, कुछ पॉजिटिविटी के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, कुछ और एक्टिविटीज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा और हमारा और आपका मन भी मिलता रहेगा। अभी फ़िलहाल तो हमें रोहन का मनवा कहीं लगवाना है, चलिए आइए लगवाते हैं रोहन का मनवा, इस मनवा लागे गाने से जो कि श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने गाया है। तो सुनते हैं एक ब्यूटीफुल ट्रैक जो आपके मन को कहीं और ले जाने वाला है।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

वेलकम बैक माय डियर लिसनर, यू आर लिसनिंग एफएम रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि। और आज आपने सुरभि के साथ की बहुत सारी बातें ना, क्या क्या बातें थी दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि आज हमने सपने देखे, सपनों को सफल किया, वो भी किसके साथ, कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ। वो इंग्रेडिएंट्स थे हमारे, कौन कौन से थे बताइए, आप मुझको मैसेज कर सकते हैं। यदि सच में आपने मेरा प्रोग्राम सुना है तो आप एक बार मुझे मैसेज करके बताइए कि सफलता के क्या इंग्रेडिएंट्स थे। यदि आप सफलता के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिर मुझे लगेगा कि हाँ, किसी ने तो मेरा प्रोग्राम सच में दिल से सुना है और उसको सुनने के बाद हो सकता है कुछ सीखा भी हो। ठीक है ना दोस्तों, हम बात कर रहे थे रोहन की, जो थोड़ा सा स्कूल के बाद कॉलेज में आया, कॉलेज के बाद नया एटमॉस्फियर, नए लोग, नया प्रेशर। लेकिन लेकिन लेकिन हुआ क्या मालूम, प्रेशर तो जैसे तैसे उसने अपनी बात अपने पेरेंट्स से रखी, और पेरेंट्स से रखने के बाद उसको समझ आ गया कि हमको कैसे डील करना है। पेरेंट्स ने उसने समझाया उसके पेरेंट्स ने, और उसने उन बातों को बड़े ध्यान से सुना, और पेरेंट्स ने बोला सब आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे बेटा, लेकिन हर कोई हर किसी के तरह नहीं होता। मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, तुम्हारे पापा अलग हैं, सबकी अपनी कैपेबिलिटी है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपका जो क्लासमेट IITian बन गया है, डॉक्टर बन गया है, तो आप भी वही बनेंगे, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि यदि सचिन तेंदुलकर से बोल दिया जाए कि भाई तुम साइंटिस्ट बन जाओ या एक सिंगर बन जाओ, तो ऐसा हो सकता था क्या? पता नहीं, हो सकता था कि नहीं, लेकिन मुझे ये तो पता है सचिन तेंदुलकर जी अपने फील्ड में मास्टर हैं, और उसी चीज़ पर फोकस किया जिसमें वो मास्टर थे। तो बस उनका पेरेंट्स का भी यही कहना था, रोहन ने अपनी राह बदल दी, और जो उसका सुसाइड का जो उसके थोड़ा सा बीच में थॉट आया था ना, वो थॉट भी उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो बस दोस्तों मेरा यही कहना है आप लोग से कि वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है आज, और इसको प्रिवेंशन करने के लिए, इसको रोकने के लिए आप कैसे अपने दोस्तों की, अपने आसपास के लोगों की मतलब मदद कर सकते हैं, और इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद आप उन्हें बचा सकते हैं। तो मेरा उनसे भी मतलब रिक्वेस्ट है कि आप ना कुछ भी प्रॉब्लम है उसको एक बार एक्सप्रेस कीजिए, एक्सप्रेस करेंगे तभी ही कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। उस एक्सप्रेस करने के लिए आइए सुनते हैं एस्प्रेसो सॉन्ग आपके लिए।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंग दी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्ने हैदराबाद।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back, my dear listener. You are listening FM Rainbow 101.9 with your RJ Surbhi. हाँ दोस्तों, मुझे इंतज़ार था आपके मैसेजेस का कि आपने मेरे लिए मेरी बातों को कितने ध्यान से सुना. तो मेरे साथ मुझे सुनने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं अपने प्यारे लिसनर्स को कहना चाहती हूँ. और अब आपसे जुड़ने का थोड़ा सा और आपसे मतलब नज़दीक आने का एक और मुझे अवसर प्राप्त हुआ है. वो भी कैसे कैसे कैसे पता है ना, इस शो में कैसे अपन एक दूसरे से जुड़ सकते हैं. जी सर, जी मैडम, हेलो रेनबो के जरिए. तो अब ये टाइम है हेलो रेनबो का. और हेलो रेनबो के लिए आप लोग एक्साइटेड हैं ना कि आज मैं क्या पूछने वाली हूँ. दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने इतनी सारी बातें की, ड्रीम की, सक्सेस की, और अपने ये वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की, और इसको हमें कैसे डील करना है प्रेशर को, ये सब बातें आपसे की मैंने. दोस्तों, तो मेरा प्रश्न आपसे सिर्फ यही है कि आपकी लाइफ में कब आपको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उस समय आपको किसने संभाला और आप अपने आप को कैसे संभाल पाए. क्यों ये प्रश्न इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है जब आप अपने विचार आकाशवाणी के माध्यम से साझा करेंगे तो कोई भी जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेल रहा है और आकाशवाणी को सुन रहा है, शायद उसको थोड़ा सा सुकून मिल सके. तो दोस्तों, आप अपने विचार, इस प्रश्न का उत्तर हमें दे सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर 0402323 0030, और एक और नंबर है मेरे पास 0402324821, और एक और नंबर जिसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वो है 0402970475. तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, इस शो में.

हेलो रेनबो, मैं आइए अपने विचार मेरे साथ साझा कीजिए। जब तक मैं आपका बड़े धूम धड़ाके से स्वागत करती हूँ, लगना भी तो चाहिए कि आज आप सुरभि से बात कर रहे हैं और अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए, नंबर मैंने आपको बताए हैं, लेकिन पहले मेरा स्वैग से स्वागत देखिए कैसे होता है।

day.

0: हेलो रेनबो का टाइम हो गया है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे पहले कॉलर। आइए बात करते हैं। हेलो रेनबो।
1: हेलो रेनबो, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रमैया जी, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा है। मैं तेरा नाम बोल, माँ नाम बोले सुनने में। हाँ
0: मैं सुरभि सुरभि बोल रही हूँ सर।
1: अच्छा माँ, अच्छा, ठीक
0: सर आपने
1: है।
0: प्रश्न सुना मेरा।
1: आयुष्मान भवा। हाँ आय माँ,
0: जी जी थैंक यू सर,
1: माँ
0: थैंक यू
1: मेरा मेरा मेरा भाई से
0: जी।
1: भाई से

0: मेरे से 13 इयर्स बड़ा,
1: जी जी
0: जरा अच्छा रहे, दो जने भी एक टाइम में खाना खाना, एक टाइम में बैठना, एक टाइम में सोब, ये मेरे छोड़ को खाने के नहीं
1: जी, साथ में ही उठना बैठना था, मतलब पूरे समय आपका।
0: हाँ,
1: जी जी
0: जो
1: जी
0: भी अपने से रहता है अब गुजर गया, अब साथ में नहीं, वो ऊपर गया।
1: जी जी सॉरी सर,
0: मुझे छोड़ को गया, क्या करना मम्मी।
1: जी सर,
0: उसे उसे बल्ला दुख होता है
1: नहीं ये तो
0: भाई।
1: बहुत दुख
0: अच्छा
1: की बात है सर, कोई साथ जो
0: भाई,
1: पूरे समय अपने साथ रहे और अचानक छोड़ के चला जाए।
0: भाई भाई अच्छा मुझे देखते रहे माँ।
1: तो सर आप उस दुख से कैसे निकले मुझे ये बताइए, जब आपको लगा कि मुझे बहुत प्रेशर हो रहा है और मेरा भाई चला गया, तो आप कैसे संभाला अपने आप को?
0: हाँ अजय माँ भाई, अरे भाई मेरे से भाई के वही तभी क्या तकलीफ आई, तभी उन्होंने मेरे संगत आया साथ में,
1: जी जी
0: मुझे देखता है माँ।
1: हाँ
0: अच्छा माँ
1: जी सर, वो तो है सर, जब साथ में हमारे एक से दो लोग हो जाते हैं तो दुख दर्द बांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और साथ में हमको
0: हाँ
1: सुकून भी मिल जाता है जब किसी के साथ हम अपना दुख बांट देते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। थैंक यू रमनैया जी, आपने अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया, थैंक यू थैंक यू।
0: अच्छा अच्छा माँ अच्छा
1: हेलो रेनबो, हेलो हेलो रेनबो, हो सकता है मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। कितनी अच्छी बात रमनैया जी ने अभी बताई कि मेरे साथ जो मेरे भाई थे वो पूरे समय मेरे साथ हुआ करते थे, और कुछ भी दुख बांटना है, कुछ भी कहना है तो उनके साथ शेयर कर लेते। तो मैं भी यही बोल रही हूँ दोस्तों, जो रोहन की कंडीशन थी और रोहन ने पेरेंट्स के साथ ही अपना दुख दर्द साझा करके अपने आप को आगे बढ़ाया। तो छोटी छोटी मुश्किलें आएंगी आपके जीवन में, लेकिन लेकिन लेकिन उनको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, जो भी जिसके साथ आपको लगता है उसके साथ शेयर कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, तभी आप हर प्रेशर झेल पाएंगे, क्योंकि एक के साथ किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ अभी हम फिर आगे बढ़ेंगे और अपने अगले कॉलर को लेंगे।
2: हिरानी चाय,
3: बन मस्का,
2: हैदराबादी बिरयानी,
3: टंगड़ी कबाब,
2: कुर्बानी का मीठा,
3: शहदूद मलाई,
2: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
3: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
2: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
3: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
2: इट्स नॉट जस्ट फूड,
3: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इन टू वन।
2: हैदराबाद।
1: हाँ जी दोस्तों, हमारा ये टाइम चल रहा है हेलो रेनबो का, और हमारे साथ बहुत से कॉलर जुड़ना चाहते हैं, इनको हम अपने साथ जोड़े रखेंगे। पहले पहले मैं आपको बता दूं, जो अभी नए अभी अभी जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं अपना प्रश्न बता देना चाहता हूँ कि हर किसी की लाइफ में, मेरा प्रश्न यही था कि हर किसी की लाइफ में जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो वो प्रेशर आपने कैसे हैंडल किया और उस प्रेशर से आप कैसे बाहर आए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि प्रेशर किसी की लाइफ में नहीं आया दोस्तों, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे करियर का टाइम हो, या ऑफिस वर्क हो, या फैमिली में रिलेशंस हो, रिलेटिव्स हो, प्रेशर कभी कभी बहुत बढ़ जाता है, लेकिन आप उसे अपने तरीके से कैसे हैंडल करते हैं वो ज़रूर अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। बाकी तो हमारे सपनों की ख्वाबों की बातें जो आज चल रही हैं सुबह से वो तो चलती रहेंगी, कुछ इस ख्वाब वाले गाने के ही साथ कि देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिला चला। तो आइए जुड़ते हैं एक नाइस ट्रैक के साथ।

0: हाँ मैडम जी,
1: हेलो हेलो रेनबो
0: हेलो, आवाज आ रही है मैडम?
1: जी सर, कैसे हैं आप?
0: हाँ अलहमदुल्ला, बिल्कुल ठीक हूँ।
1: जी सर, और बताइए सर, जब आपको प्रेशर आता है, बहुत आपको दिक्कतें आती हैं लाइफ में, तो आप उसको कैसे हैंडल करना मतलब हैंडल करते हैं, जिससे कि हमारे श्रोता भी उस प्रेशर को, कहीं हो सकता है आपके विचारों के साथ रिलेट करके, उसको अपना प्रेशर कम कर लें, प्लीज़ बताइए जी।
0: जी, मैं शेर खान बोल रहा हूँ, तलाबगढ़ अमलनगर से, और
1: जी जी
0: आपको
1: जी नमस्कार
0: प्यार
1: शेर
0: भरा
1: खान जी।
0: सलाम आदाब,
1: जी जी आदाब
0: और
1: सर,
0: सभी
1: आदाब
0: सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को भी मेरा प्यार भरा सलाम आदाब।
1: जी।
0: सबको अल्लाह हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, और कोई भी

0: प्रेशर किसी पे भी ना आने दे, बस यही दुआ करता हूँ।
1: जय, बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, क्योंकि आजकल बहुत बड़ी दिक्कत है प्रेशर झेल करना। गरीबी झेल सकते हैं, लेकिन प्रेशर यदि सिर पे चढ़ गया तो बहुत गलत परिणाम होते हैं सर। जी सर बताइए।
0: जी मैडम, जो प्रेशर है ना, ये जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही जिंदगी में मैं खुशी और गम दोनों लगे हुए हैं।
1: जी
0: और
1: जी
0: कभी कभी ऐसे हालात आ भी जाते हैं, जैसे मैं बार बार बताता हूँ कि मैं ब्लाइंड हूँ। मैं 3-4 साल की उम्र में आंखों में कैंसर हो गया, तो मेरी दोनों आंखें यानी
1: जी
0: लेंस निकाल ली गई। जी,
1: जी सर
0: तो उसके बाद फिर मेरी जिंदगी जो भी स्टार्ट हुई उसके बाद ही हुई। तो मेरे मम्मी पापा थे, भाई बहन थे, हमारा एक हंसता खेलता परिवार था, बगीचे की तरह हरा भरा।
1: जी सर
0: और
1: जी
0: मुझे मेरे पापा बहुत लाड़ करते थे, बहुत प्यार करते थे। तो कुछ दिन हुए, बड़े हुए, फिर मैं अपने मदरसे में जाके अपना हाफिज़े कुरान बनना चाह रहा था। लेकिन बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ
1: जी
0: कि
1: सर,
0: हमारे
1: शॉर्ट में
0: मम्मी
1: बताइए,
0: पापा से
1: क्योंकि हमारे
0: झगड़े
1: अगले
0: होने लगे।
1: श्रोता भी
0: हमारे
1: हमसे
0: मम्मी
1: जुड़ना
0: थोड़े गर्म
1: चाहते
0: दिमाग
1: हैं।
0: के थे,
1: जी जी
0: तो उनकी लड़ाई में मेरा फ्यूचर खराब हो गया, मैं हाफिज नहीं बन सका। फिर मेरे पापा मुझे बहुत चाहते थे, इतना सारे बच्चों से ज्यादा मेरा ही नाम लेते थे, कहते थे यही माइंडेड है, यही मुझसे मशवरे लेते थे कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए।
1: जी सर,
0: बड़े भाइयों को छोड़ के मुझसे मशवरे लेते थे।
1: फिर आप आगे कैसे
0: लेकिन ये
1: बढ़े?
0: पता नहीं बाद में किसकी नजर लग गई, फिर वो मम्मी ने छोड़ दिए हमको, फिर पापा लेके रहने लगे, फिर पापा ने दूसरी शादी कर लिए। फिर पापा का जहन बदल गया, माइंड बदल गया सेकंड फैमिली आने से। फिर
1: जी
0: मेरे को पापा ने भी छोड़ दिए और भाइयों ने भी छोड़ दिए, और मैं भटकने लगा इधर उधर अपने दोस्तों के घर पे, दोस्तों ने सहारा दिए मुझे।
1: मतलब आपको जब प्रेशर हुआ तब शेर खान
0: जी
1: जी
0: जी
1: आपको दोस्तों ने संभाला, वही मैं अपने
0: हाँ, दोस्तों
1: सभी
0: ने दिए,
1: श्रोताओं
0: लेकिन
1: से।
0: मुझे इतना प्रेशर था और मुझे आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी हो गया था,
1: जी जी
0: आंखें भी नहीं, और फिर आर्थराइटिस इतना बढ़ गया था कि मैं उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता था। बहुत बुखार भी रहता था और सारे अंग में बॉडी पेन होता था और सूजन आ जाती थी। तो ये मैं 15 साल तक झेलता रहा, और डॉक्टर ने भी कहा, बोले आप बच नहीं सकते, आपका पूरा लाइफ खराब हो गया। बोले तो मैं बोला ऐसा तो नहीं हो सकता, सबसे पहले मुझे अल्लाह ने बचाया। मैं मस्जिद में जाके बैठता था, जो मैंने बचपन में कुरान सीखा समझा, मैं वो पढ़ता था और दुआएं करता था,
1: जी सर, शेर
0: और
1: खान जी,
0: सबके
1: मैं
0: लिए
1: आपकी
0: आज भी
1: बात
0: दुआ यही
1: समझी।
0: करता रहता हूँ।
1: जी
0: फिर मेरी इन आदतों को देख के मेरे कई दोस्त थे जिनकी आदतें खराब थी, तो वो तक सुधर गए। उनके मम्मियों ने मेरे को अपना बेटा मान लिया, बोले बेटा तेरे सोबत में रह के हमारा बच्चे सुधर गए। बोले
1: जी जी
0: लेकिन
1: शेर
0: मेरे
1: खान जी,
0: फैमिली वालों ने कदर नहीं करे, लेकिन
1: हाँ
0: दोस्तों ने कदर करे। और कितने कुछ आउटलाइन से थे दोस्तों, वो सही लाइन पर आ गए, और
1: जी जी
0: मुझे उन दोस्तों ने भी सहारा दिया, और सबसे बड़ी मदद अल्लाह की।
1: जी शेर खान जी, कि मतलब आपके
0: आज भी
1: दोस्तों
0: प्रेशर में
1: ने
0: सेकंड
1: और
0: फैमिली में
1: आपके
0: रहता हूँ मेरे पापा के,
1: जी
0: तो मुझे आज
1: आपके
0: भी प्रेशर है। मैं खुद ही रोता हूँ, खुद ही अपने आप को संभालता हूँ, मुस्कुराता हूँ। मैं इन शॉर्ट में अपनी दास्तान बता रहा हूँ, नहीं तो इतनी बड़ी
1: हाँ, तो
0: दास्तान है और
1: मैं
0: इतनी
1: वही कहना
0: गंभीर है
1: चाहती हूँ
0: कि
1: शेर
0: मुझे
1: खान जी,
0: खुद
1: कि
0: को भी हैरान
1: आपने
0: होता हूँ, मैं खुद भी हैरान हो जाता हूँ इतनी तकलीफ के बाद भी।
1: जी, तो शेर खान जी ने अपनी दास्तां बताई और बता रहे हैं कि उनके दोस्तों ने और उनके दृढ़ निश्चय ने उनको संभाला। थैंक यू शेर खान जी आपके लिए, कि
0: सबके लिए भी
1: आपने
0: दुआ ही
1: अपने आप
0: करता
1: को
0: रहता
1: कैसे
0: हूँ।
1: संभाला। अब हमारे अगले श्रोता जुड़ रहे हैं शेर खान जी,
0: जी
1: आपसे
0: जी
1: मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगी
0: हाँ, और
1: कि
0: मेरे सॉन्ग की रिक्वेस्ट है आपसे, हम थे जिनके सहारे, ये सॉन्ग मिल जाए तो प्लीज
1: जी जी
0: हमें सुनिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद मैं आपका ही सॉन्ग बजाती हूँ, क्योंकि आपने अपने श्रोताओं को, हमारे श्रोताओं को ये बताया कि यदि आप इतनी मुश्किल में भी अपने दोस्तों, अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़े हैं, तो सबके लिए यही है कि वो भी अपने दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कतों को झेलने के लिए ताकत मिल ही जाती है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भी श्रोता हमारे साथ हैं, उसके पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम जुड़ेंगे अपने श्रोताओं से।
2: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫార్మ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫార్మ్, అభ్యంతరాలకు ఫార్మ్ 7, సవరణలకు ఫార్మ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా DLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయ వారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: హలో హలో
0: హలో
1: రెయిన్బో,
0: నమస్తే.
1: హలో.

0: मैडम,
1: हाँ नमस्ते सर, कौन बोल रहे हैं?
0: मैं सन सिटी से रविंदर बात कर रहा हूँ मैडम।
1: नमस्कार रविंद्र जी, कैसे हैं आप?
0: बस आपकी दुआ से मजे में मैडम भाई।
1: जी, सर बस मजे में रहिए, हमारी यही है आपसे कि हमेशा मजे में रहें और अपने आसपास के लोगों को भी मजे में रखें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सब लोग मजे में रहना मैडम।
1: जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है और यदि मजा अपनी लाइफ से निकल जाएगा तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी सर।
0: हाँ मैडम, बिल्कुल बिल्कुल
1: जी सर बताइए, आप अपना प्रेशर कैसे झेलते हैं?
0: मैडम, आजकल तो प्रेशर इतना हो गया, स्टूडेंट से लेकर बड़े लोगों तक हर एक फील्ड में प्रेशर हो गया। स्टूडेंट
1: जी सर, जी
0: को एग्जाम का प्रेशर हो गया, छोटे बच्चों को होमवर्क का प्रेशर हो गया,
1: जी
0: और पेरेंट्स को भी तो होमवर्क का था, नहीं तो रैंक कमाने का, नहीं तो एम्प्लॉयज को सैलरी ज्यादा कमाने का, हर एक फील्ड में प्रेशर हो गया मैडम।
1: बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि आदि आप में वही आप अपने शो में बताया कि स्टूडेंट लाइफ से लेके जहाँ तक भी आप जाएंगे ना, हर जगह प्रेशर
0: हाँ मैडम,
1: प्रेशर, क्योंकि उसको डील करना बहुत कठिन हो गया आजकल।
0: बहुत मुश्किल है मैडम। एक ही मेरा पास एक सोच है, म्यूजिक सुनना बहुत रिलीफ कर देता मैडम मेरा प्रेशर को तो।
1: जी, मतलब आपका प्रेशर सर आप अपने म्यूजिक सुन के दूर करते हैं, बहुत अच्छी बात
0: हाँ
1: बताई
0: मैडम,
1: सर।
0: अपने मतलब जो थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में से भी अपन कूल माइंड से काम करें तो भी वो प्रेशर को निकाल सकते हैं, दोस्तों से बांट सकते हैं, नहीं तो बड़ों का एडवाइस लेके उसको भी प्रेशर को कम कर ले सकते
1: जी
0: मैडम।
1: सर, थैंक यू सर आपका अपने विचार साझा करने के लिए,
0: मैडम
1: थैंक
0: मेरे
1: यू
0: को
1: थैंक यू।
0: गाना, एक गाना सुनना है मैडम,
1: जी सर आप बताइए, यदि अवेलेबल है तो डेफिनेटली हम उसको बजाते हैं। जी
0: फना
1: सर,
0: मूवी से जान सिफारिश मैडम प्ले करो मैडम। हाँ
1: कौन? फना, चांद सिफारिश। जी सर बिल्कुल
0: हाँ जान
1: बिल्कुल,
0: सिफारिश मैडम।
1: करते हैं सर आपका सॉन्ग। थैंक यू सर, थैंक यू अपने विचार
0: ओके मैडम,
1: साझा
0: ओके
1: करने
0: मैडम,
1: के
0: थैंक यू,
1: लिए।
0: बाय।
1: तो ये थे हमारे कॉलर और इन्होंने बताया कि अपना प्रेशर ये कैसे दूर करते हैं, गाने सुन के करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आकाशवाणी से यदि आप जुड़े रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, तो आपके 50% प्रेशर तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए है एक छोटा सा मैसेज, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे और हमारे नए कॉलर से।
2: हेलो लिसनर्स, आर यू समवन हु लव्स गेटिंग लॉस्ट इन द पेजेस ऑफ अ गुड बुक एंड विशेस अदर्स कुड एक्सपीरियंस द सेम जॉय दैट यू फाउंड बिटवीन दोज पेजेस? हैव यू एवर फाउंड योर सेल्फ रेकमेंडिंग अ बुक टू योर फ्रेंड्स जस्ट बिकॉज यू सिंपली फेल्ट दैट दिस इज अ मस्ट रीड? वॉट इफ वी टोल्ड यू दैट यू कुड नाउ शेयर दैट एक्सपीरियंस not just with one person but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
1: वेलकम बैक माई डियर लिसनर, यू आर लिसनिंग FM रेनबो 101.9 विथ योर आरजे सुरभि। अभी हम जुड़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर से। हेलो रेनबो,
3: गुड आफ्टरनून मैडम,
1: गुड आफ्टरनून सर, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं नरसिम्हा रेड्डी मैडम प्रेमावती पेड़ से बोल रहा हूँ।
1: जी सर, कैसे हैं आप?
3: एकदम बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसे हैं मैडम?
1: सर मैं भी बढ़िया हूँ, आप लोग से बात करके तो और भी खुश हो जाती हूँ।
3: ओके मैडम,
1: जी सर बताइए
3: तो मैं
1: सर, आप अपना प्रेशर कैसे डील करते हैं और
3: प्रेशर
1: अपनी?
3: मैडम, मेरा तो सुबह उठते मैडम मंदिर जाने का रहता है, वॉकिंग रहता है, इसमें मेरा प्रेशर बहुत कम होता मैडम,
1: जी,
3: मतलब उसके बाद में अपना काम शुरू करता। मेरा मेन क्या है बोल रहा हूँ मैडम, मैं तो ज्यादा वो उधर उधर के फालतू के नहीं सोचता मैडम, टेक इट इजी पॉलिसी।
1: जी बिल्कुल सही है सर, ऑल इज वेल एंड एवरीथिंग यू हैव टू टेक इजीली।
3: चुम्मर जो करने का करते रहो, कोशिश करने का करो,
1: जी
3: याद आ रहे वो क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, कहीं को फालतू के सोचना मैडम।
1: जी सर, जी सर बहुत बढ़िया सर, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे नेक्स्ट कॉल

0: इंतजार कर रहे हैं, सॉरी सर
1: और नो नो नो प्रॉब्लम, थैंक यू
0: जी।
1: मैडम।
0: थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब अभी आपने सुना कि नरसिम्हा रेड्डी जी अपना प्रेशर कम करते हैं मॉर्निंग वॉक से, नेचर से कनेक्ट होके, और हर चीज़ को इजीली डील कर सकते हैं जी, करते हैं। मतलब दोस्तों, परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो बहुत प्रेशर लेना नहीं है। मतलब प्रेशर लेना आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि प्रेशर आ रहा है तो सब लोग उसको लेके घूम रहे हैं, नॉट लाइक दैट। तो आपको करना क्या है, नेचर से कनेक्ट हुई है, हर चीज़ को इजी गोइंग रखिए, ठीक है ना? तो प्रेशर अपने आप ही कम हो जाएगा। तब तक आपके लिए गाना हमारे शेर खान जी ने रिक्वेस्ट की थी, उनकी रिक्वेस्ट के लिए एक गाना यहाँ पर है, हम थे जिनके सहारे, लता मंगेशकर की आवाज़ में।
2: ईरानी चाय।
0: बाय।

0: हेलो
1: हेलो हेलो रेनबो सर, कैसे हैं आप? हेलो हेलो,
0: मैडम, लाइन में हूँ मैं।
1: हाँ सर, आप लाइन पे हैं, कौन बोल

0: हैं सर? हेलो हेलो हेलो, लगता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है इसलिए हमारे कॉलर हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हेलो, जब तक मैं नेक्स्ट कॉलर को कनेक्ट करती हूँ। हेलो
1: गुड
0: हेलो,
1: आफ्टरनून मैडम।
0: गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं सर?
1: मेरा नाम है रेडियो शॉपिंग सरवर अली।
0: अरे सरवर अली जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है।
0: जी सर, बताइए
1: अब हम
0: सर।
1: तो जी है। अब हमारी कहानी तो ऐसी बड़ी डेंजर है मैडम। हम तो 1 ही साल के थे, हमारे माँ मर गए। हाँ
0: सर, शॉर्ट में, थोड़ा सा शॉर्ट में अपनी
1: शॉर्ट
0: कहानी
1: में भाई,
0: शेयर
1: कभी
0: करके,
1: इन शॉर्ट में
0: और कैसे
1: मैं
0: प्रेशर डील किया
1: टेंशन को
0: आपने?
1: अपने करीब आने नहीं देता। मस्त अपने रेडियो में मस्त रहता हूँ मैडम।
0: जी जी
1: दुनिया
0: जी
1: किधर भी
0: सर,
1: जाओ, अपनी जिंदगी में मस्त रहना, ये सीखा मैं। ये
0: जी सर, जी सर,
1: ऐसा है,
0: जी
1: अगर आप
0: सर,
1: टेंशन की बात कर रहे तो टेंशन पे भी गाना बोले तो मैं, अगर आप सुनाए तो। आगे है प्रॉब्लम, पीछे है प्रॉब्लम, आगे पीछे दाएं बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी बी हैप्पी।
0: जी सर, जी जी
1: ये मूवी का
0: बिल्कुल,
1: नाम है तूफान, अगर गाना सुनाए तो।
0: जी, मत सही है कि अपना
1: ऐसा
0: पूरा जीवन तो परेशानियों से भरा है, उसके लिए
1: हाँ
0: आप ये
1: मैडम, ये
0: नहीं।
1: देखो, हमें दुनिया को अपने जख्म दिखलाना नहीं आता। लोगों को अपने जख्म दिखलाने से क्या फायदा,
0: जी सर, तो
1: दुनिया
0: आप
1: के
0: दूर कैसे
1: हाथों
0: कर
1: में
0: लेते
1: नंबर ज्यादा
0: हैं
1: है।
0: सर, दूर कैसे कर लेते हैं उस प्रेशर को, इस परेशानी को आप?
1: मैं अपने गाने वाने सुन के अपने पुराने यादें ताजा कर लेके, अपने याद कर लेके अपने आप को
0: हाँ,
1: खुश रख लेता
0: मतलब
1: हूँ।
0: आप अपने
1: अगर
0: हैप्पी मोमेंट्स आप याद कर लेते हैं सर, गाना
1: जी
0: सुन
1: हाँ
0: लेते
1: मैडम,
0: हैं और
1: हाँ
0: आपका
1: गाने सुन
0: प्रेशर
1: लेता,
0: कम हो
1: अगर
0: जाता है। जी
1: जी
0: जी
1: हाँ अपने आंसू खुद पोंछना सीखना मैडम। अगर दूसरे आगे पोंछे तो सौदा करते, ये
0: जी
1: सीखा
0: जी
1: मैं।
0: जी जी
1: अगर
0: थैंक
1: अपने
0: यू सर,
1: आंसू कोई आगे पोंछे ना
0: जी
1: तो
0: जी
1: अपने से कुछ लेते, बगैर लिए नहीं पोंछते आंसू। तो अपने आंसू आंसू खुद पोंछना, और
0: जी
1: कितनी भी परेशानी तकलीफ क्यों ना हो,
0: जी सर,
1: जख्मों से भरा सीना रखना, हंसती हुई नजर रखना, बल्कि मेरी ऐसी सोच है।
0: जी सर, यदि आप हंसते
1: अपने
0: रहेंगे, खुश
1: बस
0: रहेंगे
1: बस
0: और गाना
1: हंसते रहना,
0: सुनते
1: मस्त
0: रहेंगे
1: रहना,
0: तो अपना प्रेशर,
1: बस
0: थैंक यू
1: गानों
0: सर,
1: में ही
0: थैंक
1: मस्त
0: यू।
1: रहना। गानों में जो म्यूजिक में जो मजा है वो कहीं और नहीं
0: जी
1: है।
0: जी सर, सर थैंक यू, आप
1: ऐसा है
0: हमारे
1: मेरी
0: साथ
1: लाइफ
0: जुड़े
1: का।
0: सर, हमारे
1: आपका
0: अगले
1: भी बहुत
0: कॉलर
1: बहुत
0: वेट
1: शुक्रिया
0: कर रहे
1: मैडम जो
0: हैं।
1: हमारा फोन उठाए। थैंक
0: थैंक यू सर, थैंक यू।
1: यू।
0: तो देखा दोस्तों, कैसे लोग अपना प्रेशर कम करते हैं, और मुझे भी लगता है गाना सुनना, मतलब गाना मीन्स आकाशवाणी सुनना। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने दुख दर्द बांटते रहिए, कहीं ना कहीं आपका प्रेशर तो कम हो जाएगा, क्योंकि हम लगाते हैं आपके मन के गाने। हमारे एक श्रोता हम जुड़े थे और जिन्होंने हमसे कहा था कि फना मूवी का चांद सिफारिश जो करता, हमारी सॉन्ग जरूर लगाइएगा। आपके लिए आपका सॉन्ग यहाँ पर है सर, आप एंजॉय कीजिए अपना।

0: हेलो हेलो
1: हेलो।
0: रेनबो, हेलो हेलो हेलो।
1: हाँ बोलो मैडम।
0: हाँ सर, आप बोलिए, अपनी बात बोलना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, कैसे प्रेशर कम करते हैं आप?
1: अभी एयर आने रहे हुए अपन।
0: जी जी जी सर, आप ऑन एयर हैं जी, बताइए
1: हाँ ये
0: सर।
1: रमेश उस्मानगढ़।
0: जी
1: मैं
0: सर सर
1: कुछ भी मैं टेंशन लेता ही नहीं मैडम। मैं टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। अगर कोई भी ऐसा कभी टेंशन आया, कुछ भी आया, एक मेरे को एक बार एक टेंडर आने का था, नया आया, मैं डेज डीजी लिया। मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, जो दो, दो, दो एक और दो कस नहीं मिला, सेकंड टाइम मिल गया मेरे को। और क्या ऐसा टेंशन आया तो जो पुराने टेप रिकॉर्ड है उसके अंदर पूरे जोश का एक कैसेट है और एक पुराने गाने मोहम्मद रफी और मन्ना डे ऐसे गाने रहते हैं, और रख लेके मैं पूरा एंजॉय कर लेता।
0: जी
1: मैं
0: सर,
1: टेंशन
0: रमेश
1: लेता ही
0: जी,
1: नहीं।
0: आपकी बात मैं समझ गई कि आप गाने सुनते हैं और ज़्यादा बहुत टेंशन नहीं लेते हैं, फिक्र नहीं करते हैं, बेफिक्र होकर जीते हैं। और थैंक यू आपके अपने विचार साझा करने के लिए सर, क्योंकि हमारे साथ और भी कॉलर जुड़ना चाह रहे हैं। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। हाँ तो दोस्तों, देखिए अभी रमेश जी फिर जुड़े और उन्होंने कहा कि वो अपना प्रेशर कैसे डील करते हैं, फिक्र नहीं करते हैं, इजीली चीज़ों को जाने देते हैं। दोस्तों, इसी फिक्र को दूर करने के लिए, और फिक्र हमारे लाइफ में होने ही नहीं चाहिए, मतलब आता है कोई प्रॉब्लम तो फिक्र नहीं करना है, सॉल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ना है। तो जी हाँ दोस्तों, फिक्र नॉट वाला कॉन्सेप्ट आगे रखिए, अपने साथ रखिए, तो फिक्र अपने आप ही दूर हो जाएगी।

0: ईरानी चाय,
1: बन मस्का,
0: हैदराबादी बिरयानी,
1: टंगड़ी कबाब,
0: कुर्बानी का मीठा,
1: शहदूद मलाई।
0: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
1: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
0: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्न ए हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
1: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
0: इट्स नॉट जस्ट फूड,
1: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन।
0: जश्न ए हैदराबाद।
2: हाँ जी दोस्तों, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन जो कॉलर हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं वो भी हमको मैसेज करके कुछ भेज रहे हैं। जी हाँ, तो अश्विन जी फ्रॉम कोठी कुसाल मार्केट से इन्होंने मैसेज भेजा है कि जय कृष्णा सुरभि जी, जय कृष्णा सर, जय कृष्णा। और आपने कुछ मैसेज हमको लिख के भेजा है, यहाँ पर मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, सभी श्रोताओं के लिए, कि मर्यादा लांग कर चर्चित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, मज़ा तो तब है जब संस्कारों की सीमा में रहकर दिलों में जगह बनाई जाए। कुछ सहन करना भी सीखिए, क्योंकि हम मैं भी बहुत सी कमियां हैं जो दूसरे सहन करते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे। जी अश्विन जी, बहुत अच्छा मैसेज है कि हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, थोड़ी बहुत कमियां तो हर किसी में हैं, और सामने वाले की कमियों को सहन करिए और प्रेशर कम करके आगे बढ़ते जाइए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे अगले कॉलर, तो श्रोताओं देखते हैं कौन है हमारे अगले कॉलर। हेलो रेनबो।
3: हरिओम
2: हरिओम हरिओम, कौन बोल रहे हैं?
3: विलास पेलूरकर, नल्ला

0: प्रताप भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
1: नमस्कार ब्लास जी, कैसे हैं आप?
0: नमस्कार, मैं बहुत अच्छा हूँ।
1: जी सर, शॉर्ट में बताइए कि आप अपना प्रेशर कैसे कम करते हैं?
0: हाँ, प्रेशर यानी कि तनाव।
1: जी जी
0: असल
1: बिल्कुल
0: में तनाव मेरे पास में आने ही मैं नहीं देता हूँ,
1: जी, बहुत बढ़िया
0: क्योंकि
1: सर जी।
0: समस्याओं को अगर हम समस्याएं समझते हैं तो
1: जी
0: तनाव आएगा,
1: बिल्कुल
0: लेकिन
1: बिल्कुल
0: समस्याओं को अगर से हम समस्याएं नहीं समझेंगे, कोई समस्या आ जाए उसका निराकरण कैसे करना है इस पर हम विचार करते हैं तो तनाव
1: जी
0: आएगा ही नहीं। और
1: जी
0: दूसरी
1: बिल्कुल
0: बात है, मैं प्रतिदिन श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करता हूँ, जिसके
1: जी
0: कारण मेरे में आत्मविश्वास आ जाता है और मेरे में इतनी शक्ति आती है कि मैं कोई भी समस्या का हल निकालने में सफल हो जाता हूँ।
1: थैंक यू ब्लास जी, आपके विचार साझा करने के लिए। ये थे हमारे
0: धन्यवाद।
1: ब्लास जी, जिन्होंने हमें बताया कि प्रेशर कैसे कम करना है। आप कुछ भी चैंट कर सकते हैं, धर्म से जुड़ सकते हैं, और उसको ज़्यादा प्रेशर लेना ही नहीं है आपको। हर किसी को यदि प्रेशर आ भी रहा है तो प्रेशर ना समझे। थैंक यू। तो सर, श्रोताओं, आज हमारे बहुत से श्रोताओं हमसे जुड़े, श्रोताओं ने अपने विचार साझा किए, और एक और कॉलर है हमारे साथ। एक बार मैं ट्राई करती हूँ। हेलो
0: नमस्ते आरजे मैडम।
1: हेलो रेनबो,
0: नमस्ते आरजे मैडम।
1: नमस्ते नमस्ते सर, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, फसल है।
1: सर कौन बोल रहे हैं?
0: मैं हिंदुस्तानी दिल से हैदराबादी इकबाल बात कर रहा हूँ।
1: इकबाल जी बात कर रहे हैं सर। जी
0: जी
1: जी
0: अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह,
1: आदाब सर, कैसे हैं आप?
0: अल्लाह का
1: सर आप
0: करम है, फसल। जी
1: शॉर्ट में बताइए
0: क्या
1: कि अपना
0: सुना।
1: प्रेशर कैसे कम कर सकते हैं। दो लाइन में
0: जी
1: हमको आपका
0: हाँ,
1: आंसर चाहिए
0: ये
1: सर।
0: प्रेशर सहने की आदत बचपन में स्कूल से मिलती है। जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं, जब
1: जी
0: उसके आदि हो जाते हैं तो एक खिलौना बन जाता है प्रेशर,
1: जी जी जी
0: तो
1: नहीं,
0: उसको आदत
1: लेकिन कई बार
0: समझे।
1: लाइफ में प्रेशर बहुत ज़्यादा भी हो जाता है,
0: हाँ, बढ़ जाता है
1: उसको
0: तो
1: कैसे
0: उसको
1: डील करते हैं
0: हैंडल।
1: आप? एक लाइन में बताइए सर, क्योंकि
0: जी
1: टाइम,
0: हाँ,
1: घड़ियां,
0: उसको
1: हमारा
0: हैंडल
1: इंतजार।
0: करने,
1: जी
0: आदमी को अपने आप से जब बड़ा टेंशन रहता है तो चार से मशवरा करता हूँ और हमारे दोस्तों से लेता हूँ और फिर अल्लाह के हाल पे छोड़ देता हूँ। अल्लाह उसमें अपना बेहतरीन सोल्यूशन देते हैं मेरे को। मैं इतना टेंशन नहीं लेता हूँ जो अपनी जान पे बन जाए,
1: जी जी
0: पूरा
1: थैंक
0: रहता।
1: यू सर, आपने इतने अच्छे विचार अपने साथ साझा किए। तो श्रोताओं, बताया आपको कि अपने चार दोस्तों के साथ बैठ जाते हैं, तो दोस्तों के साथ तो मैंने पहले भी बताया था, जब आप अपनी बात किसी के साथ शेयर कर लेते हैं तो आपका प्रेशर अपने आप ही आधा हो जाता है, क्योंकि जब दिल भरा हुआ होता है किसी दुख से, किसी प्रेशर से, किसी परेशानी से, तो उसको हल्का सिर्फ अपनों को बताकर ही किया जाता है। दोस्तों, जैसे रोहन ने अपने पेरेंट्स को बता के किया था, और हमारे और भी दोस्त हैं जो अपने दोस्तों को बताकर अपना प्रेशर कम कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और कॉलर। एक बार मैं लेती हूँ, कौन है ये? हेलो हेलो,
0: हेलो, नमस्ते मैडम। कौन, क्या नाम है आपका?
1: नमस्ते मैडम, नमस्ते, मैं सुरभि बोल रही हूँ। मैडम आप कौन बोल रही हैं?
0: मैं मुमताज बात कर रही हूँ।
1: जी जी मुमताज जी, कैसे हैं आप?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ। एक मिनट मैडम। हाँ मैडम, अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बाहर आए तो इसलिए बिजी थोड़ी
1: जी
0: सी
1: सर,
0: हूँ।
1: सर जी मैडम, बताइए अपना प्रेशर कैसे कम कर
0: हाँ
1: सकते हैं? घड़ी की सुइयां काफी जल्दी बढ़ रही हैं, तो दो लाइन
0: हाँ
1: में, दो सेंटेंस में
0: हाँ
1: हमको
0: हाँ मैं बिल्कुल
1: बताइए
0: ठीक
1: हमारे श्रोताओं को।
0: हूँ। साथ में ही बोलती हूँ। मेरा टेंशन जो है, मेरा टेंशन तो मैं ऊपर वाले को याद करती, माला जपती,
1: जी
0: और
1: जी जी
0: मैं माला जप के मैं मेरा दिल हल्का कर लेती।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: किसी
1: जी
0: से ज्यादा उस वक्त में तन्हाई में आप कर रहे तन्हाई
1: जी जी जी थैंक यू,
0: में
1: धन्यवाद मुमताज
0: मेरा
1: जी, आपने अपने विचार
0: वक्त।
1: हमारे साथ साझा किए। तो ये थी मुमताज जी, जिन्होंने बताया कि ये अपना प्रेशर भगवान को याद करके माला जप के दूर कर लेती हैं। ठीक है, देखो प्रेशर कम करने के बहुत से उपाय हो सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हैं, मेडिटेशन से, भगवान को याद करके, या फिर नेचर से कनेक्ट होके। तो दोस्तों, हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, हमारे गाने सुनते रहिए, अपना प्रेशर कम करते रहिए। और मेरे जाने के पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन, पहले एक इन्फॉर्मेटिव आपको देना, इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे विदा लूँगी। पहले अभी मेरे पास एक गाना भी है बहुत अच्छा आपके लिए। एक मिनट दोस्तों।

0: FM Rainbow 101.9।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन।

0: స్టూడియో క్లాక్ లో సమయం 4 గంటల 3 నిమిషాలు అయింది. మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 రెయిన్బోతో జీవితం రంగులమయం. ఇప్పుడు వినండి సందేశ్ టు సోల్జర్స్.
1: యే దేశ్ యే లోగ్ వో ప్రాంత్ వో భాషా వో జౌహర్ వో జల్వా వో ప్రసిద్ధ అభినేత వో ప్రసిద్ధ ఖిలాడి వో ఉచ్చ స్తరీయ ఏక్ ఐసా మాహోల్ బనాతే హై कि बस दुनिया कहने पर विवश हो जाती है कि भारतवर्ष इस पृथ्वी का सबसे अच्छा देश है. हम जैसे भी हैं हम एक हैं, हम जैसे भी हैं इस मिट्टी के बच्चे हैं. इस मिट्टी से हमें इतना लगाव है, इतना प्यार है जो शायद ही हम किसी और से करते हों. इस फिजा में, इस सबा में वो खुशबू है जिसकी बदौलत हम शान से कहते हैं कि हम भारतीय हैं. और इसी आन बान और शान को दुरुस्त रखने के लिए सरहदों पर और इस भारतवर्ष के अंदर हमारी सेनाओं का प्रमुख रोल है. वो पैरा सर्विसेज हो, पैरा मिलिट्री फोर्सेज हो या आर्म्ड फोर्सेज हो, द पीपल इन यूनिफॉर्म प्रोटेक्ट आवर कंट्री. और आज हमारे साथ संदेश टू सोल्जर्स में ऐसे ही एक जाबाज अफसर मौजूद है हमारे साथ, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, जो आज हमसे एसएसबी की गाथा, उसके गुण और अपनी उस शौर्य की गाथा शेयर करेंगे. क्योंकि एसएसबी सशस्त्र सीमा बल एक ऐसी फोर्स है जिस पर दायित्व है भारत की सुरक्षा का. आइए मिलकर

0: स्वागत करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर का, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी गुड इवनिंग। मैं सैयद अफसर, असिस्टेंट कमांडेंट सशस्त्र सीमा बल। सबसे पहले मैं सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक महोदय तथा आकाशवाणी एफएम रेनबो का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित होकर अपने सेवा अनुभव और अपनी यात्रा साझा करने का अवसर प्रदान किया। मेरे लिए यह अवसर एक इंटरव्यू नहीं बल्कि देश के श्रोताओं से सीधा संवाद करने और अपने अनुभवों के माध्यम से युवाओं तथा देशवासियों तक कर्तव्य, साहस और राष्ट्र सेवा का संदेश पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस अवसर के लिए मैं आकाशवाणी एफएम रेनबो और पूरी टीम का बहुत बहुत आभारी हूं।
0: आपकी आवाज सुनकर मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में लोगों को बहुत ही उत्साह, एक गर्व महसूस किया गया होगा। आप पुलिस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं और दो खास ऑपरेशंस जिनकी हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आज इस प्रोग्राम में, और वो है पिथौरागढ़ और जमुई में जो दो ऑपरेशंस हुए, वो बड़े खास और इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस थे। मैं चाहूंगा कि आप अपनी जुबानी इन ऑपरेशंस के बारे में बताएं।
1: जी बिल्कुल, मैं अभी जमुई में हुए ऑपरेशन के बारे में आपको कुछ प्रकाश डालूंगा। उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी काफी विस्तृत है और यह कई फेजेस में कंडक्ट किया गया था। 11 फरवरी 2021 मेरे सर्विस करियर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण दिन था। हमें इंटेलिजेंस प्राप्त हुई थी कि लखीसराय जिले के जंगल क्षेत्र में नक्सलियों का एक सशस्त्र दस्ता देखा गया है और उनके लिए आसपास के क्षेत्रों से भोजन सामग्री पहुंचाई गई है। प्राप्त सूचना को वेरीफाई करने के बाद ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। हमने 10-11 फरवरी 2021 की मध्यरात्रि के दौरान अपना मूवमेंट शुरू किया। क्षेत्र की ज्योग्राफिकल कंडीशंस काफी चुनौतीपूर्ण थी, इसलिए ऑपरेशन में पेशेंस, एंड्योरेंस और सतर्कता की विशेष आवश्यकता थी। ऑपरेशन के दौरान प्राप्त एक अन्य इनपुट के आधार पर परिस्थितियों के अनुरूप हमारी टीम ने अपनी योजना में आवश्यक बदलाव करते हुए आगे मूवमेंट किया। 11 फरवरी की सुबह लगभग 10:30 बजे के आसपास हमारी टीम पर अचानक भारी मात्रा में फायरिंग शुरू हुई। हमने स्थिति का असेसमेंट करते हुए जवाबी कार्रवाई की। एंगेजमेंट का कुछ समय तक रुक रुक कर जारी रहा। इसके बाद एरिया की सिस्टमेटिक सर्च की गई। इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण नक्सली कैडर मनसा कोड़ा जोनल कमांडर को न्यूट्रलाइज किया गया तथा कुछ अन्य कैडर के घायल होने की जानकारी बाद में प्राप्त हुई। साथ ही साथ कुछ हथियार, गोला बारूद एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे संतोषजनक और महत्वपूर्ण बात मेरे लिए यह रही कि हमारी पूरी टीम सुरक्षित रही और किसी भी साथी को कोई इंजरी नहीं हुई। मेरे विचार से यही किसी भी ऑपरेशन की सबसे बड़ी सफलता होती है। मिशन को प्रभावी ढंग से पूरा करना और अपनी पूरी टीम को सुरक्षित वापस लाना। लेकिन मैं इस पूरी कार्रवाई को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, यह पूरी टीम का कलेक्टिव एफर्ट था। हर व्यक्ति ने, हर कार्मिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सभी ने एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखा। हमारे लिए ऑपरेशन की सफलता केवल ऑब्जेक्टिव हासिल करने में नहीं थी, हमारे हर साथी का सुरक्षित रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उस दिन पूरी टीम का डिसिप्लिन, म्यूचुअल ट्रस्ट और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमारी सबसे बड़ी ताकत रही।

0: तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन आपने किया, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जब अचानक से फायरिंग शुरू होती है तो मन में पहला विचार क्या आता है? आपके मन में वो पहला विचार उस समय क्या आया जब एकदम से फायरिंग शुरू होगी? और खासतौर से मैं जानना चाहूंगा कि जो सिविलियंस होते हैं वो कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि एकदम से फायरिंग शुरू हो गई और जवाबी कार्रवाई हुई, तो जब एकदम से फायरिंग शुरू होती है तो मुझे जहां तक कॉम्बैट की नॉलेज है कि हम गोलियों के सामने नहीं आते, हम एक कवर लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स कवर लेने के बाद थोड़ा सा उस कवर के दौरान ही हम लोग एक समीक्षा करते हैं, एक ऑपरेशन हो रहा होता है, फायरिंग शुरू होगी, इसके लिए ट्रेनिंग हमें वाकई में पहले दी जाती है, पर फिर भी ट्रेनिंग और उस एक्चुअल मोमेंट में जब अचानक फायरिंग शुरू हुई तो आपके मन में पहला विचार क्या था?
1: जी बिल्कुल, उस समय सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सिचुएशन को जल्दी एसेस करना, एसेस किया जाए और टीम को कोऑर्डिनेटेड तरीके से रिस्पांस दिया जाए। ऐसी परिस्थिति में ट्रेनिंग बहुत काम आती है, आपके पास सोचने के लिए बहुत कम समय होता है, इसलिए ट्रेनिंग के कारण रिस्पांस इंस्टिंक्ट और डिसिप्लिन्ड हो जाता है। उस समय मेरा फोकस था कि फ्रंटलाइन को एस्टेब्लिश किया जाए, कम्युनिकेशन क्लियर रहे और टीम एफेक्टिवली रिस्पॉन्स कर सके।
0: ओके, तो उस समय जब आप आगे बढ़ रहे थे तो आप क्या आपने एक क्षण के लिए भी कुछ विचार आया? उस समय होता है ना एकदम से फायरिंग शुरू हो गई, दिस इज द रियल एक्शन, अब क्या होगा आगे पता नहीं, लोग परिवार के बारे में सोचते हैं, तरह तरह की बातें आती हैं जहन में, कुछ होता है?
1: जी, खतरे की स्थिति में डर या तनाव एक स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन ऑपरेशनल ड्यूटी में ट्रेनिंग आपको सिखाती है कि उस भावना को अपने डिसीजन मेकिंग पर हावी नहीं होने देना है। उस समय मेरे लिए पर्सनल फेयर से ज्यादा महत्वपूर्ण मेरी टीम और मिशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मैं करेज को इस तरह देखता हूं कि खतरे के बावजूद आप अपने कर्तव्य से पीछे ना हटें।
0: आप बीच में फायर डिसिप्लिन, आपने एक वर्ड यूज किया, तो मैं चाहूंगा कि इसका महत्व आप लोगों को समझाएं, वो लोग जो आपको अभी सुन रहे हैं, क्योंकि हमने डिसिप्लिन तो बहुत सुना है कि द पीपल हु आर इन यूनिफॉर्म वो डिसिप्लिन रहते हैं, लेकिन कॉम्बैट के वक्त फायर डिसिप्लिन, ये मैं चाहूंगा कि ये मैंने सुना तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सशस्त्र सीमा बल के फायर डिसिप्लिन का एक जो महत्व है वो लोगों को बताएं, और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे थे, कितनी जल्दी आप लोग आपस में अपने साइन लैंग्वेज में ही बात करते होंगे शायद, एंड यू माइट नॉट बी काइंड ऑफ यू नो, एक वो भी एक महत्वपूर्ण एक अंश है कॉम्बैट का, लेकिन फायर डिसिप्लिन एंड ऑफकोर्स उसके बाद उसका जो महत्व है वो थोड़ा बताएं।
1: जी बिल्कुल, ऑपरेशन में किसी भी ऑपरेशन को सक्सेस बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फायर डिसिप्लिन का होना, और कम्युनिकेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमने ये इंश्योर किया कि आरटी के माध्यम से जो भी ऑर्डर्स पास किए जा रहे थे उन्हें सभी सेक्शंस तक क्लियर और काम तरीके से रिले करना आवश्यक था। इंटेंस एंगेजमेंट के दौरान अगर कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो जाए तो सिचुएशन और डिफिकल्ट हो सकती है, इसलिए मैंने कोशिश की कि ऑर्डर्स एक्यूरेटली और टाइमली तरीके से आगे पहुंचे और ट्रूप्स के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसी तरह फायर डिसिप्लिन भी बहुत महत्वपूर्ण था
0: जी।
1: हमारा उद्देश्य कंट्रोल्ड और इफेक्टिव रेस्पॉन्स देना था, ना कि केवल अधिक एमिनेशन खर्च करना।
0: ऑलराइट, बेसिकली यू नो आप लोगों की जो ट्रेनिंग होती है वो पब्लिक तो होती नहीं, इसलिए ये प्रोग्राम जो है संदेश टू सोल्जर्स, जो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उसके माध्यम से हम सिविलियंस को कुछ थोड़ा बहुत पता लग जाता है कि किस तरह का डिसिप्लिन, हम लोग डिसिप्लिन एक वर्ड यूज करते हैं लेकिन मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ा फैलाव है, और डिसिप्लिन हमेशा रहने में मेरे ख्याल से

0: इट डजेंट मीन कि आप हमेशा सीरियस हैं और सीरियस हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, जैसे हम आकाशवाणी रेनबो में करते हैं, थोड़ा सा गीत संगीत भी सुनते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी पसंद का एक गीत हमें चुनकर बताएं कि कौन सा गीत हम इस समय थोड़ा सा माहौल को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए प्ले कर सकते हैं, और कौन सा गीत हो सकता है।
1: जी मैं चाहूंगा कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए।
0: दिस इज ग्रेट सॉन्ग, है ना, पुरानी फिल्म का है।
1: जी जी बिल्कुल,
0: मतलब मैं पैदा नहीं हुआ था जब ये फिल्म रिलीज हो गई थी
1: जी,
0: और आपकी फिगर और आपकी स्मार्टनेस देखकर मेरे ख्याल से हमारे पैदा होने से पहले ये फिल्म बनी थी। इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, किशोर कुमार लता मंगेशकर जी की आवाज में। इस गीत को सुनते हैं, उसके बाद मैं आपके से जानना चाहूंगा, आपके पास आऊंगा दोबारा, कि ये गीत आपको क्यों पसंद है, पन्ना की तमन्ना। लेट्स हियर इट आउट ऑन संदेश टू सोल्जर्स।

0: तो आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। तो कुछ बताना चाहेंगे पन्ना की तमन्ना, बड़ा सॉलिड सॉन्ग है, एक बॉलीवुड से कुछ खास प्यार?
1: जी मुझे किशोर कुमार जी के गाने सुनने अच्छे लगते हैं, और जब मैं स्टडी करता था कॉलेज टाइम पे, तो उस वक्त जो है मैं जब भी टाइम मिलता था तो फोकस तोड़ने के लिए मैं किशोर जी के गाने और अपने
0: मतलब एक अलग ही जादू है इनकी आवाज में, यू नो। खिलाड़ियों से हम बात करते हैं वो किशोरदा के फैन है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो किशोरदा के फैन है, लता मंगेशकर जी के फैन है, भले ही ये लोग फिजिकली हमारे साथ नहीं हो लेकिन इनकी आवाज सदियों तक रहेगी। और आई एम श्योर किशोरदा, लता जी की सोल, उनकी आत्मा जहां भी होगी बहुत गर्व महसूस करती होगी कि द मैन एंड वुमेन इन यूनिफॉर्म आज भी उनकी आवाज उनको इतना प्रेरित करती है।
1: जी बिल्कुल।
0: तो आपके सैन्य जीवन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, अभी नक्सल अफेक्टेड जो एरियाज हैं उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि जब हम उन अफेक्टेड एरियाज में जो ड्यूटी करते हैं तो उस समय जो जो पर्सनल होते हैं वो किस प्रकार विजिलेंट रहते हैं?
1: जी बिल्कुल। नक्सल अफेक्टेड एरियाज में सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कभी भी कंप्लेसेंट ना हो। ऐसे एरियाज में ग्राउंड सिचुएशन लगातार बदल सकती है, इसीलिए इंटेलिजेंस इनपुट्स, ब्रीफिंग्स, लोकल सिचुएशन, रूट असेसमेंट और टीम कोऑर्डिनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारी ट्रेनिंग हमें यह सिखाती है कि रूटीन मूवमेंट को भी पूरी प्रोफेशनल अलर्टनेस के साथ किया जाए, लेकिन विजिलेंट केवल हथियार लेकर चौकन्ना रहने का नाम नहीं है। विजिलेंट का अर्थ है अपने सराउंडिंग्स को समझना, असामान्य गतिविधियों को पहचानना, कम्युनिकेशन बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत एप्रोप्रिएट डिसीजन लेना।
0: आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि हमारे साथ सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर मौजूद हैं, और एसएसबी की जहां तक हम बात करें तो ओरिजिनली इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1963 को, तब स्पेशल सर्विस ब्यूरो के नाम से इसे जाना जाता था, नई दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये इसका मोटो है, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। और हमारे बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं और देश के अंदर जब भी कोई चुनौतीपूर्ण एक मौका आता है या वो क्षण आता है उसमें बिल्कुल सामने डटकर

0: खड़े हो जाते हैं, उसका सामना करते हैं और विजयी होते हैं। चलिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़े से पन्ने जो हैं उनको घुमाते हैं और सबसे पहले जानना चाहेंगे यहाँ, जब हम ये पन्ने थोड़ा सा पीछे मोड़ रहे हैं, कि आपके प्रारंभिक जीवन के जो पल थे, जहाँ बचपन है, शिक्षा है, परिवार है, आपकी अपनी पर्सनालिटी, उसके बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मैं जमशेदपुर झारखंड का निवासी हूँ। मैंने अपने प्रारंभिक जीवन की बात करूं तो मेरा बचपन एक सामान्य मध्यम वर्गीय पारिवारिक परिवेश में बीता है। मेरे परिवार ने बचपन से ही मुझे अनुशासन, ईमानदारी, मेहनत और बड़ों का सम्मान करने जैसे संस्कार दिए। मैंने रांची यूनिवर्सिटी से बीएससी मैथमेटिक्स में स्नातक की शिक्षा पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ मुझे शारीरिक गतिविधियों, खेल और अनुशासित जीवन में रुचि थी। मेरे व्यक्तित्व के निर्माण में मेरे माता पिता और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। मैं मानता हूं कि व्यक्ति की सफलता केवल उसकी अपनी मेहनत का परिणाम नहीं होती, उसके पीछे परिवार के संस्कार, शिक्षकों का मार्गदर्शन और जीवन में मिले अनुभवों का बहुत बड़ा योगदान होता है।
0: एसएसबी में जब आपके भर्ती होने की जब बारी आई, तो आपको ये एसएसबी में ही, सशस्त्र सीमा बल में ही आने के लिए प्रेरणा आपको कहां से मिली? और साथ ही साथ मैं जानना चाहूंगा कि आपने जब एसएसबी ज्वाइन किया तो उसकी भर्ती की जो प्रक्रिया थी वो कैसी रही?
1: जी बिल्कुल, मेरे लिए प्रेरणा का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत मेरे पिता रहे हैं। वे इंडियन रेलवेज में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे, साथ ही टेरिटोरियल आर्मी में थे। बचपन में जब मैं उन्हें वर्दी में देखता था तो उन्हें वर्दी में देखकर मेरे अंदर भी देश के लिए कुछ करने का जोश और जुनून पैदा होता था। शायद वहीं से मेरे मन में यह भावना विकसित हुई कि भविष्य में मुझे भी ऐसी वर्दी पहनकर राष्ट्र की सेवा करनी है। इसी भावना को व्यक्त करने वाला अंग्रेजी का एक कोट जो मुझे प्रेरित करता है वो मैं कहना चाहूंगा। द यूनिफॉर्म इज नॉट मेयरली व्हाट यू वेयर, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी यू कैरी, द वैल्यूज यू अपहोल्ड एंड द नेशन यू सर्व। मेरे लिए वर्दी केवल पहनावा नहीं है, यह उस जिम्मेदारी, अनुशासन और समर्पण की पहचान है जिसे पहनने वाला व्यक्ति अपने कंधों पर लेकर चलता है।
0: तो दोस्तों, आप सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर की आवाज सुन रहे हैं। हमने उनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे उनकी ही जुबानी कि एसएसबी ज्वाइन करने से पहले और उसके बाद उनके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं।
1: जी, परिवार के लिए यह गर्व का विषय था, लेकिन स्वाभाविक रूप से थोड़ी चिंता भी थी। यूनिफॉर्म सर्विस में पोस्टिंग्स अलग अलग राज्यों और कई बार कठिन तथा संवेदनशील क्षेत्रों में होती है, इसलिए परिवार को पता था कि आगे का जीवन आसान नहीं होगा। लेकिन मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया और उसके बाद अलग अलग लोकेशंस पर मेरी पोस्टिंग हुई, तो धीरे धीरे उन्हें भी इस प्रोफेशन की चुनौतियों की समझ हुई। और जब मुझे पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री से सम्मानित किया गया, तो वह मेरे परिवार के लिए अत्यंत भावुक और गर्व का क्षण था।
0: आपने अपने गैलेंट्री अवार्ड की बात की, तो मेरे ख्याल से ये जो ऑपरेशंस आपने किए जिसके लिए ये सम्मान आपको दिया गया, गैलेंट्री अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है ना, तो इसकी जो उपलब्धि थी, इसके महत्व के बारे में तो हम लोग जानेंगे, लेकिन आपके लिए वो क्षण कैसा था जब आपको पता लगा कि आपको इस गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और खास तौर से

0: एक ऐसी फोर्स के बारे में हम बात करते हैं जिसे 2001 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ट्रांसफर कर दिया गया था, और जो नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स पे जो मैनिंग की जो ड्यूटीज थी उसके बाद एक और दायित्व दिया गया इन्हें, क्योंकि जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आ गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास कारगिल युद्ध के बाद, तो एक अडॉप्शन जो कहते हैं कि वन बॉर्डर वन फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया। और बॉर्डर एरिया हो या मैंने जैसे आपने आप भी बता रहे हो और मैं भी बता रहा हूं अपने श्रोताओं को कि देश के अंदर जो गतिविधियां चलती हैं जहां पर भी कोई चैलेंजिंग मोमेंट आता है उसको उसका सामना करने के लिए उसके सामने खड़े होने के लिए सशस्त्र सीमा बल हमेशा तैयार रहती है, और वहीं से गैलेंट्री अवार्ड के लिए ये सम्मान अनाउंस होना मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जब ये अनाउंस हुआ और आपको पहली बार पता लगा तो आपके वो क्षण कैसे थे?
1: जी, यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावनात्मक क्षण था। सबसे पहले मेरे मन में अपने सीनियर्स, अपने साथी कार्मिक और अपने परिवार के प्रति आभार आया, क्योंकि जिस ऑपरेशन के लिए मुझे यह सम्मान मिला उसमें मैं अकेला नहीं था। पूरी टीम ने कठिन परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मैं इस मेडल को पूरी टीम के साहस, प्रोफेशनलिज्म और डेडिकेशन का सम्मान मानता हूं।
0: ये जो गैलेंट्री अवार्ड की हम बात कर रहे हैं तो असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर से मैं पूछना चाहूंगा कि ये मेडल मिलने के बाद आपकी सोच में भी कोई बदलाव आया?
1: जी, बताना चाहूंगा, सम्मान मिलने के बाद मेरे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है। मेडल मेरे लिए यह रिमाइंडर है कि मुझे आगे भी अपने प्रोफेशन में उसी डेडिकेशन और प्रोफेशनलिज्म को बनाए रखना है। मैं इसे उपलब्धि का अंत नहीं बल्कि आगे बेहतर करने की प्रेरणा मानता हूं।
0: और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा अर्थ है गैलेंट्री मेडल का।
1: जी बिल्कुल।
0: राइट देन, जब गैलेंट्री अवार्ड मेडल मिलता है सैयद अफसर, मैं आपसे जानना चाहूंगा वो मेडल की जब खबर आती है तो उस दिन रात को नींद कैसे आती है और अगली सुबह वो भाव कैसे होते हैं? गौरव का क्षण होता है?
1: बिल्कुल, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए जो ऑपरेशन में उस दिन डटकर खड़े थे साथ, और उन सभी मेहनत और ट्रेनिंग के दिनों के लिए जो हमने इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए किया था।
0: उस दिन जब ये खबर आपके पास आई तो शायद कोई ऐसा मोमेंट भी होगा जहां आप अकेले होंगे, कोई नहीं होगा आसपास कुछ देर के लिए, उस समय नहीं तो उसके थोड़ी देर बाद, आप और सिर्फ आप, जहां आप अपनी आत्मा से बात कर रहे होंगे, कुछ ऐसा मोमेंट था, कुछ शेयर करना चाहेंगे?
1: जो बिल्कुल, जब हम ऑपरेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारे दिमाग में मेडल्स ये सब नहीं होता, बट जब आपके किसी अच्छे काम को रिकग्निशन मिलता है तो बिल्कुल बहुत खुशी होती है, और वो भावुक क्षण था मेरे लिए।
0: एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने आपसे नहीं बताया और मैं नहीं बताता किसी को कि ये सवाल मैं शो में पूछूंगा आपसे, और ये सवाल मैंने भारत के टॉप स्पोर्ट्स पर्सन से पूछा है, देश के जांबाज सिपाहियों से पूछा है, अफसरों से पूछा है, सोल्जर से पूछा है, इसलिए ये सवाल मैं अब आपके आंखों में देखकर ये पूछना चाहता हूं। सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर, ये तिरंगा आपके लिए क्या मायने रखता है जिसकी आन बान शान के नीचे आप अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं?
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तिरंगा हमारी आन बान और शान है, और इसी के लिए हम अपनी जान निछोर कर सकते हैं। इसी के हमेशा ऊंचा रहने के लिए हम अपनी सब कुछ निछोर कर देते हैं, और
0: भावुक क्षण है। सवाल उतना आसान नहीं है, है ना, ये तिरंगा कभी कभी वो भाव निकाल ही लाता है।

0: हमारे अंदर से, है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, आप देश की सेवा कर रहे हैं और आपका परिवार भी है, और उसके बीच में एक कहते हैं ना, एक संतुलन बनाना बहुत जरूरी होता है कि फैमिली की भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। फैमिली कहती है कि भाई हमारी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फोन आया तो ठीक है, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, क्या कर रहे थे, कहाँ गए थे। ये थोड़ा सा जो आपकी डिसिप्लिन लाइफ है उससे सिविलियन लाइफ थोड़ी सी अलग होती है, तो आप देश सेवा और परिवार के बीच में जो संतुलन है वो कैसे बनाए रखते हैं?
1: जी, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यह निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है। हमारी पोस्टिंग्स और ड्यूटीज के कारण कई बार परिवार से दूर रहना पड़ता है, और जो इम्पोर्टेंट ओकेजन्स होते हैं जो हमारे परिवार के, वो भी कई कबार मिस हो जाते हैं। ऐसे में परिवार का अंडरस्टैंडिंग रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जब भी समय मिलता है मैं परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताता हूँ और कम्युनिकेशन बनाए रखता हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ कि जब एक सोल्जर देश की सेवा करता है तो उसके साथ उसका परिवार भी सेक्रीफाइस करता है।
0: देखो परिवार का योगदान तो बहुत रहता है, एंड ऑफकोर्स जब हम बात करते हैं परिवार के संतुलन के बारे में, उनका सपोर्ट, उसके बगैर तो कोई बैलेंस बन ही नहीं सकता लाइफ में। और हम आकाशवाणी में एक बैलेंस बना के रखते हैं अपने लिसनर्स के साथ, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी श्रोता इस समय संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं, न्यूज ऑन AIR के माध्यम से देश और विदेश में भी हमें सुना जा रहा है, हम इस बात से परिचित हैं, तो अगर आप कोई व्हाट्सएप मैसेज करना चाहें तो एक नंबर मैं आपको बता रहा हूं जहां पर आप व्हाट्सएप से अपने भाव, अपने प्रतिक्रिया, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं सईद अफसर जी से तो वो पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर है 9868107070, 9868107070। हाँ, लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी से मुलाकात हो रही है, और समय हो गया है कि एक और गीत सुने। तो कौन सा गीत आप प्ले करना चाहेंगे? किशोरदा के तो आप फैन हैं
1: जी। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई।
0: अरे इसके अंदर तो बहुत राज छुपे हैं असिस्टेंट कमांडेंट साहब, जरूर इसके पीछे बहुत बड़ा कोई रीजन है। तो ये गीत सुनते हैं आपकी फरमाइश, किशोरदा की आवाज में, फिल्म अजनबी से।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप. मेरा नाम है मुनीश जौली और मेरे साथ यहां असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर मौजूद हैं. सशस्त्र सीमा बल जो हमारी फोर्स है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं फ्यूचर के लिए भी आकाशवाणी की तरफ से. और बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं जिनसे थोड़ा सा परिचित होंगे थोड़ी देर में. लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा था कि सशस्त्र सीमा बल में जो भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कैसी रहती है और आपके लिए कैसी थी.
1: जी मैंने एसएसबी वर्ष 2012 में बतौर उपनिरीक्षक के पद पर ज्वाइन किया एवं अपनी सेवा यात्रा शुरू की. भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल परीक्षण, इंटरव्यू तथा अन्य निर्धारित चयन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा. सेलेक्शन और ज्वाइनिंग के दौरान मेरे लिए यह एक नया अनुभव था. एक यूनिफॉर्म फोर्स में आने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल प्रिपेयर्डनेस, डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन की भी आवश्यकता होती है. ज्वाइनिंग के बाद मेरा पहला महत्वपूर्ण चरण सलोनीबाड़ी असम में सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर में बेसिक ट्रेनिंग का रहा. ट्रेनिंग के दौरान मुझे पहली बार महसूस हुआ कि अब जीवन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं. अब केवल व्यक्तिगत सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन और देश के प्रति जिम्मेदारी भी थी. वर्ष 2023 में मैंने विभागीय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दैट इज LDC उत्तीर्ण कर असिस्टेंट कमांडेंट जनरल ड्यूटी के पद पर पदोन्नति प्राप्त की. वर्तमान में मैं सशस्त्र सीमा बल 24वीं वाहिनी रंगिया असम में बतौर सहायक कमांडेंट अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूं.
0: तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर है वो कैसा रहा. और इससे पहले कि आप उत्तर दें मैं कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेता हूं जो हमारे पास आ रहे हैं देश भर से. और सबसे पहले ये मैसेज जिनका आया है वो है यश शिंदे, मुंबई से लिख रहे हैं. और प्रोग्राम के बारे में उनकी प्रतिक्रिया ये है कि उन्हें ये प्रोग्राम आपकी आवाज और आपके विचार सुन के बहुत अच्छा लग रहा है. शांताचारा बदीगर कोकानूर देवनागरी से संदेश टू सोल्जर्स की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि वो याद दिलाते हैं ये प्रोग्राम की सर्विस सैक्रिफाइस ड्यूटी हमारे ब्रेव सोल्जर्स की जो हमारे इस भारतवर्ष को गार्ड कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण है. और प्रभावित होते होते बी के दत्त हमें नई दिल्ली से मैसेज लिख रहे हैं. अनमोल राय छपरा बिहार से हमें मैसेज लिख बैठे हैं. और आकाशवाणी का धन्यवाद दे रहे हैं चेतन पटेरिया ग्वालियर से. राजकुमार संतानी एक मैसेज लिख रहे हैं. मोहन चंद्र जोशी ने अपना एक मैसेज हमारे तक पहुंचाया है. और एक और मैसेज हमारे पास आया है जो मैं पढ़ना चाहूंगा यहां पे. सैयद सर के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. अस्सलाम वालेकुम सर, हमें प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है. और स्वर रोड मुरसेना डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से मैसेज आया है. और गुलाब

बादशाह इदरीसी जीनत और नाजिया शाजिया के साथ ये मैसेज हम तक पहुंचा है। कोकानूर से भी एक मैसेज आया है जिसको हम पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम में वार्ता सुनकर हमें लग रहा है कि एसएसबी कितना महत्वपूर्ण और बड़ा काम कर रही है। अमेरिका से एक मैसेज आ गया हमारे पास एंड ऑफकोर्स वो कह रहे हैं कि ये प्रोग्राम सुनकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। नाम लिखा नहीं है तो हम नाम ले नहीं पाएंगे। सूरज कुमार शेखुपुरा बिहार से हमें मैसेज लिख रहे हैं, एसएसबी को सैल्यूट दे रहे हैं। एसएसबी कमांडेंट साहब को संदेश टू सोल्जर्स कार्यक्रम का नियमित श्रोता। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु से विजय कुमार विश्वनाथन का प्रणाम, बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं आपकी गैलेंट्री अवार्ड के लिए। सैनिकों का जज्बा जो है उनकी शौर्य गाथा पर ये केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स। संतोष श्रीवास्तव

0: था, पर यह केंद्रित प्रोग्राम संदेश टू सोल्जर्स. संतोष श्रीवास्तव को पसंद आ रहा है जो प्रयागराज ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में प्रोग्राम्स करते हैं. सुरेश कुमार 68 बटालियन एसएसबी मणिपुर एल एंड ओ ड्यूटी कर रहे हैं सर, और एल एंड ओ ड्यूटी के लिए कुछ टिप्स बताइए, हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या? एएसआई सुरेश कुमार आपसे परिचित है, एसएसबी के ही हैं
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो कह रहे हैं कुछ टिप्स बताइए. एल एंड ओ,
1: एल एन ओ बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी होता है.
0: okay.
1: आप जानते हैं मणिपुर की सिचुएशन थोड़ी सी मतलब गड़बड़ाई हुई है, और वहां पे कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस जो रेगुलर फोर्सेस वहां तैनात है उसके अलावा अभी वहां पे तैनात की गई है ताकि सिचुएशन को नॉर्मलाइज किया जा सके. मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपको जो ड्यूटी आपकी कंपनी कमांडर के द्वारा या जो एडहॉक कमांडेंट आपके हैं वहां पे उसके द्वारा लगाई गई है, या अभी हमारे 68 बटालियन वहां पे बेसिकली उनका केएलपी वहां पे रिलोकेट हो गया है, तो अभी 68 बटालियन की लगभग सभी वाहिनियां मणिपुर में हैं. मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो आपको ड्यूटी दी जाती है उस ड्यूटी को आप बहुत ही सतर्कता के साथ में और विजिलेंट होकर के करें, और किसी भी अनटूवर्ड स्थिति के लिए आप बिल्कुल तैयार रहें, और साथ ही साथ स्थिति को समझें और सिचुएशन की डिमांड को देखते हुए एक्शन लें. और जो आपके सीनियर हैं, जो आपके जस्ट सीनियर हैं, जो आपके सुपीरियर हैं, उनके जो ऑर्डर्स प्रॉपर फॉलो करें, और जो ट्रेनिंग में आपने सीखा है उस ट्रेनिंग को वहां पे जो है पूरी तरीके से उतारें, और आपकी अपने आप ही जो ड्यूटी है वो परफेक्ट हो जाएगी.
0: वाह, बहुत अच्छे विचार आपने शेयर किए यहाँ पे, और बहुत सारे लोग हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं. मानसी महास्कर अंधेरी मुंबई से उनमें से एक है, और आपको दिल से वो बधाइयां दे रही हैं. कह रही हैं कि आज के मेहमान अफसर सर और सब दलों के फौजी भाई बहनों को मेरा प्रणाम, और मैं हमेशा सुनती हूं प्रोग्राम, एंड ऑफकोर्स वो अपने भाव भले ही व्हाट्सएप के जरिए चार लाइनों में ही व्यक्त कर रही हूं, लेकिन इन चार लाइनों के पीछे ढेर सारा प्रेम हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए है, एंड ऑफकोर्स फॉर द ग्रेट नेशन दैट वी लिव इन.

0: तो हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, एंड ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी लें. तो सबसे पहले उसी सवाल को मैं दोहरा रहा हूँ असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की, सब इंस्पेक्टर से असिस्टेंट कमांडेंट तक का जो आपका सफर था वो कैसा था?
1: जी, यह सफर मेरे लिए निरंतर लर्निंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सफर रहा है। मैंने एसएसबी में अपने कैरियर की शुरुआत सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री के रूप में की और आज असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्वरूप बदलता गया। एक जूनियर रैंक्स में आपका फोकस मुख्य रूप से अपनी असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोफेशनली पूरा करने पर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपको अपने साथ काम करने वाले कार्मिकों की सेफ्टी, उनका मोरल, डिसिप्लिन और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। इस सफर

0: ने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाई। लीडरशिप का अर्थ केवल आगे रहना नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर अपनी टीम के लिए आगे खड़ा होना भी लीडरशिप है।
1: सशस्त्र सीमा बल, जितनी भी तारीफ हम करें शायद शब्द कम पड़ जाएं। जानते हैं कि साल 2013 में सशस्त्र सीमा बल पर एक पोस्टल स्टैंप इशू किया गया था, और वहां पे भारत की वो सरहद जहां पर बर्फीली चट्टानों के बीच में हमारे जाबाज सैनिक सुरक्षा का वो दायित्व संभालते हैं, एक कवच पहनते हैं, भारत मां का दिया हुआ वो कवच उस यूनिफॉर्म के रूप में। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, हर प्रांत, हर जगह में सशस्त्र सीमा बल लगभग हर जगह अपनी सेवाएं हमें देती हैं। और इस सशस्त्र सीमा बल में लीडर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो यहां हमारे साथ स्टूडियो में जो बैठे हैं असिस्टेंट कमांडर सैयद अफसर, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार एक अच्छा लीडर कौन होता है।
0: जी बिल्कुल, लीडर्स की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। जो मेरे लिए है मैं बताना चाहूंगा, मेरे विचार से अच्छा लीडर वह होता है जो अपनी टीम को केवल आदेश ना दे बल्कि उन्हें समझे। एक लीडर को अपने कार्मिकों की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस दोनों को समझना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर को अपने एक्शन से एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। अगर आप अपनी टीम से कमिटमेंट की अपेक्षा करते हैं तो आपको भी उतना ही कमिटेड होना चाहिए।
1: वाह, और बहुत कम समय बचा है, लगभग हमारे पास 5 मिनट बचे हैं, तो अपने श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप नंबर है जो मैं आपको दोबारा शेयर कर रहा हूं, आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर है 9868107070, 9868107070। असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर हमारे साथ मौजूद हैं। यहां पर कुछ और मैं आपसे बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा चीजों को हमने बहुत सीरियसली लिया, लेकिन हमारे देश के युवा भी हैं जो शायद कोई मार्गदर्शन चाह रहे हो। अगर उन युवाओं के लिए मैं आपसे कहूं कि आप अपनी जुबानी, सशस्त्र सीमा बल के असिस्टेंट कमांडेंट सईद अफसर की जुबानी अगर कोई मैसेज उन यंग लोगों तक पहुंचाया जाए तो वो क्या होगा?
0: जी बिल्कुल, मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने कैरियर का चुनाव केवल सैलरी या स्टेटस के आधार पर ना करें। ऐसा प्रोफेशन चुनें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें आप समाज और देश के लिए मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन कर सकें। अगर कोई युवा यूनिफॉर्म सर्विस में आना चाहता है तो उसे फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन और प्रिजर्वेंस पर भी काम करना चाहिए। फेलियर्स आए तो उनसे सीखें, लेकिन अपने लक्ष्य को ना छोड़ें।
1: आज से अगर 14 साल पहले थोड़ा पीछे जाएं, साल 2012 में, तो 2012 के सईद अफसर और आज के अफसर जो हमारे सईद अफसर साहब हैं, उनसे अगर वो दोनों पर्सनालिटी मिलें तो 2026 के सईद अफसर 2012 के सईद अफसर से क्या कहेंगे? कुछ ऐसे ही भाव जो आपने युवाओं के लिए कहे?
0: जी बिल्कुल, मैं 2012 के सैयद अफसर से कहना चाहूंगा कि अपनी मेहनत और अपने उद्देश्य पर विश्वास बनाए रखो। आगे रास्ते में कई चैलेंजेस आएंगे, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ेगा और कई बार कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अपने प्रिंसिपल्स और अपनी ड्यूटी से कंप्रोमाइज मत करना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी सफलता का श्रेय अकेले खुद को मत देना। जिन लोगों ने आपके सफर में आपका साथ दिया है उन्हें हमेशा याद रखना।
1: और आकाशवाणी ने भी तो आपका बहुत साथ दिया है, मेरे ख्याल से आपकी फोर्स में बहुत सारे लोग जो बहुत डिफिकल्ट टेरेन में होंगे, क्या मतलब पहले तो बहुत सारे लोग खुले तरीके से आकाशवाणी को चला के रेडियो

0: सुनते थे, आपका आकाशवाणी के साथ वो रिलेशन और जो आपके जो आपके बटालियन हो या आपके ग्रुप के जो लोग हैं आकाशवाणी के प्रति, उनका भी एक भाव होगा, जुड़ाव होगा, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं?
1: जी बिल्कुल, मैं आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा। देश की सुरक्षा केवल सीमा पर तैनात फोर्सेस की जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र निर्माण में हर नागरिक की अपनी भूमिका है। मैं विशेष रूप से युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने जीवन में डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और हार्डवर्क को महत्व दें। जो युवा यूनिफॉर्म फोर्सेस में आने का सपना देखते हैं, वे पूरे समर्पण के साथ तैयारी करें और कठिनाइयों से कभी ना घबराएं। मेरे लिए राष्ट्र सेवा केवल एक प्रोफेशन नहीं है, बल्कि एक कमिटमेंट है, और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मेरे लिए उस कमिटमेंट को और मजबूत करने की प्रेरणा है।
0: संदेश टू सोल्जर्स में समय निकलता जा रहा है, बहुत ही जल्द हमें इस प्रोग्राम का आज समापन करना पड़ेगा, लेकिन चलते चलते वो लोग जो हमें मैसेजेस भेज रहे हैं व्हाट्सएप, जिनसे मैंने मंगाया है, उनके नाम में अपने ही अंदाज में लेना चाहूंगा। मंसूर अली बीकानेर से हमारे को मैसेज भेज रहे हैं, साथ ही साथ SHQ बोंगाई गांव CTGD पर्था बर्मन, शायद ये भी SSB से ही हैं, इन्होंने हमें मैसेज भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया ये मैसेज भेजने के लिए। जय हिंद सर, नाम अपना नहीं लिखा। हाँ, सौरभ कुमार हमें मैसेज भेज बैठे हैं, 16वीं बाहिनी SSB से स्वागत, बंदन अभिनंदन संचार शाखा से, ये आपके लिए मैसेज आया है। एंड ऑफकोर्स सौरभ हिमाचल प्रदेश से हमें मैसेज भेज चुके हैं, जय हिंद कहते हुए वो कह रहे हैं कि एक नए योद्धा है 73rd वाहिनी सशस्त्र सीमा बल सेंथुक में, नहीं टाटा योद्धा के आगमन के अवसर पर विधिवत पूजा अर्चना का आयोजन किया है, सर को बता दीजिए। जय हिंद सर। बहुत कम समय बच गया है, हमें ये प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट सैयद अफसर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो पे आए, अपने भाव शेयर किए, और वो गैलेंट्री अवार्ड मेडल मैं देख पा रहा हूं और मेरे अंदर बहुत ही इमोशन आ रहा है जो मैं व्यक्त नहीं कर सकता, और उन मेडल्स को देख के मैं यही कह सकता हूं दैट आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन।
1: थैंक यू सो मच।
0: और यहीं पे हम संदेश टू सोल्जर्स से आप सभी लोग से विदा लेते हैं, आशा करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, नमस्कार।

0: अपने हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग बन रही, कंपनियां खुल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोड, फ्लाईओवर और ब्रिज बनाते जा रहे। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंट भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे, मगर अपने हैदराबादियां हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेको बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियां नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियां चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतजार करते रहते। बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियां चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया ने तो गांधी को पहुंच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत जरूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुंचो।
1: नुवर्गते।

Hyderabad, a city that

ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 मेगाहर्ट्ज पर। इस स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त रात के 9:30 और 20 सेकंड हो रहे हैं। लीजिए पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, आज के नरंग प्रोग्राम में हम पेश करेंगे, सबसे पहले हरफ ताबिंदा तहरीर होगी जनाब मोहम्मद अब्दुल हई की।

मुशायरा पेश किया जाएगा। हिस्सा ले होने वाले शोरा होंगे डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक, जनाब जहूर मोहम्मद, जनाब महबूब शरीफ, जनाब अतीब एजाज और जनाब हाफिज मोहम्मद अजमत।

0: गीत सुरीले गाता जा, पुराने फिल्मी गीतों का प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। नैरंग प्रोग्राम के आखिर में आप सुनेंगे पयामे शब जैदी की जबानी। तो आइए दोस्तों, आगाज पर सुनते हैं हरफे ताबिंदा, तहरीर है जनाब एम ए हई की।
1: तालीमी निज़ाम में अखलाकियात, तरबियत और सालेह माशरे के तसव्वुर का फुकदान, बच्चों की तरबियत और ज़हनी नशोनुमा का बेहतरीन ज़रिया वालिदैन थे और आज भी वालिदैन ही हैं। ख़ानदान, कौम व मुल्क के लिए जो नई इकदार मुज़िर हैं, इनसे बच्चों को दूर रखने की कोशिश वालिदैन ही कर सकते हैं। बच्चों को महंगी महंगी फ़ीस के कॉन्वेंट स्कूलों में भेजकर अपनी ज़िम्मेदारी से वालिदैन अगर बचेंगे तो लाजमी है बच्चे बेमहार होने से नहीं बच सकेंगे। उस्ताद या उस्तानी तरबियत का शरबत भरा गिलास किसी दर्जे के बच्चे को नहीं पिला सकते। वालिदैन ही अपने हुस्न सलूक से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रफ्ता रफ्ता हर दिन पिला सकते हैं। इसीलिए बच्चों की सोहबत व दोस्ती यारी और गैर अखलाकी व गैर समाजी हरकत पर भी निगाह रखने की वालिदैन की जिम्मेदारी बनती है। जो वालिदैन ऐसा नहीं करते या नहीं करेंगे, वो कल बच्चों को दोष देने से भी बाज रहने के लिए तैयार रहें। देखा जाता है बच्चे क्लासेस में एक दूसरे के साथ मजहब और जात बरादरी की निस्बत से यारी दोस्ती बनाते और निभाते हैं। हमदर्दी का जज्बा कम से कम होता जा रहा है।

0: क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
1: तकमील हुआ आकर कुरान मदीने में,
0: सुभान अल्लाह
1: सुभान अल्लाह। हुआ आकर कुरान मदीने में,
2: सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
0: ये थे खाजी अजमत जाफरी साहब, हैदराबाद के मायानाज शायर व खाजी। अब आइए मुशायरे का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये खुसूसी नशिस्त आपके सामने ऑल इंडिया रेडियो की जानिब से पेश की जा रही है। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो के अहदेदारों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें मौका दिया, और आज की इस नशिस्त की सदारत जनाब जहूर ज़हराबादी साहब फरमा रहे हैं। मैं उनसे इजाजत लेते हुए मैं चाहता हूं कि आज के मुशायरे का आगाज करूं, और सबसे पहले मैं रफीक जिगरी साहब से गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से इस महफिल का आगाज फरमाएं। जनाब रफीक जिगरी।
3: अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम।
3: एक खता एक मतला दो शेर से अपनी बात का आगाज करता हूं। कोई अपनी खताओं पर अगर नादिम नहीं होता, कोई अपनी खताओं पर अगर नादिम नहीं होता, इलाज उसका किसी पर भी कभी लाजिम नहीं होता, इलाज उसका किसी पर भी कभी लाजिम नहीं होता, रियाया की हिफाजत का जिगर जो भी नहीं खायल, रियाया की हिफाजत का जिगर जो भी नहीं खायल, वो शातिर हो तो सकता है मगर हाकिम नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाजिश। एक मतला दो शेर। पैगाम वहीदत का मस्जिद की अजानों में, पैगाम है वहीदत का मस्जिद की अजानों में, असबाख है उल्फत के वेदों में पुरानों में, असबाख है उल्फत के वेदों में पुरानों में, भगवान के भक्तों को अल्लाह के बंदों को, भगवान के भक्तों को अल्लाह के बंदों को, बाटे न मियाँ कोई जातों में जुबानों में, बाटे न मियाँ कोई, बहुत शुक्रिया, बाटे न मियाँ कोई जातों में जुबानों में, वो चांद पे जाकर भी, शेर देखिएगा कि वो चांद पे जाकर भी रखे हैं सफर जारी, वो चांद पे जाकर भी रखे हैं सफर जारी, हम लोग अभी तक हैं किस्सों में फसानों में। एक गजल का मतलब अर्ज करता हूँ कि राह पर अपने चल पड़ी है बहुत, राह पर अपने चल पड़ी है बहुत, जिंदगी धूप से लड़ी है बहुत, जिंदगी धूप से लड़ी है बहुत, बहुत शुक्रिया, जिंदगी धूप से लड़ी है बहुत, जिसको अपने करीब पाया था, जिसको अपने करीब पाया था, वो खुशी दूर जाकर खड़ी है बहुत, वो खुशी दूर जाकर खड़ी है बहुत। शेर देखिएगा कि गम के तूफान में उम्मीदों की, गम के तूफान में उम्मीदों की, नाव गिरदाप में झड़ी है, रात और दिन के आने जाने में ऐ जिगर जंग अब छिड़ी है बहुत, रात और दिन के आने जाने में ऐ जिगर जंग अब छिड़ी है बहुत।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रफी जिगरी साहब। अब मैं बड़े अदब और एहतराम से खाजी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। खाजी अजमतुल्लाह जाफरी साहब से अदबन गुजारिश है कि अपने कलाम से नवाजे।
1: तेरे हिजर के सख्त गुजरे हैं लम्हे, दिले

0: ठोकर संभलते संभलते अभी अभी खा के ठोकर संभल भी न पाए के फिर काय ठोकर संभलते संभलते। बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
1: हज़रात गिरामी, ये थे हैदराबाद और सिकंदराबाद के मशहूर शायर खाजी अजमत जाफरी साहब, जो अपने कलाम से नवाज रहे थे, बेहतरीन तरन्नुम और बेहतरीन कलाम। चलिए आइए अब इस जलसे को, इस मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए एक और ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश करूं, राइटर भी है, बेहतरीन शायर भी है। मेरी मुराद है जावेद नसीम साहब, जिसका ताल्लुक हैदराबाद और कलकत्ता दोनों जगहों से। मैंने बड़े अदब और एहतराम से जावेद नसीम साहब का मैं उन्हें खैर मकदम करता हूँ कि अपने कलाम से नवाजे। जावेद नसीम।
2: हाजरीन महफिल और तमाम सामईन कराम की नजर उर्दू के हवाले से चंद लाइनें पहले कर रहा हूँ सदर साहब की इजाजत से।
1: जी जी, आता है।
2: हवाओं के दरीचे आसमां पे खोल सकते हैं, हवाओं के दरीचे आसमां पर खोल सकते हैं, महज अपनी जुबां से जो दिलों को मोल सकते हैं।
1: वाह,
2: यही तहजीब है अपनी, यही पहचान है अपनी, उन्हीं में हम भी शामिल हैं जो उर्दू बोल सकते हैं।
1: वाह वाह वाह,
2: उन्हीं में हम भी शामिल हैं जो उर्दू बोल सकते हैं।
1: वाह,
2: यही तहजीब है अपनी, यही पहचान है अपनी, उन्हीं में हम भी शामिल हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। और एक गजल पेश कर रहा हूँ, ये गजल जनाब अहमद फराज साहब की एक मशहूर जमाना गजल से मुतासिर होकर मैंने लिखी है।
3: इशाद
2: आप जी, उन्हीं की जमीन में है ये। अर्ज किया है कि सुना है सब उसे घर से निकल के देखते हैं, सुना है सब उसे घर से निकल के देखते हैं, ये बात सच है तो फिर हम भी चल के देखते हैं, ये बात सच है तो फिर हम भी चल के देखते हैं। सुना है उसके बदन में हसी शरारे हैं, तो क्यों ना हम भी शरारों में जल के देखते हैं।
1: वाह वाह वाह,

0: सुना है उसकी तमन्ना में लोग मरते हैं, तो एक बार फिर हम भी मचल के देखते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो एक बार फिर हम भी मचल के देखते हैं। और अगला शेर कुछ यूं है कि सुना है उनके लबों में बड़ी हलावत है।
1: क्या मिश्रा
0: सुना है उनके लबों में बड़ी हलावत है, तो हम शकर की तरह उनमें घुल के देखते हैं। तो हम शकर की तरह
1: बहुत अच्छे जावी साहब
0: उनमें घुल के देखते हैं। और ये शेर के सुना है उसकी जसामत है एक गजल जैसी। सुना है उसकी जसामत है एक गजल जैसी, तो आज शब उन्हीं शेरों में ढल के देखते हैं। तो आज शब उन्हीं शेरों में ढल के देखते हैं। और सुना है लब पे दहकती सी, सुना है लब पे दहकती सी आग रखते हैं। सुना है लब पे दहकती सी आग रखते हैं, तो एक बार चलो हम भी जल के देखते हैं। तो एक बार चलो
1: दोबारा पेश करें।
0: सुना है लब पे दहकती सी आग रखते हैं, तो एक बार चलो हम भी जल के देखते हैं। और ये मक्ता पेश किया है कि सुना है वो के हकीकत नहीं है ख्वाब कोई, सुना है वो के हकीकत नहीं है ख्वाब कोई, फिर भी जावेद हकीकत में ढल के देखते हैं। फिर भी जावेद हकीकत में ढल के देखते हैं।
1: वाह वाह जावेद नसीम साहब, बहुत
2: हजरत गिरामी दियत मोहतरम जावेद नसीम साहब हिंदुस्तान की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत, और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज ये हमारी तशरीफ लाए हमारी दावत पर। अब मैं एक ऐसे शायर को आपके सामने पेश कर रहा हूँ जिनके कई कारनामे हैं और जिन्होंने एक नातिया दीवान भी शायर करवाया है अपनी सरपरस्ती में, और सारे हिंदुस्तान में ये निजामत करते हैं। बहुत ही मशहूर नाम है निजामत की हद तक, और बेहतरीन शायर भी है। तीन तीन चार चार दिन लगातार निजामत करते हैं। बाज़ मुशायरे हैदराबाद में ऐसे मुनक़िद हुए, 125 साल जहां जश्न था, तो पांच दिन मुशायरा चला, तो पांच पांच दिन तक ये निजामत करते रहे। नॉन स्टॉप नाजिम है ये। मेरी मुराद है जनाब अत्यप एजाज से, जिनसे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और एक बात फिर दोहरा दूं कि आज की सदारत हैदराबाद के मुमताज और मारूफ शायर ज़ोर ज़हराबादी साहब फरमा रहे हैं।
3: बेहद शुक्रिया
4: जी सर।
3: बगैर किसी तमहीद के मैं गजल के चंद शेर पेश किए देता हूँ। जहूर साहब इजाजत मतला यूं है कि कर्ब आहे गम तगाफुल सोजे मिजगा देखिए, कर्ब आहे गम तगाफुल सोजे मिजगा देखिए, एक इंसान के लिए हैं कितने उनवा देखिए, एक इंसान के लिए है कितने उनवा देखिए। और उसने मतला है कि वक्त से पहले बदल जाते हैं इंसान देखिए, वक्त से पहले बदल जाते हैं इंसान देखिए, कह रहे हैं दर्द को भी आज दरमा देखिए, कह रहे हैं दर्द को भी आज दरमा देखिए। और शेर्ज करता हूँ कि माँ ने ममता के वसीले से जो मांगी है दुआ, माँ ने ममता के वसीले से जो मांगी है दुआ, हर तरफ छाने लगा है अबरे बारां देखिए, हर तरफ छाने लगा है अबरे बारां देखिए। और शेर अर्ज करता हूँ कि अक्स उनका दे रहा है आईने को जिंदगी, अक्स उनका दे रहा है आईने को जिंदगी, यक बयक उमड़ा हुआ खतरे में तूफान देखिए, यक बयक उमड़ा हुआ खतरे में तूफान देखिए। और शेर अर्ज करता हूँ कि जिस तरह ये चांद अपनी चांदनी खोता नहीं, जिस तरह ये चांद अपनी चांदनी खोता नहीं, जिंदा रखता है कुछ ऐसे फन को फंदा देखिए, जिंदा रखता है कुछ ऐसे फन को फंदा देखिए। और शेर अर्ज कर रहा हूँ कि चाह में दुनिया की या फिर मालो जर की हिर्स में, चाह में दुनिया की या फिर मालो जर की हिर्स में, डगमगाए गाना हरगिस अपना ईमा देखिए, डगमगाए गाना हरगिस अपना ईमा देखिए। मेरी ख्वाहिश को मुकदम रख रहे हैं आजकल, मेरी ख्वाहिश को मुकदम रख रहे हैं आजकल, कर रहे हैं मुझ पे वो एहसान पे एहसान देखिए, कर रहे हैं मुझ पे वो एहसान पे एहसान देखिए। और ये डॉक्टर साहब की मिजाज का आखिरी शेर आ रहा है कि रूठने से फायदा क्या बरहमी

0: रफीक साहब के अपने शहर से भी दूर ही रहना पड़ा मुझको। बहुत शुक्रिया नवाजिश, और उर्दू के हवाले से एक खिताब मुलाजा फरमाए कि मेरा भी हाल उर्दू की तरह है आजकल यारो।
1: क्या बात है,
0: मेरा

दुश्मन की साजिश में मेरे अपने ही शामिल हैं, मेरे दुश्मन की साजिश में मेरे अपने भी शामिल हैं। जी मैं पेश करता हूँ।

0: अच्छा सा, वाह वाह वाह।
1: मेरे दुश्मन की साजिश में मेरे अपने भी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया नवाज, बहुत शुक्रिया।
2: हजरात गिरामी, ये थे आली बखार सदर मोहतरम जनाब जहूर जहराबादी, जो अपने बेहतरीन कलाम और तरन्नुम से हमको नवाज रहे थे। इसी के साथ ही ऑल इंडिया रेडियो का एक खुसूसी मुशारा और इदारे अदब सादिक का मुशारा अख्तिताम को पहुंचता है। आप तमाम का सामईन का बेहद मशकूर और ममनून हूँ। मैं डॉक्टर ख्वाजा फरीदुद्दीन सादिक आपसे तमाम शुरा इकराम की जानिब से, जिनमें हमारे पास मौजूद हैं रफील जिगर साहब और फिर काजी अजमतुल्ला जावरी साहब, अतीब एजाज साहब, फरीदुद्दीन सादिक आपके सामने हैं, जहूर जहराबादी साहब और जावेद नसीम साहब, सब आपके मशकूर ममनून हैं। खुदा हाफिज़।
3: मुशायरा अभी आप सुन रहे थे, हिस्सा लेने वाले शोरा थे जनाब डॉक्टर फरीदुद्दीन सादिक, जनाब जहूर मोहम्मद, जनाब जावेद नसीम, जनाब अतीब एजाज और जनाब हाफिज़ मोहम्मद अजमत। इस मुशायरे की पेशकश मोहतरमा साजिदा बेगम की थी। दोस्तों आइए अब सुनते हैं पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, गीत सुरेले गाता जा।

दोस्तों, आज के गीत सुरेले गातजा का टॉपिक है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी आलमी यौम इंसिदाद खुदकशी। ये दिन दोस्तों हमें एक निहायत अहम बात याद दिलाता है कि जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, कीमती है। कभी कभी इंसान मुश्किलात, तन्हाई, नाकामी या जहनी दबाव के ऐसे मरहले से गुजरता है जहां इसे लगता है कि शायद कोई रास्ता बाकी नहीं रहा। लेकिन दोस्तों,

याद रखिए कि मुश्किल वक्त में हमेशा सब्र से काम लेना चाहिए, और मुश्किल वक्त कभी मुस्तकल नहीं होता। हालात बदलते हैं, जख्म भरते हैं, और ज़िंदगी दोबारा मुस्कुराना सिखाती है। ऐसे वक्त में किसी परेशान हाल इंसान को नसीहत से ज़्यादा तवज्जो, हमदर्दी और एक सुनने वाले दिल की ज़रूरत होती है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई शख्स खामोश, मायूस या बहुत परेशान नज़र आए तो उससे बात कीजिए, उसका हाल पूछिए और उसे ये एहसास दिलाइए कि वो तन्हा नहीं है। और अगर कभी ज़िंदगी आप पर बहुत भारी महसूस हो तो खामोश मत रहिए, किसी काबिल एतमाद फ़र्द, दोस्त, खानदान के रुकन या ज़हनी सेहत के माहिर सेक्रेटरिस्ट से बात कीजिए। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं दोस्तों, बल्कि ज़िंदगी को बचाने की तरफ एक मज़बूत कदम है। सामईन इकराम, मौसीकी भी कभी कभी दिल के इन एहसासात को आवाज़ देती है जिन्हें हम अल्फाज में बयान नहीं कर पाते। एक अच्छा गीत हमें माजी की यादों से जोड़ता है, कभी आंखों में नमी लाता है तो कभी दिल में उम्मीद जगाता है। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में इन गीतों के साथ ज़िंदगी की खूबसूरती, रिश्तों की अहमियत और उम्मीद के पैगाम को भी महसूस करें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है और ज़िंदगी को एक और मौका देता कभी बेमाने नहीं होता। आइए इसी उम्मीद और खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं एक ऐसा नगमा जो शायद आपके दिल के किसी खामोश गोशे को छू जाइए।

दोस्तों, गीत सुरेले गाता जा में आज का हमारा टॉपिक है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी योमे आलमी इंसदादे खुदकशी। ये दिन हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कभी एक लफ्ज़, एक फ़ोन कॉल, किसी का खामोशी से सुन लेना, या किसी का ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा कर सकता है। तो आइए आज के सफ़र मौसिकी का आगाज़ एक ऐसे ही एहसास के साथ करते हैं जो हमें ज़िंदगी से मोहब्बत करना सिखाता है।

दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलती। कभी खुशियाँ हमारे दरवाज़े पर दस्तक देती हैं और कभी गम अचानक ज़िंदगी में दाखिल होता है। लेकिन याद रखिए, बुरा वक्त तमाम ज़िंदगी नहीं होता, सिर्फ़ ज़िंदगी का एक मरहला होता है।

सामाईन इकराम, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग। इस प्रोग्राम में गीत सुरेले गाता जा। इस सिलसिले में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी आलमी इंसदादे खुदकशी के मौके पर फिल्मी गीतों का सिलसिला जारी है। ज़िंदगी में कभी ऐसे लम्हे भी आते हैं जब इंसान मायूसी और उम्मीद के बीच खड़ा होता है, लेकिन याद रखिए, मुश्किल वक्त गुज़र जाता है, ज़िंदगी बाकी रहती है। आज आलमी यौम इंसदाद खुदकशी के मौके पर आइए इस नगमे को एक नए एहसासात और एहसास के साथ सुनते हैं। मायूसी को पीछे छोड़कर फिर से जीने की तमन्ना के साथ

साथियों, अगर आज जिंदगी को मुश्किल और रास्ते बंद महसूस हो रहे हैं तो ज़रा ठहरिए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। आपकी ज़िंदगी कीमती है, आपके एहसास अहम हैं। अपने दुख को दिल में कैद ना कीजिए, किसी अपने से बात कीजिए, मदद तलब कीजिए। कभी कभी एक गुफ्तगू, एक मुखलिस हाथ और एक लम्हे की उम्मीद ज़िंदगी का रुख बदल देती है। अंधेरा कितना ही गहरा हो, सुबह ज़रूर होती है। बस ख़ुद को एक और सुबह तक पहुँचने का मौका दीजिए। आज आहद करें कि हम सिर्फ अपनी ज़िंदगी की कदर नहीं करेंगे, बल्कि किसी मायूस इंसान को तन्हा भी नहीं छोड़ेंगे। हंगामी मदद का वाज़े पैगाम शामिल करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी एक सुहाना सफर है।

0: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच ही तो कहा गया है कि कल क्या हो किसने जाना, मुस्कुराते हुए आगे जाना। हाँ दोस्तों, कभी कभी इंसान को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए सिर्फ़ एक मोहब्बत भरा रिश्ता, एक मुखलिस दोस्त या किसी का साथ काफ़ी होता है। आज आलमी यौम इंसिदाद खुदकशी के मौके पर मायूस दिलों से बस इतना कहना है कि खुद को तन्हा मत समझिए, किसी का हाथ थामिए और किसी को अपनाइए, क्योंकि ज़िंदगी की खूबसूरती शायद इसी एहसास में है कि हम किसी के हैं और कोई हमारा है। तो लीजिए, इस खूबसूरत एहसास के साथ सुनते हैं ये फिल्म गीत।
1: अब मैं आपको अनारकली का एक गाना सुनाती हूँ। इसका संगीत श्री रामचंद्र जी ने किया है और ये गाना राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा हुआ है।

मायूस दिलों के लिए हमारा यही पैगाम है कि दोस्तों, जिंदगी बहुत कीमती है, उसकी कदर कीजिए। हाँ, कभी कभी जिंदगी तवील रात के बाद उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी इंसान को फिर से जीने का हौसला देती है। आज के दिन मायूस दिलों से बस इतना कहना है कि रात कितनी भी तवील हो, सहर जरूर आती है।

ये और बात तेरी गली में ना आए हम, लेकिन ये क्या कि शहर तेरा छोड़ जाए हम। खुददारी, एहतदाल और ताल्लुकात में तवाज़ुन ज़रूरी है। इंसान को चाहिए कि अगर किसी ताल्लुक में तल्खी या दूरी आ जाए तो सब्र और वक़ार के साथ इसे कबूल करे, लेकिन अपनी दुनिया और अपने फ़राइज़ और अपने दूसरे ताल्लुकात को मुतासिर ना होने दे। अक्लमंदी ये है कि एक दरवाज़ा बंद होने पर पूरी ज़िंदगी को अंधेरा ना समझा जाए। किसी एक नाकामी, इख्तलाफ़ या जुदाई की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी को मुतासिर ना होने दो। खुददारी के साथ आगे बढ़ो और ज़िंदगी के दूसरे मौके पर और ज़िंदगी के दूसरे मौके और नेमतों की कद्र करो। दानिशमंद वो है जो ताल्लुकात में वक़ार भी बरकरार रखे और ज़िंदगी से उम्मीद भी ना छोड़े। एक शख्स की दूरी का मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया से रिश्ता तोड़ लिया जाए।

पयाम शब जैदी से अभी आप सुन रहे थे। इसी पर दोस्त उर्दू प्रोग्राम नरंग अब वो ख़त्म होता है। कल शब 9:30 बजे नरंग की एक और बज़्म के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। शब बख़ैर। यह आकाशवाणी हैदराबाद है 10

0: 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर चिन्निलमो में हिंदी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट इंडिसीज राइज मार्जिनली, सेंसेक्स एड्स ओवर 100 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स अबव 23,450। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा सेज फिनटेक कंपनी शुड ट्रीट कस्टमर डेटा एज अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रादर दैन एज अ बिजनेस एसेट। एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस सर्ज अराउंड 4%, ब्रेंट क्रूड ट्रेड्स अबव $100 अ बैरल।
1: घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त, सेंसेक्स में 100 से अधिक अंकों की तेजी, निफ्टी 23,450 के ऊपर बंद हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने फिनटेक कंपनियों से कहा कि उन्हें कस्टमर डेटा को एक व्यावसायिक संपत्ति के स्थान पर अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में करीब 4% का उछाल, ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर।
0: And before we take our main stories in detail, here is a very important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 0.2% की बढ़ोतरी हुई, जिससे लगातार 3 दिन की गिरावट का सिलसिला थम गया। सेंसेक्स 138 अंक बढ़कर 74,903 पर बंद हुआ। निफ्टी 46 अंक ऊपर आकर 23,478 पर पहुंच गया। हालांकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार में मिड कैप सूचकांक 0.4% नीचे आया और स्मॉल कैप सूचकांक 0.1% गिर गया। इससे पहले बाजार आज सपाट स्तर पर खुले और पूरे सत्र के दौरान उतार चढ़ाव का दौर चलता रहा। हालांकि क्लोजिंग ऑक्शन सत्र के दौरान सूचकांक गिरावट से ऊपर कर बढ़त की स्थिति में देखे गए।
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस एंडेड 0.2% हायर टुडे, स्नैपिंग अ 3-डे लूजिंग स्ट्रीक। सेंसेक्स गेन 138 पॉइंट्स टू क्लोज एट 74,903। निफ्टी एडेड 46 पॉइंट्स टू सेटल एट 23,478। However, in the broader market on the NSE, the mid-cap 100 index declined by 0.4% and the small-cap 100 index dipped by 0.1%. Earlier, the markets opened on a flat note and oscillated between gains and losses throughout the session. However, during the closing auction session, the indices rebounded from the red into positive territory.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा उछाल वाली कंपनियों में पावरग्रिड 2.3%, एक्सिस बैंक 1.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट 1.4% ऊपर चढ़े। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक में 2.4%, टाटा स्टील में 1.4% और ट्रेंट में 1.1% की गिरावट देखी गई।
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 28 sectors edged downward. Among the top underperformers, capital goods lost 1%, telecommunications dropped 0.9% and metals fell by 0.7%. In contrast, insurance advanced at 0.6%, top 10 banks gained 0.5% and BankEx added 0.4%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,502 companies declined, 1,826 companies advanced and 199 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 34 पैसे गिरकर 95.45 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत, कार्यक्रम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज देखा हमने कि शेयर बाजार में 3 दिनों की गिरावट का सिलसिला थमा और 0.2% की बढ़ोतरी हुई। क्या ये मरहम का काम करेगा या और कोई स्थिति हम सामने देख पा रहे हैं, या और जो वैश्विक परिस्थितियां हैं कैसा असर उस पर डालेंगी?

0: तो निखिल, हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि महरम का अगर काम करे आज का बाजार की थोड़ी जो मामूली बढ़ा बढ़त थी, पर ऐसा नहीं है। बाजार आज काफी वोलेटाइल था, ऊपर नीचे का दौर रहा बाजार में, और जो हम बढ़त देख रहे हैं वो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन में थोड़ा टेक्निकली बाजार ऊपर बंद हुआ। लेकिन जो आपने आंकड़े पढ़े उसमें जो ब्रॉडर मार्केट की जो ब्रेथ की बात करी, यानी
1: जी
0: ज्यादातर अगर आप देखें तो शेयर्स में गिरावट थी और बहुत कम शेयर्स में बढ़त थी। तो कुल मिलाकर जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अभी भी बाजारों में वो वीक है, कमजोर है। अभी बहुत बड़ा हम निवेश नहीं देख रहे हैं, पर्टिकुलरली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं दोबारा से उन्होंने काफी बड़े पैमाने पे सेलिंग शुरू कर दी है। और उसका मुख्य कारण देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो फैक्टर्स हैं, खासतौर से मैं कहूंगा जो कच्चे तेल की कीमतें हैं, क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं, वो काफी बढ़ रही हैं, और जब तक वो कंट्रोल में नहीं आएंगे, और उसकी वजह से जो एक तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, दूसरा जो बॉन्ड यील्ड्स हैं यानी इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी ऊपर की तरफ बढ़त है। तो कुल मिलाकर सारे फैक्टर्स इस वक्त बाजार पर दबाव डाल रहे हैं, तो मुझे लगता है जो अंडरलाइंग ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में वीक ही रहेगा।
1: लेकिन इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में जो गिरावट आई उसके लिए आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी बढ़त थी और वो आउट परफॉर्म कर रहे थे लार्ज कैप्स को। इनफैक्ट हेडलाइन नंबर्स जब भी हम देखते थे, जो निफ्टी और सेंसेक्स के नंबर्स देखते थे, तो वहां पर हम देखते थे कि गिरावट होती थी, लेकिन तब भी मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में बाइंग होती थी। पर्टिकुलरली अगर हम देखें, आप आगे आंकड़े देखेंगे तो जो निवेशक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो ज्यादातर मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ रुझान उनका है। तो पर मुझे लगता है आज प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके अंदर, क्योंकि काफी शेयर्स में हम देख रहे थे काफी गेन्स आ रहे थे, तो नेचुरली जो अंडरलाइंग ट्रेंड है अगर वीकनेस का है तो प्रॉफिट बुकिंग होगी, और मिड कैप में आज वही था।
2: वी आर सीइंग दैट डीआईआईज हैव कंटिन्यूड टू सपोर्ट द मार्केट। देयर इज आल्सो द स्टोरी ऑफ द एम्फी डेटा फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट, वेयर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैव इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बाय 19%. So we see institutional investors play a very important role in supporting the market right now. But the biggest concern is this overall sentiment, basically on inflation, especially imported inflation. What's going on in the Strait of Hormuz? How do you see the market changing? Because Jefferies is saying that, you know, India is just waiting for the opportunity really to break out of this. How will you explain what's happening in the market in the short term?
0: So, Arjun, in fact, there are two, I would say, counter trends underlying in the market. One, of course, is a macro trend, which is the global factors, political factors, economic factors, inflation that you are importing via high crude oil prices, higher interest rates. So that is one trend which is overlying in terms of market trends. The other thing is, of course, the internals of the Indian economy. So we see that while all these pressures were there, the Indian economy has continued to do very well. We've grown at a robust 7.8% rate in the in second quarter GDP numbers. We also have seen that investors, domestic investors, they continue to be positive and bullish about the markets. And you mentioned that DIIs have seen inflows of funds, and that is the reason that we find that the domestic investors, investment institutions, they have been doing, they have been supporting the market because they have fund flows from investors. My guess is that when the macro situation, the international situation, it stabilizes, we will see Indian markets outperform.
2: FIIs returning to the market, is that possible in the short to medium term, especially with the bond yields in the US, because hedge funds will look at where the returns are maximum, especially in their own currency. They don't have to go through the process of buying rupees to invest in our market and then once again buy dollars really to convert it and then reinvest it back into the markets. Where do you see the FIIs, FPIs returning really?
0: So, traditionally, if U.S. interest rates start going up like they're happening right now, if you look at the 10-year bond yield in USA, it is about 4.85%. Usually, if that happens, then FIIs would pull money out of emerging markets and take that money back to America because they would like to invest in American
2: bonds.
0: Arbitrage. The interest rates are there. However, if you look at what has happened in India vis-a-vis the FCNRB deposits, then you will realize that foreigners still have a lot of faith in the Indian economy. We have seen approximately $125-127 billion flow into Indian economy via the FCNRB route. So I think that while FIIs may be tempted

0: to take out money in the short term. In the longer term, they want to put money in India because that is where the growth opportunities are. So my guess is that, again, I circle back to the same point. The moment we find that macro, global macro situation improves or it stabilizes, I think we will see FIIs come back to India, which may be hopefully not towards the end of this year.
1: So we talk about interest rates being offered by FCNR deposits versus what the treasuries in the US offer to investors there on government debt itself. But there is clearly a difference on which paper inspires more confidence for hedge funds.
0: So, see, we cannot compare FCNRB flows with 10-year bond yields because FCNRB facility was available only to NRIs. It wasn't available to, let's say, foreign investors or foreign institutions. Whereas any investor in the world can go to US markets, invest in government bonds and get that kind of a yield. So, however, I'm looking at these numbers only as a pointer to the confidence in the Indian economy vis-a-vis the foreign investors. So, clearly, I think while the interest rates we offered on FCNRB deposits were much higher, in the range of about 6.5%, I think the broader message was that foreign investors will put in money into India if they have the opportunities. And for that, they need the global situation to stabilize.
2: Puneet, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा IT sector की ओर ले जाना चाहूँगा कि इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को, किस तरह की अप्रोच रखनी चाहिए IT sector के प्रति, और खासतौर पे ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप की स्थिति अलग है, मिड कैप और स्मॉल कैप की स्थिति अलग है, तो कैसे एक रिलेशन बना सकते हैं तीनों में?
0: लेकिन देखिए, IT sector की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडियन इकोनॉमी में, वो काफी सिग्निफिकेंट रहा है. In terms of exports, in terms of corporate earnings, in terms of जो भारत का जो एक साख है पूरी वर्ल्ड में, वो आईटी सेक्टर से बनी है. पिछले दिनों हमने देखा कि आईटी सेक्टर में जो थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से थोड़ा वहां पर हमने कुछ कमी देखी है वहां पर कॉन्फिडेंस में, और हम देख रहे हैं कंपनियों के शेयर्स में भी गिरावट आई है, कुछ हद तक रेवेन्यूज में भी थोड़ा चैलेंज रहा है. तो एक कंसोलिडेशन का फेज है, थोड़ा सा मॉडरेशन का फेज है आईटी सेक्टर में. मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो आपका मेन मुख्य सवाल था कि इन्वेस्टर्स का क्या रुख रहना चाहिए आईटी सेक्टर के शेयर्स की तरफ, तो मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस भारत के आईटी सेक्टर में रखना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और मुझे आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू इन्वेस्ट ग्रेजुअली एंड बिल्ड लॉन्ग टर्म पोजीशंस इन आईटी.
2: बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं. भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगस्त महीने के दौरान निवेशकों का भरोसा और बढ़ा है. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया AMFI के आंकड़ों के अनुसार अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश करीब 19% बढ़कर 29,329 करोड़ रुपए पहुंच गया, जबकि जुलाई में यह 24,697 करोड़ रुपए था. वहीं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP के जरिए निवेश ने भी नया रिकॉर्ड बनाया, और अगस्त में यह बढ़कर 32,297 करोड़ रुपए के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है. इक्विटी फंड की श्रेणियों में स्मॉल कैप फंड निवेशकों की पहली पसंद रहे, जिनमें करीब 8,000 करोड़ रुपए का निवेश आया. इसके बाद मिड कैप, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड का स्थान रहा. हालांकि लार्ज कैप और इक्विटी फंड सेविंग स्कीम यानी ELSS फंड से 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी दर्ज हुई. दूसरी ओर गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी गोल्ड ETF में निवेश भी 66.6% से ज्यादा बढ़ा, और इसमें लगातार तीसरे महीने निवेश सकारात्मक रहा. हालांकि डेट फंड में तस्वीर इसके उल्टी रही, जहां जुलाई में 1,87,000 करोड़ रुपए का भारी निवेश आया था, वहीं अगस्त में डेट फंड से 8,127 करोड़ रुपए की निकासी हुई है. कुल मिलाकर अगस्त के आंकड़े ये बताते हैं कि निवेशकों का रुझान इक्विटी, SIP और सोने जैसे विकल्पों की ओर मजबूत बना हुआ है. पुनीत, जिस तरह के आंकड़े हम देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी इस पर हमने बात की थी, अगर देख रहे एक महीने के अंदर 19% की बढ़ोतरी बहुत कुछ कहती है.
0: देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा नहीं है, क्योंकि पिछले महीने के जो आंकड़े थे उसमें थोड़ी गिरावट हमने देखी थी. तो जून से जुलाई में थोड़ी गिरावट आई थी, और अगस्त के महीने में वो जो लॉस हुआ था वो हमने एक तरह रिकवर किया है इनफ्लोज में. कुल मिलाकर जो म्यूचुअल फंड के जो फ्लोज हैं वो मेंटेन हो रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है भारतीय बाजारों के लिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं खो रहे हैं, वो लगातार म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं. देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री आज भारत में करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपया टोटल हम मैनेज, जो AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हम कहते हैं, वो करीब 80 लाख करोड़ रुपए की AUM है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की, और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करीब करीब 40 लाख करोड़ रुपया अभी मैनेज कर रहे हैं. इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है अब ये पूरे अर्थव्यवस्था के लिए. और जो इसमें भी जो खास बात है

0: high-profile diplomatic engagement for BRICS cooperation amid a volatile global situation, ongoing conflict in West Asia, and the Russia-Ukraine war. This will be Xi's first visit to India in nearly 7 years. It's a fully loaded story because, you know, you have a border dispute with China. They have been partnering Pakistan in their geopolitics against India. India is buying oil from Russia at a discount, which is advantageous to India. And that's been opposed by the U.S. And Prime Minister Modi has been pleaded by global leaders that please mediate the Russia-Ukraine war. How do you see the BRICS summit here in India?
1: So BRICS summit in India really comes at an extremely important point because this, like you said, I mean, this story has so many subtexts, so many things that you can read between the lines, because India has a very difficult relationship with China. While we have a very large trade with them, our economies are interdependent in many ways, and yet we have a difficult situation with them on borders. There's a lack of trust between the countries. We've had very long-standing dispute, border dispute with between the two countries. So it's a very difficult relationship which operates at many layers. Hopefully, our leaders are able to resolve these differences for betterment of communities on both sides of the border. And India, China, Russia, I think there's, and Brazil particularly lately, I think these four countries really comprise a very significant part of global economy, and therefore the BRICS summit, I think, at this point of time, being held in India, and all the top leaders attending that summit, I think that is very, very significant, and hopefully something better will come out of this.
2: Aur Asia, Europe bazaron par nazar dalte hain. एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी में आज चौथाई प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि जापान का निक्केई 225 0.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ. अपनी थोड़ा सा बढ़ करके दायरे में अगर देखें तो बैंक ऑफ जापान की नेक्स्ट वीक जो मीटिंग होनी है 17 और 18 सितंबर को, उस पर निगाहें जरूर रहेंगी. क्या होगा अगर रेट बढ़ाए जाते हैं उनकी तरफ से? और दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं, पूरे एशिया और यूरोप के मार्केट में महंगाई का दबाव आपको महसूस हो रहा है या ब्याज दरों का कोई दबाव महसूस हो रहा है जिसका असर मार्केट पे पड़ेगा?
1: बिल्कुल निखिल, अगर आप देखिए बैंक ऑफ जापान की आपने बात करी, तो जापान में जो 10-year बॉन्ड यील्ड है सबसे महत्वपूर्ण बॉन्ड होता है, बिकॉज से लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स का ट्रेंड हमें मालूम चलता है. वो अब 3% के आसपास, करीब 3% 10-year बॉन्ड यील्ड जापान में हो गई है. ये 0.25 से ऊपर बहुत दशकों तक, कई डिकेड्स तक ये ऊपर नहीं गई, और अब अचानक अगर जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, और बैंक ऑफ जापान के ऊपर भी ये काफी दबाव पड़ेगा कि वो इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएं, और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट्स और बढ़े जाते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे अर्थव्यवस्था को, विश्व की अर्थव्यवस्था को असर पड़ेगा. कारण यह है कि जापान से काफी बड़ा करेंसी ट्रेड होता है, जापान से करेंसी मिलती है लोगों को, देशों को, निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए. और यदि जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज डिस्टर्ब्ड होंगे, वो इन्वेस्टमेंट फ्लोज में रुकावट आएगी. जापान, अमेरिका में भी इसका असर पड़ेगा और भारत पे भी असर पड़ेगा. तो वी शुड रियली वॉच बैंक ऑफ जापान इंटरेस्ट रेट्स वेरी केयरफुली.
0: एंड इवन द यूरोपियन सेंट्रल बैंक व्हिच हैज रेज्ड इट्स इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स टू 2.5%. बैंक ऑफ जापान इज एट 1%, एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स. एनर्जी constituting 14.3% rise as far as Europe is concerned.
1: Absolutely, Arjun. I think that's the elephant in the room really is the inflation, and inflation which has been caused by high energy prices. So central banks have limited choices. Let's see what they do.
0: In more news, global investment bank Jefferies has said that India's new industrial revolution is being driven by a large domestic market, rising private sector participation, and sustained policy support. In a report published yesterday, it pointed to measures such as opening space to private players, tax holidays for data centers, incentive schemes for semiconductors, electronics and solar localization measures, and government GPU purchases as key enablers of growth across emerging sectors.
2: भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 1,53,287 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था, जबकि चांदी 0.7% घटकर 2,33,642 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी. पुनीत, गोल्ड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि खासतौर पर ऐसे स्थिति में हम देख रहे हैं कि ETF में निवेश लोगों का बढ़ रहा है, तो आपको लगता है कि गोल्ड खरीदने के बजाय लोग निवेश करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं?
1: देखिए, निवेश तो गोल्ड में कर ही रहे हैं, लेकिन यदि इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ते हैं यहां से, तो आप देखेंगे कि गोल्ड पर प्रेशर आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से गोल्ड में के ऊपर सेलिंग प्रेशर आता है. तो मैं अपने जो नजर है वो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर रखूंगा आने वाला सप्ताह, उसके लिए बड़ा

0: स्पून है, और एनी मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट इंटरेस्ट रेट्स विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन गोल्ड. तो गोल्ड एक नाजुक मोड़ पर अभी खड़ा हुआ है.
1: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और चर्चा करने के लिए धन्यवाद.
0: धन्यवाद निखिल.
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices rise marginally. Sensex adds over 100 points. Nifty settles above 23,450. RBI Governor Sanjay Malhotra says fintech companies should treat customer data as a fiduciary responsibility rather than as a business asset. And global crude oil prices surge around 4%. Brent crude trades above $100 a barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है। अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां, अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और

0: बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है निशी गंधा और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बारह बजकर 11 मिनट और 31 सेकेंड जी हां हो चुके हैं। शहर की रफ्तार धीरे पड़ने लगी है, लेकिन शायद ऐसे में कुछ दिल ऐसे भी हैं जो अभी भी जाग रहे हैं, किसी की याद के साथ, किसी के ख्यालों के साथ, या शायद अपनों किसी अपनों के इंतजार में। लेकिन इस बीच मैं आपके साथ हूँ और आपके लिए लेकर आई हूँ निशिगंधा, रात के इन खामोश पलों में आपका साथी, कुछ मीठी यादों के साथ, कुछ अनकही बातों के नाम और कुछ गीत संगीत एहसास के नाम हम आज आपके साथ एक बार फिर जुड़े हैं। कुछ ख्याल ऐसे होते हैं, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जिन्हें रोशनी में कह पाना शायद मुश्किल होता है। तो चलिए दिल को थोड़ा सा सुकून देते हैं और सुनवाते हैं आपको ऐसे ही गीत, ऐसे नगमे जिन्हें सुनकर दिल को तसल्ली मिलती है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं किस्मत फिल्म का ये गीत महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में।

किसी की खूबसूरती की तारीफ करना आसान है, लेकिन जब कोई दिल को इतना अच्छा लगने लगे कि शब्द ही कम पड़ जाएं, तब बात कुछ और होती है। तो चलिए रात की इस खामोशी में उसी खूबसूरत एहसास को महसूस करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सारा दिन गुजर जाने के बाद जब ये रात का खामोश पहर आता है, जहाँ शोर कम होता है, एहसास ज्यादा सुनाई देते हैं, ऐसे में कोई पुराना गीत यादों को फिर से जगा देता है, दिल को एक मीठे सुकून के साथ भर देता है।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। रात की खामोशी में कुछ यादें और करीब लगने लगती हैं। कोई चेहरा, कोई मुलाकात, उससे जुड़ी कहानी याद आने लगती।

मोहब्बत जब दिल पर दस्तक देती है तो इंसान थोड़ा दीवाना थोड़ा मस्ताना हो ही जाता है। किसी की मुस्कान, किसी की बातें, किसी की एक झलक दिल की दुनिया बदलने के लिए काफी होती हैं।

कभी कभी प्यार में रूठना भी अच्छा लगता है और मनाना भी। और जब सामने वाला प्यार से कहे कि अच्छा जी अब मान भी जाइए, तो भला ये दिल कितनी देर तक नाराज रह सकता है।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: ज़ालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

और इसी गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded,

0: technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीताखंडी घाट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टाटा मैजिक यात्री वाहन को टक्कर मार दी। टाटा मैजिक नांदेड़ से भोकर जा रही थी। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। सैफ अली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को फाइनल में भारत से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France yesterday.
0: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
0: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun.

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात का ये खूबसूरत पहर, साथ में कुछ ऐसे गीत जो दिल को छू जाए और पुरानी यादों को जगा दें। तो दोस्तों एक बार फिर हम

स्वागत करते हैं आपका। कार्यक्रम है गीत सुहाने। अगले कुछ पलों तक संगीत की इस खूबसूरत दुनिया में, इस याद और खूबसूरत एहसासों के नाम, हम और आप साथ रहेंगे, सुनेंगे गीत, मैं सुनवाऊंगी आपको। तो चलिए बहुत ही खूबसूरत से गीत के साथ करते हैं गीत सुहाने का आगाज। हम और आप मिलकर सुनते हैं 16 साल फिल्म का ये गीत।

में थोड़ा नटखटपन हो, थोड़ी शरारत हो और आंखों में काजल का जादू, तो बात ही कुछ और होती है। रात के इस खूबसूरत माहौल में याद आ गया ना वो सदाबहार अंदाज जिसमें प्यार भी है और मीठी छेड़छाड़ भी। तो चलिए सुनते हैं एक बेहद प्यारा सा नगमा, फिल्म है किस्मत।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। और चलिए अगला गीत सुनते हैं। फिल्म है कश्मीर की गली, रफी साहब की आवाज़ में।

कुछ गीतों में आज भी वो मासूम सी नटखट अदाएं, पुराने जमाने का वो एक जज्बा नजर आता है और आज भी वो गीत कहीं ना कहीं ताजगी भरे महसूस होते हैं। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको, फिल्म है संघर्ष।

कोई अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर

कभी कभी किसी का इंतजार भी कितना प्यारा होता है। शिकायत बस इतनी होती है कि उन्होंने बुलाया नहीं, और दिल फिर भी उन्हीं की राह देखता रहता है। इसी नटखट शिकायत और प्यार भरे अंदाज के साथ चलिए सुनते हैं ये सदाबहार गीत।

गीत सुहाने प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ आंखें ऐसी होती हैं जिसमें शरारत भी होती है और मोहब्बत भी, बस एक नजर पड़े और दिल की धड़कनें तेज हो जाएं।

इसी गीत के साथ गीत सुहाने का सफर यहीं तक। हमारी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और

माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और आबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरू वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब और निवेश को $50 अरब तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अली खानोफ के साथ इनोप्रोम इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। रात सुरमई है, हवाओं में खामोशी और दिल ऐसे में किसी खास को याद कर रहा है। और ऐसे में जब कोई मीठी सी धुन कानों से निकलकर दिल तक पहुंचती है तो दिल बस यही पूछता है कि आखिर ये एहसास क्या है, क्या वाकई में यही प्यार है।

रात की खामोशी में जब किसी की यादें आंखों के सामने ठहर जाएं, तो फिर सजने संवरने की क्या जरूरत, मोहब्बत की एक नज़र ही काफ़ी है। तो चलिए रात सुरमई में आप और हम सुनते हैं ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें कहने के लिए शब्द नहीं, बस एक अपना इंसान चाहिए। दिल में छुपी बातें जब होठों तक आ जाएं, तो एहसास और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है।

मोहब्बत में सिर्फ चेहरा नहीं देखा जाता, बल्कि किसी की मुस्कुराहट, उसकी बातें और उसके साथ होने का एहसास भी दिल को अपना बना लेता है।

रात सुरमई प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मोहब्बत में इससे खूबसूरत इकरार और क्या होगा, दिल भी आपका, धड़कन भी आपकी और ये रात भी आपके ही नाम।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये रात, ये खामोशी और तुमसे ये दूरी, दिल चाहता है कि तुम बस सामने होते और ये रात थोड़ी और हसीन हो जाती।

और इसी गीत के साथ रात सुरमई का सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: फॉर सेंचुरीज Space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान

0: के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है। IMF के संचार विभाग के निदेशक जूली कॉजेक ने कहा है कि भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र और निर्यात का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब अर्थव्यवस्था को ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमहुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कांगो के पूर्वी हिस्से के बुकाबू शहर में 2 स्कूलों में भीषण आग लगने से कम से कम 26 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of the International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, and Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही। आज के इस कार्यक्रम हमराही में आप सभी का स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल हैं मिलते ही रहेंगे हम।

आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि ज़िंदगी गुजर जाती है पर ये आदतें नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तब अक्सर ज़िंदगी नहीं बचती। 3:19 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, इतना तो याद है मुझे। खुद से चलकर आती हैं जब खुशियां, खुद से चलकर आती हैं जब खुशियां, तो अक्सर उनकी कद्र नहीं होती। आ जाती हैं जब बेचैनियां, आ जाती हैं जब बेचैनियां, तो दिन और रात एक सी फिक्र है होती। जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बेचैनियों में पड़कर इतना बेचैन ना होइए, खुशियों को दिल खोलकर अपने दिल में संजोइए। तीन बजकर 26 मिनट हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:33 हो चुके हैं। कार्यक्रम हमराही में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं अंदर से भी अच्छा हो। घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं कि अंदर से भी अच्छा हो। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। सुंदरता का क्या है, सुंदरता तो मेकअप से भी आ जाती है। 3:40 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

दोस्त सारे खत्म हो गए, दोस्त सारे खत्म हो गए, जब से इस मोबाइल से हमने दोस्ती कर ली। ऑनलाइन ही इतने दोस्त हो गए हैं, ऑनलाइन ही इतने दोस्त हो गए हैं कि ऑफलाइन दोस्ती अब हमने खत्म ही कर ली। पड़ी जब ज़रूरत सच्चे दोस्त की, पड़ी जब ज़रूरत सच्चे दोस्त की, तब कोई न था साथ। रखा मोबाइल, निकले पुराने दोस्तों की तलाश में, तब पता चला अब तो उन सबने भी इसी मोबाइल से ही दोस्ती कर ली। दोस्त अब सबके ही खत्म हो गए, दोस्त अब सबके ही खत्म हो गए, क्योंकि सभी ने

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

3:53 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। नई दिल्ली में कल शनिवार से 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। सम्मेलन नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है और इसे लेकर राजधानी में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इनमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता में इस वर्ष ब्रिक्स का विषय है सुदृढ़ता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में शामिल होंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सम्मेलन से अलग कई अन्य द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान आज से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग,

0: जिस पायलट मार्ग मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर निर्भर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। दूसरे सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। नई दिल्ली में कल इंडियन एथलेटिक्स फाइनल सीरीज में एशियन गेम्स के लिए चुने गए कई भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी पारुल चौधरी ने 9:22.49 के समय के साथ जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of the International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of the country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia, India, Iran, Russia, Saudi Arabia, South Africa, and the UAE. Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Uganda, Uzbekistan, and Vietnam will participate as the BRICS partner countries. BRICS collectively represents around 49% of the world's population and about 40% of the global GDP. world leaders including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, President of South Africa Cyril Ramaphosa, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, Indonesian President Prabowo Subianto, Iran President Masoud Pezeshkian, and the Crown Prince of Abu Dhabi, Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 4:10 हो चुके हैं और अब हमेशा की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अनुरिमा अरुणिमा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

आज उनसे पहली मुलाकात होगी। किशोर कुमार जी की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना। छोड़िए बेचैनियां सारी, छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से ही चलिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, मेरी इन बातों को भी थोड़ा दिमाग में रखिए। पहुँच ही जाएंगे जहाँ पहुँचना होगा, पहुँच ही जाएंगे जहाँ पहुँचना होगा, दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए।

वादियां तो कल भी हसीन थीं और आज भी हसीन हैं। वादियां तो कल भी हसीन थीं और आज भी हसीन हैं। फर्क तो सब हमारी सोच का ही है। इसी बरसात में किसी को हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और किसी को हर तरफ सिर्फ और सिर्फ कीचड़। 4:29 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

मिजाज इंसान का है बड़ा ही निराला, मिजाज इंसान का है बड़ा ही निराला, कोई काम हो गया तो मैंने कर दिया, और जो नहीं हुआ तो जैसी भगवान की मर्जी, यही है बताता।

अनगिनत प्रयासों के इस दौर में सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। हो जाएं जल्दी सफल, इस बात की फिक्र है हर पल होती। होंगे सफल या नहीं, यही कश्मकश दिन रात है रहती। करते हैं आज भी अनगिनत प्रयास, जिसकी कोई गिनती भी नहीं होती। 4:42 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

गुज्जू। ए मुन्नी तुम भी गाओ। ऐसे नहीं बोलो मैं।

इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं, इतना आसान नहीं हर ख्वाब पूरे हो जाएं, हर ख्वाब की कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाएं ख्वाब सारे, सिर्फ देखने भर से पूरे हो जाएं ख्वाब सारे, ये भी सिर्फ एक ख्वाब ही है। पूरा करने के लिए थोड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। बिना कुछ किए हासिल हो जाए सब कुछ, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है होता। बिना कुछ किए हासिल हो जाए सब कुछ, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ है होता। बाकी सभी को अपनी पहचान खुद ही बनानी पड़ती है। हासिल हो जाए हर ख्वाब घर बैठे, ये मुमकिन नहीं। हासिल हो जाए हर ख्वाब घर बैठे, ये मुमकिन नहीं। हर ख्वाब की कुछ ना कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अलचित के साथ।

4:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। अब से कुछ ही दिन में सुनिए हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में भाग लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के लिए ई संजीवनी जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्र में भारत को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 5:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी।

आज के इस कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है, जिसमें एक बार फिर से मैं हूँ, सिर्फ मैं ही हूँ, आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ, जिसके बोल हैं एक प्यार का नगमा है।

सोच समझ कर लीजिए फैसले, सोच समझ कर लीजिए फैसले, पर सिर्फ सोच विचार ही ना कीजिए। समय के हिसाब से चलते रहिए, पर जब समय आएगा तब चलेंगे, ये विचार बिल्कुल ना कीजिए। देर हो भी गई तो भी आज से ही चलिए, देर हो भी गई तो भी आज से ही चलिए, सिर्फ सोच विचार में जीवन व्यर्थ ना करिए। 5:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।

अक्सर सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। अक्सर सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। अक्सर बहुत ही परेशान करती हैं ना भूलने की ये आदतें। कुछ चीज़ें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली रखना चाहिए। कुछ चीज़ें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली रखना चाहिए। फुल हो जाए मेमोरी तो फ़ोन और कंप्यूटर भी ठीक से काम नहीं करते। 5:24 हो चुके हैं। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

सपने हमेशा थोड़े बड़े ही रखिए, सपने हमेशा थोड़े बड़े ही रखिए, बड़े पूरे ना भी हुए तो छोटे सपने तो पूरे हो ही जाएंगे। हिमालय चढ़ने का प्लान रखिए, हिमालय चढ़ने का प्लान रखिए, हिमालय ना भी चढ़ पाए तो कोई ना कोई छोटा पहाड़ तो चढ़ ही जाएंगे। 5:32 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।